मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी

0: ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना।

माँ के चरणों में बसा है सारा जहां, उनकी ममता से मिट जाते हैं सब गम और अंधियारा। सिंह पर सवार माँ देती हैं हिम्मत और बल, उनकी शक्ति से खिल उठता है हर एक मन का कमल। जो झुक जाए माँ के दरबार में सच्चे भाव से, उसका जीवन भर जाता है खुशियों के प्रवाह से।

इसके साथ ही भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। इसमें आज आपने मोहम्मद रफी, आशीष देसाई, हेमा देसाई, जगजीत सिंह और समवेत स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:25 हुए हैं। चिंतन में आइए सुनते हैं सत्याग्रह की प्रासंगिकता पर आज के विचार।

आज की नई पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी के विचारों को अमली जामा पहनाने में बढ़ चढ़कर भाग ले। दरअसल गांधी है ही एक विचारधारा और उनके उसूलों पर अमल करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था, ये तीन तत्व हैं जो समाज की दिशा बदल देते हैं। गांधी जी ने 100 वर्ष पूर्व ही कह दिया था कि धरती के पास हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी करने का सामर्थ्य है, पर हमारे लोभ का नहीं। विकास की अंधाधुंध रफ्तार वाले पश्चिमी मॉडल के उपभोक्तावाद का उन्होंने विरोध किया था, जो आज बहुत प्रासंगिक है। गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में आपके जितने स्रोत हैं सीमित हैं, इसलिए हमें जीवन में संयम और सादगी की जरूरत है। कुटीर उद्योगों एवं खादी का जो समर्थन किया, उसके पीछे भी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था व स्वावलंबी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा थी। आज जिस विकास की बात हम करते हैं, उसका समर्थन हम गांधी जी के चिंतन में पाते हैं। आज की परिस्थिति में लोगों की यह धारणा है कि सत्य, अहिंसा, स्वदेशी जैसे जीवन मूल्य शायद अर्थहीन हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता कहीं बढ़ गई है। यद्यपि विश्व के नक्शे पर भी देखें तो विश्व शांति को खतरा है। एक ओर बेहद घातक हथियारों की शक्ति से दुनिया के कमजोर राष्ट्रों पर अपनी आर्थिक नीतियां थोपकर उन्हें आर्थिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर प्रतिक्रिया स्वरूप साम्राज्यवादी ताकतों का मुकाबला करने के लिए ऐसी आतंकवादी शक्तियां उभर कर आई हैं जिनके हिंसात्मक हमलों ने दुनिया के आम आदमियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। विश्व के इस आतंकी साये में भी गांधीवाद ही आज प्रासंगिक है, क्योंकि साम्राज्यवाद, आतंकवाद अंत में एक दूसरे की मदद ही करते हैं। मनुष्य को तमाम प्रकार की हिंसा से मुक्त कराने के लिए जिस साधन की खोज कर गांधी जी ने जो साधन निकाला,

0: उसका जन्म 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के उस शस्त्र का जन्म हुआ जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया और जो प्रेम अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी के आदर्श आपसी भाईचारे व प्रेम के मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने कहा भी था, हो सकता है कि प्यार की ताकत को मानने में दुनिया को वक्त लगे, पर धीरे धीरे ही सही एक दिन दुनिया समझेगी जरूर कि थल जल सेना और सीमाओं से बढ़कर देश और इंसानों के बीच बढ़ती असहयोग की भावना ही असली समस्या है। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि बुद्धि के विकास की तो सीमा है, पर हृदय के विकास की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार जब हम भाईचारे के उस प्रेम को जो रंग नस्ल राष्ट्रीयता लिंग वर्ग कुछ नहीं जानता अपना लेते हैं, तो शांति और न्याय के शत्रु खुद ब खुद अपना सफाया कर लेंगे। गांधी जी ने जो भी किया वो आखिर मानव जाति का हृदय जीतने के लिए ही किया। गांधी जी ने यह दावा कभी नहीं किया कि उनके विचार अंतिम हैं। उनके पास हर बात का उत्तर नहीं था। एक बार सत्याग्रह के बारे में उन्होंने कहा था कि एक निर्माणाधीन विज्ञान है। यह संभव है कि अहिंसा का सिद्धांत एवं प्रयोग आज विकास की उसी सीढ़ी पर हो जिस पर मार्कोनी तथा एडिसन के दिनों में बिजली थी। गांधी जी प्रतीकात्मकता के विशेषज्ञ थे। वो जानते थे कि इंसानी लगाव एक सार्वभौम चीज है। एक आदमी की अकेले कार्यवाही भी यदि मानव आत्मा के भीतर मौजूद सत्य की धारणा को संबोधित कर सके तो ये बहुत सारे लोगों को सक्रिय कर सकती है।
1: चिंतन में आज का विषय था सत्याग्रह की प्रासंगिकता। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर करंट अफेयर्स, रात्रि 10 संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और रात्रि 8 संसद समीक्षा। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान 6:35 पर और 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में। पशुओं में अफारा रोग कारण और निवारण विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर डॉक्टर असीम अग्रवाल की वार्ता का विषय रहेगा आंखों में होने वाले रोग और उनका उपचार। दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम होगा आसपास 7:31 पर। 9:25 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम। इसमें आज आप अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार सुनेंगे। 9:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में फूलचंद गोस्वामी और साथियों के गाए लोकगीत सुनवाए जाएंगे। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन प्रसारित किया जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों का शहनाई वादन आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर भी। पूर्वाह्न 11:30 पर सुनेगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज का विषय है जल जीवन है, इसका अपव्यय न करें। बहनों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा विषय पर चर्चा के अलावा क्रम रहेगा मेरी पहचान। इसमें सकारात्मक सोच की शक्ति विषय पर जानकारी होगी। फैशन ब्यूटी क्रम में हेयर ऑयलिंग विषय पर

बातचीत की जाएगी, काव्य पाठ होगा आभा मेहरा का, साथ ही क्रम रहेगा रेसिपी टाइम, कुछ तुम कहो कुछ हम। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में अंजलि नारायण की गायी गजलें प्रसारित की जाएंगी। ऊपर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे पंडित सीआर व्यास का गायन और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। अपराह्न 3:00 उर्दू प्रोग्राम अंजुमन नशर किया जाएगा। इसमें आप समाज फरमाएंगे मकाला उर्दू अदब में बढ़ता तंजो मजाज, मकाला निगाह होंगे अब्दुल बसर। कलाम शायर के तहत बाबर इलियास की कलाम के अलावा अफसाना नशर करेंगे नेकी का सिलसिला सादिया राशिद। संध्या 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण रहेंगे चर्चा होगी चरैवेति चरैवेति। नई पहल क्रम में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर जानकारी होगी। प्रसन्न रहना है संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी, मेघा राघव की वार्ता प्रसारित की जाएगी और वैज्ञानिकी क्रम में डुमिक्स प्लेटफॉर्म विषय पर जानकारी के अलावा चलते चलते आज आप जानेंगे बूंद बूंद है अनमोल। ग्रामीण कार्यक्रम में शाम 6:00 बरसात में पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा के अलावा फैजबख्श सैयद की वार्ता प्रसारित की जाएगी बरसात में आवश्यक शस्त्र क्रियाएं। नई किस्में विषय पर जानकारी होगी, लोकगीत होंगे, मौसम का हाल सुनाया जाएगा, मंडी भाव होंगे और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडलों का शाम 6:30 पर इसमें चर्चा होगी बेटियों की बढ़ती भूमिका। कानूनी वार्ता में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम विषय पर जानकारी देंगे विनोद कुमार गोयल। आज का प्रश्न ज्ञान सागर और आज की पाती। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:35 हुए हैं, आप सुनते हैं श्री रामचरित मानस का हमारा आज का प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थी रंजना जोगलेकर। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता पशुओं में अफारा रोग कारण और निवारण।
1: अफारा रोग अक्सर गोमंथ वाले पशुओं में पाया जाता है। गोमंथ वाले पशु जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। रोमंथ आमाशय का पहला भाग है, जिसमें पशु आहार को इकट्ठा कर लेता है, फिर जुगाली के माध्यम से दांतों से चबाकर आहार के मोटे मोटे कणों को छोटा करके वापस रोमंथ में करता है। अफारा को अंग्रेजी में टिम्पेनी तथा ब्लोट कहते हैं। इस बीमारी का प्रमुख कारण है रोमंथ में अधिकाधिक मात्रा में हवा भर जाना, जो पशु के लिए घातक होती है। हवा बनने के कारण हरा चारा की बहुत सी मात्रा खा लेता है। हरा चारा जिसमें पत्तियां अधिक हो, उसमें पानी की मात्रा का प्रतिशत 80 से 90 तक होता है। इस प्रकार चारे को कोमल, ग्वार, लोबिया, दूब, घास, रिजका आदि बरसात के मौसम में तथा बरसीम जई या जाड़ों के मौसम में है। जब इन चारों में पानी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो रोमंथ में भाप बनकर अधिक मात्रा में बनकर उसे गुब्बारे की भांति बना देता है। अतः ऐसी दशा में हरे चारे के साथ गेहूं, चना, जौ आदि का भूसा अथवा सूखी ज्वार की कड़वी मिलाकर खिलाना चाहिए। सड़े गले पदार्थ जब रोमंथ वाले पशुओं को खिलाते हैं, तो उससे भी अफारा होता है। यदि पशु को बाई कोख में थपथपाएं, तो ऐसा लगेगा कि हम गुब्बारे को थपथपा रहे हैं। यह अफारा रोग है। यदि थपथपाने से ऐसा लगे जैसे गुथा हुआ आटा भरा हो, तो हम पाएंगे दूसरी बीमारी, जिसका नाम है इंफेक्शन। अफारा पशुओं का साधारण रोग है, जो गलत आहार के कारण होता है। यह छूत की बीमारी नहीं है, जैसे गुर का, पौका, जहरी

बुखार आदि। अतः हमको सावधानी पशु के खाने में बरतनी चाहिए कि उसे संतुलित आहार मिले जिसमें ठोस पानी की अनुपात सही हो, सड़ा गला आहार बिल्कुल नहीं दें। यदि पशु बोलता नहीं है तो हमें उसकी दयनीय दशा पर कठोरता से मनमानी नहीं करनी चाहिए। हींग अधिकतर सभी पशुकालयों को घर में मसालों के तौर पर पाई जाती है। अतः अपारे के इलाज में हींग की 8 ग्राम मात्रा, सौंफ की 8 ग्राम और काला नमक 8 ग्राम मिलाकर 4 घंटे के अंतर पर इतनी मात्रा में खिलाएं। पशु धीरे धीरे कुछ समय में ठीक हो जाएगा। अगर अपारा हल्का है तो पशु को 8 ग्राम सौंफ 8 ग्राम 6 घंटे के अंतर पर दी जा सकती है। तारपीन का तेल भी अफारे के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरुण गाय भैंस को तारपीन का तेल 60 मिलीलीटर, अमोनिया का घोल 60 मिलीलीटर और अलसी का तेल आधा लीटर खूब मिलाकर नाल के माध्यम से मुंह को ऊपर उठाकर पिलाएं। ध्यान रहे यह श्वास नली में नहीं जाना चाहिए, अतः फेफड़ों में पानी भरने से जानवर मर सकता है। इस इलाज में पशु को जल्दी आराम मिलता है। यदि अंग्रेजी दवाइयों की दुकान जहां पशु की दवाइयां उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में एल्वोनॉक्स नामक दवाई उपयोग की जा सकती है। यह दवाई आसानी से दी जा सकती है और यह बहुत अधिक कारगर है। यदि आपको लगता है कि पशु अधिक बेचैन है तथा अत्यधिक छटपटा रहा है और अफारे के कारण रोमंथ बहुत फूलता जा रहा है कि पेट फटने की आशंका है अथवा लंग्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से और हृदय पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से पशु की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी दशा में वे टोकार कैनुला नाम का औजार पशु के लिए लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए पशु चिकित्सक काबिल है और उसे बुलाना चाहिए। टोकार एक छड़नुमा औजार है जिसकी एक कोने को नुकीला कर दिया जाता है और कैनुला एक खोखला पाइप है जिसमें टोकार फंसा होता है। लगाते समय उसके पशु की बाई कोख में घोंप दिया जाता है, टोकार निकाल लेते हैं, कैनुला फंसा रहता है। इस तरीके से रोमंथ की हवा निकल जाती है, पशु बच जाता है। पशुओं को अक्सर नाले का पानी पिला देते हैं और नाले के पानी में बहुत से पारजैविकी बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं, वायरस। इस प्रकार उनसे अनेक बीमारी हो जाती हैं और यह अफारा रोग भी उत्पन्न कर सकता है। और उसमें सीवेलचाई एक प्रमुख कीड़ा है और पारजैविकी में फेशियोला हेपेटिका आदि अनेक पारजैविकी होते हैं। टेपवर्म्स भी उनमें से एक है। इस प्रकार के पारजैविकी भी पशु के लिए खतरनाक होते हैं। विषाणु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर उनको अवस्था जल्दी से खत्म हो जाती है। अतः पानी को हमें साफ सुथरा पिलाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में होलसम कहते हैं, कि पानी जो है गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी नाली का और गंदे ड्रेनेज का पानी पिला दें वो पशु के लिए खतरनाक है। ऐसा है कि पानी को अगर शहर में रह रहे हैं तो क्लोरिनेटेड वाटर पिलाएं, और अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो गंदे पोखर में न पिलाएं जहां स्टैग्नेंट वाटर है, वो पशु के लिए नुकसानदायक होता है। बहता हुआ पानी पशु के लिए बहुत उपकारी है, इसीलिए बहते हुए पानी को पिलाना चाहिए। और अगर इस पानी से अफारा रोग या कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देने बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक में कई ग्रुप है, जिनमें एक तो बैक्टीरियोसाइट हो जाता है जो कीड़े मारता है, दूसरा इन कीड़ों को बाहर निकालता है, स्टेटिक कर देता है। तो ऐसे इलाज में खुद नहीं करना चाहिए, पशु की सलाह लेनी चाहिए कि उसे क्योंकि बैक्टीसीडल जो है बीमारी को अगर मान लो उसको इस्तेमाल करते हैं।

0: वो जब कीड़ा मरता है तो उसमें से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो पशु के लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए उनकी डोज जो खुराक है वो नियमित करनी चाहिए, क्योंकि ये काम है पशु चिकित्सक का है, किसी ऐसे अतार वगैरह से या किसी ऐसे अनाड़ी से नहीं इलाज कराना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पशु चिकित्सक जो है आदमी की दवाई वो भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर पशु की दवाई नहीं उपलब्ध है तो आदमियों की दवाइयों को उस डोज में कन्वर्ट करके भी इलाज कर सकता है।
1: खेती की बातें इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता, पशुओं में अफारा रोग कारण और निवारण। वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आप घर में हो अथवा दफ्तर में, अपना काम समाप्त करने के बाद विद्युत उपकरण बंद करना मत भूलिए। एक राष्ट्र है हम हैं एक, ज्यों गुलशन में फूल अनेक। आकाशवाणी आगरा केंद्र की स्टूडियो की घड़ी में 6:54 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर वलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षासु अनुचित साधन सम्बद्ध प्रकरणानां शीघ्र निर्णयं सुनिश्चेतुम् अस्ति। एषा अधिसूचना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणेषु संलिप्तानां व्यक्तिनां शीघ्रं कठोरदंड विधानार्थं शीघ्र न्यायालय स्थापनायाः घोषणानन्तरं कतिपय होरानन्तरं एव प्रख्यापिता। केन्द्रेण विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च सचिवाः नियुक्ताः सन्ति। विनीत जोशी यः सम्प्रति शिक्षामन्त्रालयस्य उच्चशिक्षासचिवः अस्ति सः पञ्चायतीराजमन्त्रालयस्य सचिवः अभवत्। नरेशपालः गंगवारः नूतनः उच्चशिक्षासचिवः भविष्यति। टीके अनिलकुमारः विद्यालयशिक्षायाः साक्षरतायाः च सचिवः भविष्यति। आवासन्नगरकार्यविभागस्य सचिवः कटिकिथलाज श्रीनिवासः पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासमन्त्रालयस्य सचिवत्वेन नियुक्तः अभवत्। केशवचन्द्रा इत्येषः खननमन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। चन्द्रभूषणकुमारश्च श्रमाजीविकामन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। सुशीलकुमारलोहानी इत्येषः पशुपालनस्य दुग्धव्यवसायस्य च सचिवः भविष्यति। सत्येन्द्रसिंहः नगरविकासविभागस्य सचिवत्वेन भविष्यति। पीयूषगोयलः राष्ट्रियमानवाधिकार आयोगस्य महासचिवः भविष्यति। मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्तिसमित्या एतेषां नियुक्तिः स्वीकृतास्ति। दिल्ली मेट्रो रेल निगमः डीएमआरसी इत्येषः सूचितवान् यत् अद्य प्रातः सार्धसप्तवादनात् राष्ट्रिय राजधान्यां सुरक्षाकारणात् अग्रिमनिर्देशपर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु स्थानकेषु लोककल्याणमार्गः राजीव चौक पटेल चौक आश्री रामकृष्ण आश्रम मार्गः बाराखंभा मार्गः सर्वोच्च न्यायालयः सेवातीर्थादि स्थानकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17

0: मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, Government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately. The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts.
2: मैंने fast-track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: The Prime Minister said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. He said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. The Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said that the court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear cases under the Public Examinations Act along with connected offences. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh.

0: Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, and senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Meanwhile, Prime Minister Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The centre has appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Joshi, who is presently Secretary Higher Education and Ministry of Education, has been appointed as Secretary Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary Higher Education. T.K. Anil Kumar will be Secretary School Education and Literacy. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Jhandewala, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jor Bagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. President Draupadi Murmu, who is on a state visit to Romania, will hold talks with Romanian Prime Minister Ile Bolojan at the Victoria Palace in Bucharest today. She will also address the Indo-Romanian Business Forum along with her Romanian counterpart, President Nico Sardian. In men's cricket, India defeated Zimbabwe by 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Harare last evening. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर असीम अग्रवाल की वार्ता आंखों में होने वाले रोग और उनका उपचार।
2: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जान है तो जहान है। अगर हम कहें कि नेत्र या आंखें हैं तो जहान है, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी प्रकृति और इसमें सुंदरता बनाई है उसको हम आंखों से ही महसूस कर पाते हैं। तो वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, पर आंखों का उसमें एक विशेष स्थान है। तो डॉक्टर साहब आंखों की कौन सी प्रमुख बीमारियाँ होती हैं?
3: देखिए, आंखों में बहुत प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, पर आज मैं आपको 3 बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा। जो सबसे प्रमुख है वो तो मोतियाबिंद है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कैटरेक्ट भी कहते हैं। दूसरी बीमारी जो बहुत देखने को मिलती है वो काले पानी की है, जिसको काला मोतिया भी कहा जाता है या अंग्रेजी में हम लोग ग्लोकोमा कहते हैं। तीसरा जो बहुत कॉमन सी चीज देखी जाती है वो दृष्टि दोष, यानी चश्मे का नंबर है। तो ये 3 बीमारियां हमारे हिसाब से सबसे कॉमन मिलती हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद की क्या पहचान होती है और क्या होता है उसमें?
3: देखिए, मोतियाबिंद को समझने के लिए ये समझें कि हमारी आंख जो है वो एक कैमरे की तरह है, और जिस प्रकार कैमरे में लेंस पड़ा होता है उसी तरह हमारी आंख के अंदर भी भगवान ने एक लेंस डाला हुआ है। ये लेंस उम्र के साथ साथ सफेद पड़ता है या काला पड़ता है।
2: अच्छा।
3: जैसे कि मनुष्य के बाल समय के साथ साथ सफेद पड़ते हैं, उसी तरह से इस ये लेंस भी सफेद पड़ता है, और इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। ये वैसे तो मोतियाबिंद उम्र के साथ ही देखने को मिलता है।
2: हाँ।
3: बाकी कुछ चीजों में जैसे कि चोट लगने के कारण,
2: हाँ,
3: या कभी कभी नवजात शिशु में, कभी बच्चे में भी ये बीमारी देखने को हम लोगों को मिलती है।
2: अच्छा।
3: दूसरा जो आपने सवाल पूछा था उसका, इसके लक्षण जो है,
2: हाँ,
3: लक्षण में सबसे जो पहला लक्षण जो मरीज को बताता है वो है उसको धुंधला दिखना, उसको कम दिखने लगता है।
2: अच्छा।
3: इसके अलावा कभी कभी जो हमको जो लोग आम भाषा में

0: बोलते हैं कि साहब हमको चंद्रमा जो है वो एक की जगह तीन तीन दिखाई देने लगते हैं, यानी
1: अच्छा
0: एक चीज की कई कई चीजें दिखाई
1: दिखाई
0: देने लगती हैं। तो ये दो प्रमुख लक्षण मोतियाबिंद के हैं।
1: अच्छा, विशेषकर मोतियाबिंद किस उम्र में इसकी संभावना शुरू हो जाती है ज्यादातर?
0: देखिए, ये मोतियाबिंद का थोड़ा बहुत लक्षण तो 60 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोगों में मिलता है।
1: मिलता
0: एज का भी इतना क्राइटेरिया नहीं है, कभी कभी बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि कम
1: हाँ,
0: उम्र में भी ये मोतियाबिंद मिल जाता है
1: मिल
0: हम
1: जाते
0: लोगों को
1: हैं।
0: देखने।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और बताया है काला पानी के बारे में, तो वो किस तरह से होता है और उसके क्या लक्षण रहते हैं?
0: देखिए, काला पानी को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आंख के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है।
1: अच्छा
0: प्रेशर दो कारणों से बढ़ सकता है, या तो पानी निकलने की व्यवस्था जो आंख के बाहर है वो किसी वजह से रुक जाए,
1: अच्छा
0: या किसी वजह से आंख के अंदर जो पानी बनता है वो किसी वजह से ज्यादा बनने लगे। इस वजह से आंख के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इसी को हम काला पानी कहते हैं।
1: कहते हैं।
0: काले पानी के लक्षण जो है, काला पानी भी दो प्रकार का होता है। एक तो लक्षण विहीन काला पानी, जिसमें मरीज को ये नहीं मालूम पड़ता कि उसको कोई बीमारी है,
1: अच्छा
0: और एक ऐसा काला पानी होता है जिसमें आंख मरीज की लाल पड़ जाती है, बहुत तेज दर्द होता है आंख में, उल्टियां तक हो जाती हैं और उसको दिखना कम पड़ जाता है।
1: अच्छा काले पानी के जो लक्षण हैं इसके लिए भी कोई खास उम्र होती कि उसके बाद ही इसकी संभावना रहती है
0: नहीं,
1: या?
0: काले पानी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र पे हो सकती है, और इसी वजह से हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए काला पानी से, क्योंकि
1: अच्छा
0: एक बार जो रोशनी काले पानी में चली जाती है वो लौट के नहीं आती, जबकि मोतियाबिंद में जो रोशनी चली जाती है
1: हाँ
0: वो हम ऑपरेशन के माध्यम से उसकी रोशनी सही कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि तमाम चीज़ों में आजकल नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो पहले मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता था और आज जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उनमें क्या कुछ फ़र्क है और कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आई है?
0: पहले जमाने के मुकाबले में और आज के मुकाबले में जमीन आसमान का अंतर है। एक जमाना वो था जब ऑपरेशन के बाद मरीज को महीने भर तक बिस्तर पे लिटा दिया जाता था, पट्टियां बांधी जाती थी, उसके बाद भी उसकी रोशनी कभी आती थी नहीं आती थी, वह अगर आती भी थी तो एक बहुत ही मोटे चश्मे के द्वारा। समय के साथ साथ चीजें बदली हैं, और सबसे जरूरी जो एडवांसमेंट हुआ इसमें वो लेंस प्रत्यारोपण का हुआ।
1: अच्छा
0: कहने का मतलब, जो मोतियाबिंद जो लेंस था भगवान का दिया हुआ, उसको हमने निकाल देते थे,
1: अच्छा
0: अब उसी की जगह पर एक हम आर्टिफिशियल लेंस, एक नकली लेंस आंख के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है,
1: अच्छा
0: और इसको प्रत्यारोपित करने से मरीज को अगले दिन से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है,
1: अच्छा
0: चश्मे की जरूरत बहुत कम पड़ती है, और नंबर भी जो चश्मे का आता है वो भी बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। लेंस प्रत्यारोपण के अलावा जो आजकल पिछले 5-7 सालों से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें सबसे जरूरी डेवलपमेंट वो फेको इमल्सिफिकेशन तकनीक का था।
1: अच्छा
0: इस तकनीक को समझने के लिए, ये तकनीक ऐसी है जिसमें हम एक बहुत छोटे से चीरे से मोतियाबिंद को तोड़ के निकाल लेते हैं, और उसी छोटे से चीरे से लेंस को अंदर प्रत्यारोपित कर देते
1: कर
0: हैं।
1: देते हैं।
0: ये चीरा इतना छोटा होता है कि इसमें कोई टांका भी लगाने की जरूरत हमको नहीं होती। दूसरी बात, इसमें रोशनी भी बेहतर आती है, और चश्मा जो थोड़ा बहुत लगाने की आवश्यकता पड़ती थी उसकी भी जरूरत और ही कम हो गई है। तो आज की तारीख में जो भी बढ़िया सेंटर्स हैं वहाँ फेको इमल्सिफिकेशन तकनीक से ही ऑपरेशन किए जाते हैं, और विश्व में जो है इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस तकनीक की।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन में फेको विधि से कितना समय लगता है लगभग?
0: ऑपरेशन का कुल समय तो मान के चलें 10 मिनट का होता है।
1: अच्छा
0: ऑपरेशन के बाद हम मरीज से कहते हैं कि 15-20 मिनट थोड़ा रुक जाए, थोड़ा आराम कर ले, और उसके बाद मरीज अपने घर जा सकता है, उसको कोई भर्ती रहने की इस में जरूरत नहीं
1: नहीं
0: पड़ती है।
1: रहती है। तो इसका मतलब तो डॉक्टर साहब ये हुआ कि ये खर्च भी कम हो गया।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आंखों में होने वाले रोग और उनका उपचार विषय पर डॉक्टर अजीम अग्रवाल की ये वार्ता, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:18 हुए। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: था अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कल मध्यरात्रि एक वीडियो संदेश जारी करके इस मामले में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को

0: सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा। प्रधानमंत्री के फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
2: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने ट्वीट किया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो जिम्मेदार है उन पर एक्शन लेंगे।

0: कोड बनाएंगे, जो जिम्मेदार है उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग कि सरकार हमारी मांग पूरी कर दे।
1: इस बीच केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्दी से जल्दी अपने सामान्य वजन को प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से सोनम वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिनों से चल रहा अपना उपवास समाप्त कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर के सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है।
3: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है।
3: याद करिए, हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने।
1: मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल से गोरखनाथ मंदिर में शुरू हुए सप्त दिवसीय श्रीराम कथा के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या में कल विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिराम दास छावनी में हुई इस बैठक में श्री राम लला मंदिर की धार्मिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
4: बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। बुधवार को हुई श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। कल हुई बैठक से संत समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में हो रही जाँच पर भरोसा रखा जाए और जाँच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष न पहुंचा जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जिलों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा, स्वच्छता, यात्रियों की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। कल ही के दिन वर्ष 1927

इसमें मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी पड़ा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 7:32:45 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओ, कैसे हैं आप लोग? क्या बिल्कुल सही? जी हाँ, बिल्कुल सही होने चाहिए। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम है। भाई, मौसम हो और बरसात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होनी भी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बरसात जरा रुक रुक के हो रही है। और जब बरसात रुक जाती है तो एकदम उमस भरी गर्मी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जब मौसम डावाडोल स्थिति में है, कभी बहुत तेज गर्मी सी लगने लगती है, कभी एकदम बरसात होती है तो सर्दी सी महसूस होने लगती है, ऐसे में आप और हम सभी को चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। और वैसे भी बरसात के मौसम में तमाम तरह के रोग हो जाते हैं, कहीं वायरल फैला हुआ है, कहीं जो एक अलग तरह

का जो जिसको हम फ्लू कहते हैं वो फैला हुआ है, आंखों में जलन सी होती है, तमाम तरह के बुखार लोगों को घेर लेते हैं। तो ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मक्खी मच्छर तमाम तरह की जो बीमारियां आती हैं इन्हीं के माध्यम से आती हैं। तो ऐसे में जब बरसात हो रही है तो कूलर की जरूरत कम महसूस होती है। तो हम सभी को चाहिए कि अपने जिन लोगों के घर में कूलर हैं और कूलर का पानी निकाल दें ताकि गंदगी ना हो, मक्खी मच्छर ना फैले, और मक्खी मच्छर नहीं फैलेंगे तो बीमारियां भी बहुत कम हो पाएंगी। और अगर बुखार या किसी अन्य तरह की आप बीमारी फील करते हैं या आंखों में या शरीर पर इचिंग टाइप जो खुजली होती है अगर इस तरह की महसूस करते हैं तो आप सभी से निवेदन यही है कि आप घर बैठे दवाएं ना लें, खुद ही अपने डॉक्टर ना बने, आप अपने फैमिली डॉक्टर से जाकर उस चीज की दवा ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कुछ भी इस समय अपनी तरफ से किया और बीमारी बिगड़ गई तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि आपको अपने आप कुछ ना लेकर डॉक्टर से परामर्श करना है, और बेहतर हो कि आप सभी खुद ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर से अपने घर के छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, बीमार व्यक्ति जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनका सबका अगर ध्यान रखकर चलेंगे तो किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि बरसात है भाई, बरसात तो होगी और हो भी रही है।

जी हाँ श्रोताओं, कहीं कहीं बरसात हो रही है, कहीं कहीं अभी मौसम साफ है। तो अगर बरसात हो रही है तो जायज है, बरसाती मौसम है तो बरसात तो होगी ही। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित जानकारी देते हैं और जानकारी देते हैं कुछ समाचारों की जो हमारे आसपास के होते हैं। तो सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित जानकारी हम आपको दे दें। ये हैं देवेंद्र कुमार, पुत्र प्रवीण चौहान, शिकारगढ़ी गोधा अलीगढ़। देवेश कुमार की उम्र 12 वर्ष है, चेहरा गोल है, रंग गोरा और इनकी लंबाई है 140 सेंटीमीटर। ये 7 जुलाई से को 3 बजे से लापता है। लापता होते समय इन्होंने हाफ टी शर्ट और निकर पहना हुआ था। देवेश कुमार के मिलने पर थानाध्यक्ष थाना गोधा जनपद अलीगढ़ को सूचित करें। आप ही परविंदर कुमार उर्फ बंटी, पुत्र सत्यप्रकाश। परमिंदर की उम्र 42 वर्ष है, आप ट्रांसफार्मर वाली गली थाना एतमाउद्दौला जनपद आगरा से लापता हैं। आपकी उम्र 42 वर्ष है, लंबाई 4 फिट 10 इंच है। आपने हाफ टी शर्ट आसमानी कलर की और काले रंग का निकर पहना हुआ है। 18 जून 2026 से आप लापता हैं। आपके मिलने पर थानाध्यक्ष कमिश्नरेट आगरा को सूचित करें। ये हैं देवेंद्र कुमार पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी मुगल की पुलिया गोबर चौकी थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा। देवेंद्र 19 मई 2026 से घर से बिना बताए लगभग 12 बजे के करीब कहीं चले गए हैं। देवेंद्र की लंबाई 5 फुट 8 इंच है, रंग गोरा है, चेहरा लंबा है। लापता होते समय देवेंद्र ने गोल छोटे फूल वाली मैरून कलर की कमीज और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। देवेंद्र का पता जिस किसी भी को भी लगे, कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना ताजगंज जनपद आगरा अथवा उप निरीक्षक थाना ताजगंज जनपद आगरा को सूचित करें। ये थी खोई हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं।

तो मौसम से संबंधित आपसे बातें कर ली, खोए हुए व्यक्तियों के संबंधित सूचनाएं दे दी और अब समय है हमारी आज की दैनिक सूचनाओं का। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व दशम यानी कक्षा 9 से 10 एवं दशमोत्तर कक्षा 11 से 12 छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारणी जारी कर दी है। छात्र 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक चलेगी। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अपीलीय अधिकरण की आगरा बेंच ने करकुंज के वैशाली कॉलोनी स्थित अस्थाई कार्यालय में काम शुरू कर दिया है। उसका अस्थाई कार्यालय बोधला सिकंदरा रोड स्थित क्रॉस रोड मॉल में तीसरी मंजिल पर बन रहा है। बेंच के कार्यक्षेत्र में आगरा के साथ फरुखाबाद, औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मथुरा, हाथरस, झांसी, ललितपुर, जालौन और इटावा शामिल हैं। जीएसटी अपीलीय अधिकरण पोर्टल पर ई फाइलिंग से जुड़ी सलाह, नियम और आदेश नोटिस सेक्शन में उपलब्ध हैं। अपील के इच्छुक कारोबारी टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हेल्प सेंटर सेक्शन में रिपोर्ट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई को डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। शिवाजी मंडपम में आयोजित समारोह में विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के 1200 शिक्षक शामिल होंगे। विशेष प्रवेश पास से दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। मुड़िया मेले को लेकर गोवर्धन में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए गुरुवार से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेले के दौरान गोवर्धन की ओर से आने जाने वाले भारी वाहनों को निर्धारित मार्गों से ही संचालित किया जाएगा। 30 जुलाई तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। एसपी यातायात ने बताया कि रोडवेज बसों के संचालन भी वन वे मार्ग से किए जाएंगे। रोडवेज बसें गोवर्धन से सौंख होते हुए मंडी चौराहा पहुंचेंगी। इसके बाद माल गोदाम के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगी। वहीं गोवर्धन जाने के लिए रोडवेज बसें गोवर्धन चौराहे से होते हुए जमुनावता होते हुए जाएंगी। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए 61 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश न देने वाले 13 निजी स्कूलों पर जिला शिक्षा अधिकारी बीएसए ने सख्ती दिखाई है। बीएसए ने संबंधित स्कूलों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के भीतर सभी पात्र व चयनित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन न करने पर स्कूल की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजना की समय सारणी जारी कर दी है। जिले में अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने वाले विद्यार्थियों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बीएसए ने 657 विद्यालय को नोटिस दिया है। स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे 25 जुलाई तक सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार

करें, लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही होगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई 2026 की अंतिम तारीख अब करीब है। ऐसे में कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते रिटर्न दाखिल कर दें। इससे चूकने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही अन्य लाभ भी खत्म हो सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि उघना मधुबनी साप्ताहिक ट्रेन को 12 से 26 जून तक हर रविवार और मधुबनी उघना साप्ताहिक ट्रेन को 13 से 27 जुलाई प्रत्येक सोमवार को बढ़ाया गया है। वहीं लालकुआं राजकोट साप्ताहिक ट्रेन को 19 जुलाई से 27 सितंबर तक हर रविवार को और राजकोट लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन को 20 जुलाई से 28 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार तक बढ़ाया गया है। यात्री इन ट्रेनों का लाभ ले सकते हैं। नई दिल्ली इंटरसिटी शुक्रवार से आगरा कैंट के बदले ग्वालियर स्टेशन तक चलेगी। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली इंटरसिटी धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर स्टेशनों पर रुकेगी। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के बेपटरी होने से ट्रेनों का संचालन गुरुवार को भी प्रभावित रहा। इस दौरान 9 ट्रेन रद्द और 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। शुक्रवार को पलवल आगरा कैंट मेमू सहित 3 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मालगाड़ी के बेपटरी होने से ओवरहेड इलेक्ट्रिक को नुकसान हुआ है। लाइन की मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये कार्य 1 से 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इसके चलते शुक्रवार को पलवल आगरा कैंट मेमू, गाजियाबाद टूंडला मेमू, नई दिल्ली कौशिकला मेमू का संचालन नहीं होगा। वहीं गुरुवार को 9 ट्रेनों का संचालन नहीं हुआ।

इस बार रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन विषय को नए पेपर के रूप में शामिल किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी। परीक्षा 6 फरवरी से कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित होगी। एआई और औद्योगिक तकनीक के बढ़ते महत्व को देखते हुए ये जोड़े गए हैं। इस पेपर से इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्रों को रोजगार व अनुसंधान के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को अनुमति दीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
6: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
6: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम

0: रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी

0: संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
2: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने

0: संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश। सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
2: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speed

0: अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडस्ट्रीज एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स।
1: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष जनवरी में इंडिया ईयू प्री ट्रेड एग्रीमेंट का संपन्न होने से हमारी इंडस्ट्रीज तथा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोलेंगे।
0: She said, India and Romania have agreed to expand cooperation in areas such as manufacturing, pharmaceuticals, healthcare, renewable energy, green hydrogen, agricultural production, fertilizers, science and technology.

0: found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदाम का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने की खातिर मुतल्लिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसवदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसवदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीजें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मस्कूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी।
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेपर लीक होने के वाकये के बाद से गुज़श्ता 2.5 महीने के दौरान कई इकदाम किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल जाये न हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहानात कराना जरूरी था।
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
2: दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अख्तियार करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 2024 के तहत केसों की समाअत के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। इस इकदाम का मकसद इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों से मुतालिक मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: नई तश्कील दी गई यह फास्ट ट्रैक अदालत जुडिशियल अफसर अन्नो ग्रोवर बालिगा की सरबराही में राउस एवेन्यू कोर्ट्स में काम करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक

0: नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतालिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकतदारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हमनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कान पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जरई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुदा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में एक हफ्ते के कयाम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। 23वें दौरत मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए OVO हाइड्रो अरीना में दाखिल हुई। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों के मामले में भारत ने अपना खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वजीर आजम मोदी के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वह सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जरूरी इमदाद फराहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजाहत को सफे अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदाम का ऐलान किया जाएगा।

साजन बिना सुहागन। इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत रचना इंदिवा की थी, संगीत उषा खन्ना का। बूंद फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रिया और पूनम भाटिया के स्वरों में। तौफीक पलवी के गीत को संगीत दिया है राजेंद्र और लियाकत ने।

बूंद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो और पूनम भाटिया के स्वर में। तौफीक पल्लवी के गीत को संगीत दिया था राजेंद्र और लियाकत ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: आप सुन रहे थे बंदिश फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अर्पण फिल्म से। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की।

अब सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी हुई रचना को संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है हीरो।

0: देखेंगे बांदा और एटा जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जुलाई को बांदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनपद को 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने शहर के कालूकुआं चौराहे में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांदा और बबेरू विधानसभा की 229 परियोजनाओं की शिलान्यास के लिए मुझे इस वीरांगना की धरती में आने का सौभाग्य मिला है। अब मुझे बुंदेलखंड आने में गर्व महसूस होता है। आज बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बुंदेलखंड का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण था। बुंदेलखंड में पहले ना तो कनेक्टिविटी थी, ना सिंचाई और ना ही पेयजल की व्यवस्था थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अब बुंदेलखंड को बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दे रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा में खेत बचाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। विगत 2 जुलाई को कृषि मंत्री ने बांदा में मंडल के चारों जनपदों से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि मंत्री ने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को लगाने की अपील की, साथ ही रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कहा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: योगी आदित्यनाथ जी ने उसके ऊपर SIT बनाई है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
2: जनपद में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें इन बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग अभियान के बारे में जनपद के CMO डॉक्टर बृजन सिंह ने बताया कि संचारी रोग अभियान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है।
4: संचारी रोग अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और वर्ष में ये 3 बार 3 राउंड होते हैं। वर्तमान में अब जो सेकंड राउंड हो रहा है इस वर्ष का वो जुलाई है, तो जुलाई में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना होता है। इसमें 13 हमारे जो डिपार्टमेंट है अलग, वो 13 डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग रहता है और हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं इस पर्पज से कि साफ सफाई रहे, कहीं पर भी पानी का भराव न हो ताकि मक्खी मच्छर वहां पर पनपे।
2: इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसके साथ ही अन्य विभाग भी सहायक विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभियान के तहत आशा और आंगनवाड़ी घर घर पहुंचकर इन रोगों के फैलने के कारणों और उनसे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। जनपद के रेल यात्रियों के लिए अब दक्षिण भारत का सफर आसान होगा। उत्तर मध्य रेलवे ने 5 अगस्त से प्रयागराज और यशवंतपुर के बीच एक नई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे अब बांदा से दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध होगी। प्रयागराज यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज से यशवंतपुर के लिए रवाना होगी, जो बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो होते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी। ट्रेन बुधवार को शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होकर रात्रि 11:10 पर बांदा पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 23 ICF कोच होंगे, जिसमें 7 सामान्य, 11 स्लीपर, 2 AC थर्ड, 1 AC सेकंड और SRRD कोच भी शामिल रहेंगे। दक्षिण भारत के लिए जनपद से सीधे ट्रेन मिलने से यहां के स्थानीय लोगों में काफी प्रसन्न

0: लगता है क्योंकि बांदा से बेंगलुरु जाने वाले यात्री काफी हैं, जिनको पहले यहाँ से कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती थी।
1: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: जनपद में विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगम लाल ने की। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिवम यादव ने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के अंतर्गत विद्यालयी वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 65 विद्यालयी वाहनों का चालान किया गया, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 43 वाहनों को सीज किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालय अपने वाहनों में वैध फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और GPS जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरलोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी नियंत्रण और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए। जनपद में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका यानी FMD टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से मोबाइल टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। ये अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 5,70,000 पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के लिए 20 मोबाइल वाहन और 32 प्रशिक्षित टीकाकरण टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। टीकाकरण के साथ जियो टैगिंग और पोर्टल पर फोटो अपलोड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे अभियान की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और स्वस्थ पशु ही किसानों की समृद्धि का आधार हैं। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने सभी पात्र पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि खुरपका, मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन प्रभावित होता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय पर टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत और यातायात व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को यात्रा मार्गों पर विद्युत पोलों की सुरक्षा, खुले ट्रांसफार्मर की बैरिकेटिंग और झूलते बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को मार्गों की मरम्मत और झाड़ियों की सफाई, जबकि नगर निकायों को स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल, शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एटा में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रोजगार मेला, तकनीकी प्रदर्शनी और कौशल विकास पर आधारित तमाम गतिविधियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ना था। कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की ओर से तैयार किए गए तकनीकी मॉडल और जॉब वर्क प्रदर्शित किए गए, जिनकी अतिथियों ने सराहना की। सफल प्रशिक्षुओं, उद्यमियों और संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक को भी सम्मानित किया गया। बृहद पौधारोपण अभियान के अंतर्गत जनपद के विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संस्थानों, सड़कों के किनारे, नहरों और तालाबों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं लाभार्थियों को

सहजन यानी मोरिंगा के पौधे वितरित किए गए, साथ ही ढाक और पलास के पौधे भेंट कर उनके संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जिले के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया।

0: राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस बार जनपद में तय लक्ष्य 31,36,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण किया गया है।
1: हरियाली का कवर यहाँ बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में यहाँ पर लक्ष्य वृक्षारोपण का था 31,36,400 और जिसके सापेक्ष 32,94,000 पौधरोपण हुआ है शासन स्तर से भी। और बड़े बड़े पैचेस को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया, हर ब्लॉक में 15 से 20 पैचेस ब्लॉक्स बड़े थे, ब्लॉक प्लांटेशन जहाँ पर अच्छा हुआ है, और हम लोगों ने तरह तरह के जैसे कपीवन करके प्लांटेशन कराए गए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 9:26 हुए हैं। श्रोताओं, आज है शुक्रवार और शुक्रवार को इस समय हम सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार।

प्रस्तुत हैं अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। मैं जानता हूं कि यदि मैं अधीर बन जाऊं तो मुझे सत्य के दर्शन नहीं हो सकेंगे। दुनिया की दृष्टि में मेरा निरहंकारी होना कोई कीमत नहीं रखता। जहां अहिंसा है वहां असफलता असंभव है। इसलिए जहां असफलता दिखाई पड़े कहना ही होगा कि वहां अहिंसा नहीं है। मुझमें अहंकार अधीरता आदि दोष हों तो मैं उनका साक्षी नहीं बन सकता। कुछ अंशों में दूसरे ही बन सकते हैं। इसका सच्चा साक्षी तो ईश्वर ही है। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसकी सिद्धि का साधन। मैंने तलवार के न्याय को सदा के लिए छोड़ दिया है। अहिंसा की शक्ति की तरह अहिंसक की शक्ति भी अमाप होती है। अहिंसक स्वयं कुछ नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है। इसलिए भविष्य में ईश्वर उससे क्या कराएगा से वह कैसे कह सकता है। अहिंसा उत्तम है, लेकिन अगर मैं सांप का भय छोड़ नहीं सकता हूं तो उस हालत में क्या करूं। मन से तो उसे मार चुका हूं, कर्म से मारने से हिचकिचाता हूं। तब धर्म कहता है कि तुम्हारे स्वभाव के मुताबिक मारो, उसे नहीं मारने का व्यवसाय व्यर्थ है। शक्ति से ज्यादा काम करने का दोष मुझमें कम है। कहने का मतलब यह है कि अहिंसा की प्रवृत्ति में मर्यादा से अधिक काम करने की गुंजाइश नहीं है। जिसमें मर्यादा नहीं उसमें अहिंसा नहीं। मुझमें तो कमी है ही, सब कामों में अहिंसा होनी चाहिए। जिससे बात करो प्रेम से करो। ब्रह्मचर्य और अहिंसा का संबंध शरीर के साथ है, इसलिए इन्हें शारीरिक तप कहा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है।

इसके बारे में मुझे भी शंका थी, अब नहीं है। दोनों का संबंध शरीर के साथ है। मनोविकार का असर शरीर पर होता है, इसी तरह क्रोधादि हिंसक विकारों का भी। अगर शरीर न होता तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य अर्थविहीन हो जाते। अर्थात दोनों शरीर के धर्म हैं और दूसरे शरीर के साथ धर्म रखते हैं। अहिंसा या प्रेम को दुख लगे तो अहिंसक दुख हिंसा करे, उसी का लगना चाहिए। कोई मुझे गाली दे तो उससे मुझे दुख क्यों होना चाहिए? अहिंसा हिंसक के प्रति बनाई जा सकती है। अहिंसक के प्रति अहिंसा कैसी? सूर्य के सामने लालटेन, सत्य भूयात प्रियम भूयात। यह व्यवहार वचन नहीं बल्कि सिद्धांत है। प्रियम का अर्थ अहिंसक है। अहिंसक सत्य के संबंध में यह होता है, अवश्य है कि उस समय वह चुभता है, लेकिन परिणाम में वो अमृतमय लगता ही चाहिए। यह अहिंसा की अनिवार्य कसौटी है। अहिंसा सबका भला चाहती है। ईश्वर के यहां सबकी भलाई का ही न्याय होता है। वह कैसे किया जाता है और कैसे न्याय में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सो खोजना हमारा काम है। इस नीति के विरुद्ध नीति प्रस्तुत करना हमारा काम कदापि नहीं। सत्य की खोज करते हुए अहिंसा की जरूरत देखी, इसलिए उसे विकसित करने का प्रयत्न किया। उसमें से उपरिग्रह की आवश्यकता प्रकट हुई, पर ब्रह्मचर्य के बिना यह सब अधूरा लगा। इसी सिलसिले में सत्याग्रह की खोज हुई, उसके निमित्त से निर्भयता आई। इसके बाद अस्वाद का नंबर लगा, लेकिन अब देखता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अस्वाद आवश्यक है। इन गुणों को जिस हद तक विकसित कर सका हूं, वह गहरे विचार और भारी प्रयत्न का परिणाम है। इन सब के मूल में ईश्वर पर अविचल श्रद्धा तो है ही। अहिंसा डरपोक का या नामर्द का धर्म नहीं, वह बहादुरों का और मर मिटने वालों का धर्म है। जो तलवार से लड़कर मरते हैं वे अवश्य बहादुर हैं, लेकिन जो बिना मारे धैर्यपूर्वक खड़ा रहकर मरता है वह अधिक बहादुर है। अतएव जो मार के डर से चावल के बोरे मुफ्त दे देता है वह डरपोक है, अहिंसक नहीं। वह अहिंसा के तत्वों को जानता नहीं। मार के डर से जो स्त्रियों का अपमान सहन करता है वह मर्द न रहकर नामर्द बनता है। वह न पति बनने के योग्य है, न पिता और न भाई। ऐसे लोगों को शिकायत करने का अधिकार नहीं। तो ये थे अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। और अब आइए सुनते हैं डीवी पलुस्कर की आवाज में ये भजन।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार और उनका प्रिय भजन। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 9:36 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं गुड्डी फिल्म का गीत वाणी जयराम की आवाज में। गुलजार के गीत को संगीत दिया है वसंत देसाई ने।

गुड्डी फिल्म का गीत आपने सुना वाणी जयराम के स्वर में। गुलजार के गीत को संगीत दिया था वसंत देसाई ने। सबक फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज मुकेश की है, गीत के बोल सावन।

आशा भोसले और साथियों के स्वर में फागुन फिल्म का गीत आपने सुना। कमर जलालाबादी के गीत को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। इसके साथ ही पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम गीत मंजूषा अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फूलचंद गोस्वामी और साथियों के स्वर में लोकगीत। सबसे पहले लोकगीत सुनते हैं अरे झूला तो झूले राधा नौलख बाग में जी।

अब सुनते हैं फूलचंद गोस्वामी और साथियों के स्वर में ही ये लोकगीत जय जय जय भोले त्रिपुरारी।

जय जय जय भोले त्रिपुरारी। ये लोकगीत आपने सुना, कलाकार थे फूलचंद गोस्वामी और साथी। लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

0: शुक्रिया फिल्म का गीत आपने सुना शबीर कुमार और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। शैली छलेंद्र के गीत को संगीत से संवारा था अनु मलिक ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
0: कार्यक्रम का अगला गीत नाजायज फिल्म से है, आवाज कुमार सानू, विनोद राठौर और साथियों की। सुदर्शन फाकिर के गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

सुदर्शन फाकेर की रचना आपने सुनी नाजायज फिल्म से। संगीत अनु मलिक का था, आवाजें थी कुमार सानू और विनोद कुमार राठौर की।

गुरु फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजों में। ए आर रहमान की संगीत निर्देशन में गीत के बोल गुलजार के हैं।

गुरु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजों में। गुलजार के गीत को संगीत दिया था एआर रहमान ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में अनजान की गीत रचना। फिल्म का नाम है नमक हलाल। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं।

नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। अनजान के गीत को संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शहनाई पर राग बहार। कलाकार थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान। शहनाई पर राग सुरमल्हार और यमन आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर। कलाकार रहेंगे बिस्मिल्ला खां और साथी।

आप घर में हो अथवा दफ्तर में, अपना काम समाप्त करने के बाद विद्युत उपकरण बंद करना मत भूलिए। प्यार हो, दुलार हो, बाहर ही बाहर हो, सीमित और छोटा सा जिसका परिवार हो,

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन की 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ लोग अभिनय करते हैं, कुछ लोग अभिनय के लिए बने होते हैं। उनकी रगों में बहता है कुछ कर गुजरने का जुनून, हर पल हर क्षण, और यही जुनून उन्हें बना देता है एक दिन मनोज कुमार।

शुतोष, शायद आप पहचान गए होंगे कि आज हम किस कलाकार की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता मनोज कुमार जी पर। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, शायद आप इस नाम से परिचित ना हों, क्योंकि हम उन्हें मनोज कुमार के नाम से ही जानते हैं। तो आपको बता दूं कि ये उनका बचपन का नाम है। उनका जन्म 24 जुलाई यानी कि आज ही के दिन सन 1937 को एबटाबाद, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जो कि वर्तमान में अब पाकिस्तान में आता है, एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था एचएल गोस्वामी और माँ का नाम कृष्ण कुमारी गोस्वामी। मनोज कुमार साहब जब मात्र 10 वर्ष के थे, तभी देश का विभाजन हो गया और विभाजन की वजह से उनके परिवार को अपनी जड़ों को छोड़ के, अपनी बुनियादी, अपने पूर्वजों की मिट्टी को छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। घर छूटा, मिट्टी छूटी, मगर बहुत सी संस्कृति, बहुत सी जो उन्होंने परवरिश के जो अपने 10 वर्ष वहाँ गुजारे, उन यादों को लेकर के मनोज साहब दिल्ली आ गए और यहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की और हिंदू कॉलेज से उन्होंने बीए की जो शिक्षा है वो पूरी की। मनोज साहब बचपन से ही दिलीप साहब, अशोक कुमार जी और कामिनी कौशल जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी कोई भी ऐसी फिल्में नहीं होती थी जो उन्होंने ना देखी हों। और बड़े ही मजे की बात है कि फिल्म शबनम में दिलीप साहब का जो नाम था वो भी मनोज कुमार था। और दिलीप साहब तो मनोज कुमार साहब के बहुत अच्छे पसंदीदा हीरो में से थे, बस उनका नाम उन्होंने चुरा लिया और हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी बन गए मनोज कुमार। और जब वो कॉलेज के दिनों में पढ़ाई कर रहे थे तो साथ ही साथ अभिनय का जो कीड़ा था ना, वो भी उनके अंदर पनपने लगा। वो कहानियां लिखने में बहुत माहिर थे, साथ ही साथ उनके अंदर एक बहुत जिज्ञासा रहती थी कि वो नाटक लिखें, पटकथा लेखन करें, और जिस प्रकार के जो अभिनय जो हीरो करते हैं, पर्दे पे ये दिखाई देते हैं, रंगीन दुनिया यानी कि जो मुंबई की रंगीन दुनिया थी वो उन्हें बहुत लुभाती थी। और बस यही सब लुभावनापन, मुंबई की जो चकाचौंध है, वो उन्हें खींच लाई मुंबई तक। मुंबई की गलियों में वो खूब घूमे और अपनी पहली फिल्म फैशन में 19 साल के इस युवक को, आप जानते हैं, 80 से 90 साल के भिखारी का छोटा सा रोल मिला था। और भिखारी के रोल से भारत कुमार तक बनने की हरिकृष्ण गोस्वामी की कहानी बहुत निराली है। मनोज कुमार साहब हमेशा कहा करते थे कि देश मेरा राम है तो मैं हनुमान हूं, चीर के देख लो सीना मेरा, मैं पूरा हिंदुस्तान हूं। उनका ये जो रूप था ना, यानी कि कुछ कर गुजरने का रूप, क्योंकि उन्होंने अपना जो जीवन जो है वो परतंत्र देश में गुजारा था और वो बहुत सारे जो स्वतंत्रता से संबंधित जो आंदोलन थे, बहुत ही छोटी उम्र में उनमें भाग भी लिया करते थे। आज़ादी का जो जुनून था, क्रांतिकारी बनने का जो जुनून था, वो उनके अंदर बचपन से ही था और यही जुनून जो है उनकी फिल्मों में भी हमको दिखाई देता है। शुरुआत तो हुई भिखारी के एक छोटे मोटे रोल से और बस फिर क्या था, फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। उन्हें ऐसे ही छोटे मोटे रोल जो है फिल्मों में मिलते रहे और मीना कुमारी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में काम किया। हालांकि काम छोटा मिलता था मगर वो कभी मना नहीं करते थे। मगर हैं तो इंसान ही इंसान, कितनी कोशिश करे, बार बार अगर कोशिश करके सफलता ना मिले तो वो टूट ही जाता है। मगर उन्होंने ठान ली थी कि ना जाने जब तक किस्मत उनसे काम करवाती रहेगी, मेहनत करवाती रहेगी, वो इम्तिहान देते रहेंगे। और आखिरकार वर्ष 1961 में उन्हें बतौर हीरो ब्रेक मिला फिल्म कांच की गुड़िया में। और उसके बाद आई विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता। इस फिल्म ने, यानी कि फिल्म हरियाली और रास्ता ने, मनोज कुमार की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार जी पर। जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे इस मधुर गीत को सुनने से पहले कि पहली फिल्म उनकी बतौर हीरो वो थी कांच की गुड़िया, और बाद में आई सन 1961 में हरियाली और रास्ता, और इस फिल्म के बाद ही उनके जीवन का जो रास्ता था वो भी बदल गया। बस फिर वो धीरे धीरे फिल्मों में अभिनय करते रहे और एक और पड़ाव आया जिसने उनकी जिंदगी को बिल्कुल एक अलग रूप दे दिया, एक अलग रुख, एक नया रूप लेकर के वो पर्दे पर आए। वो फिल्म थी 1964 में आई शहीद, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया। ये किरदार ऐसा था, ये फिल्म ऐसी थी जिसने हर भारतीय के मन में क्रांति की भावना जागृत कर दी, और यहीं से देशभक्ति की फिल्में करने वाले हीरो की छवि की शुरुआत भी हुई। फिर मनोज कुमार साहब जो थे वो एक क्रांतिकारी, देश से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए इंसान के रूप में, हीरो के रूप में, कलाकार के रूप में हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में ही क्यों, जहाँ तक हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, जो लोग देखते हैं वो उन्हें देखने लगे और मनोज कुमार बन गए भारत कुमार।

मनीष कुमार जी फिल्मों में अभिनय तो करते ही थे, मगर उसके साथ साथ फिल्मों का निर्देशन भी करते थे। कहते हैं कि वो कहानी लिखने में बहुत माहिर थे। शितो, एक बार की बात है, तब एक बार उनकी मुलाकात जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे कहा कि तुम मेरे दिए हुए नारे अर्थात जय जवान जय किसान पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते हो। बस मनोज कुमार साहब ने उनकी बात सुनी, मानी और एक ही रात में, यानी कि वो दिल्ली से जब मुंबई तक के सफर में, उन्होंने फिल्म उपकार की कहानी लिख डाली और इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और पहली बार निर्देशन भी किया। फिल्म उपकार के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद लिखने का पुरस्कार मिला और साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनके काम को हमारे देश भारत ने पद्मश्री से सम्मानित किया सन 1992 में और हिंदी सिनेमा में उनके अक्षम में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया वर्ष 2015 में। आप जानते हैं उन्होंने 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जैसे ही फिल्म उपकार का जिक्र अभी हम कर रहे थे, वो तो उन्होंने अपनी झोली में डाला ही है। और क्यों ना नवाजा जाए उन्हें उतने सारे पुरस्कारों से, क्योंकि उनका काम जो था श्रोताओं, वो सीधा लोगों की आत्मा तक पहुंचता था। सीधा आत्मा से ऐसा लगता था कि जिसे एक आम इंसान की कहानी वो पर्दे पर दिखा रहे हैं। उनकी फिल्मों के गीत सिर्फ गीत नहीं होते थे, वे होते थे हमारे देश की पहचान, हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, उसकी आत्मा का पर्याय होते थे। श्रोताओं, बहुत सारे बहुत मधुर गीत उनकी फिल्मों के हैं, हालांकि समय की एक पाबंदी होती है, समय बहुत कम होता है, इसलिए हम हर गीत को शामिल नहीं कर सकते हैं, मगर हम जानते हैं कि आप भी बिल्कुल अनजान नहीं हैं उनकी फिल्मों के गीतों से। उनका हर गीत जो होता था वो देश से जुड़ा होता था, देशभक्ति के कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक झलक जो है वो उनके गीतों में मिलती थी। उन्होंने पूरा जीवन जो है वो सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं समर्पित किया, बल्कि वो समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, बहुत सामाजिक कार्य भी करते थे। और पारिवारिक जीवन की अगर उनकी बात करें तो उन्होंने शशि गोस्वामी से विवाह किया और इस विवाह के पश्चात उनके दो बेटे हुए, कुणाल और विशाल गोस्वामी, जो भी कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना एक मुकाम जो है वो बना रखा है। मनु साहब हमेशा कुछ बातें जो है वो एक अलग अंदाज में, एक शेरो शायरी के रूप में कहा करते थे।

वो कहते थे कि जिए तो ऐसे जिए जिसमें कुछ बात तो हो, कृष्ण की थोड़ी लीला हो और राम सा वनवास हो। वाकई में बहुत गहराई होती थी उनकी कही कई बातों में। हर बात में वो कोई ना कोई एक ऐसा संदेश देके जाते थे जो लोगों के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता था। मगर जीवन जो कि आने और जाने का नाम है, ये कभी किसी के लिए ना रुका है न रुकेगा, ये हम सब जानते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें हम आम इंसान याद करते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं, हमारे लिए एक

हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं, हमारे लिए एक यूं कहें ना मार्गदर्शन का काम करते हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे यादों में रहती हैं। इसी प्रकार का जीवन मनोज कुमार जी ने जिया। 4 अप्रैल सन 2025 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हुई और उनके पार्थिव शरीर को श्रोताओं राष्ट्रीय तिरंगे से सजाकर 21 तोपों की सलामी दी गई और पूरे भारतवर्ष ने उन्हें नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जाना तो हर इंसान को है, मगर मौत यदि ऐसी हो कि आपका शरीर जो है वो तिरंगे में लपटा हो, पूरा भारतवर्ष जहां तक लोग हों जो आपको जानते हो देखते हो उनकी आंखें नम हो, जिन्हें दुख हो, वो जाना वाकई जाना कहलाता है।

जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हर इंसान की कहानी है उसकी अपनी जिंदगी, मगर ये निर्भर करता है हर इंसान पर कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीता है, किस प्रकार के आयाम वो स्थापित करता है अपने जीवन में, अपने लिए, अपने अपनों के लिए और औरों के लिए। जमाना इस महान कलाकार अर्थात मनोज कुमार साहब को हमेशा हमेशा याद रखेगा।

0: दिलीप रघुवंशी, अखलाक हुसैन, डॉक्टर महेश धाकड़ और संचालन कर रहे हैं अनिंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, आज की इस विशेष परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल मीडिया जगत से जुड़ा नहीं है बल्कि लोकतंत्र, संस्कृति, समाज और जनजीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ विषय है। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है कि लोक प्रसारण के जो बदलते आयाम हैं, परंपरा है, तकनीक है, सूचना, संस्कृति, जनविश्वास, इन सभी आयामों पर आज हम अपने सम्माननीय अतिथियों के साथ उनके विचारों को जानने, उनको समझने का प्रयास करेंगे इस परिचर्चा के माध्यम से। भारतीय प्रसारण दिवस की अगर बात करें तो करीब करीब एक शताब्दी की ये यात्रा आज 99 वर्ष पूरे कर रही है और इस अनवरत यात्रा में रेडियो ने स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से लेकर राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, साहित्य, संगीत, खेल, विज्ञान और तकनीक, समाज के हर वर्ग को इनसे जोड़ने का कार्य किया है। आज का युग डिजिटल युग है और जब मीडिया का स्वरूप भी तेजी से बदला है, डिजिटल स्ट्रीमिंग हो, FM रेडियोज हो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आजकल AI, इन सब ने सूचना के स्वरूप को बदल कर रख दिया है और ऐसे समय में ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोक प्रसारण यानी हमारी अपनी भूमिका क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, उसका भविष्य क्या होगा। आज के अतिथियों से आपका परिचय करा दूं, जिन विशिष्ट अतिथियों को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले श्री अरुण डंग साहब हैं जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं।
2: नमस्कार।
1: अखलाक हुसैन साहब हैं जो मीडिया कर्मी रहे हैं और दिलीप रघुवंशी साहब हैं वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। राज बहादुर राज जी हैं जो साहित्यकार भी हैं और संस्कार भारती जैसे सांस्कृतिक संगठन से जुड़े हुए चिंतक हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर महेश धाकड़ जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत में आदरणीय डंग साहब से करना चाहूंगा कि आप साहित्य और समाज दोनों के करीब रहे हैं, आपके विचार में लोक प्रसारण की सबसे बड़ी ताकत वो क्या है? क्या ये केवल सूचना का माध्यम है या समाज की एक सामूहिक स्मृति या सांस्कृतिक चेतना का संवाहक है?
2: हम मानते हैं कि 90वां वर्ष हुआ ऑल इंडिया रेडियो को स्थापित हुए, लेकिन इतिहास जैसा कि आपने अभी कहा के 100 साल का है और मैं समझता हूँ इससे भी पूर्व का है। 3 साल पूर्व भी इस 100 साल से बॉम्बे रेडियो क्लब बन गया था और उसके तुरंत बाद कलकत्ता में भी बना और ये बनाया था कुछ उत्साही लोगों ने
1: जी।
2: इसका एक लंबा इतिहास है। इसकी जो एक चीज हमेशा कायम रही वो थी विश्वसनीयता
1: जी।
2: ये विश्वसनीयता का दौर इसका कभी भी खत्म नहीं हुआ और इसने कई रूपों में और कई चरणों में कई चीजों को देखा और कई चीजों का ये साक्षी रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शुरू में जो मेरा बाल्यकाल था उसमें एक लकड़ी के बक्से के अंदर रेडियो रखा जाता था और उसमें जो ट्यूब होती थी वो बड़ी देर में गर्म होती थी लेकिन लोग इंतजार करते रहते थे। और उसके बाद में इसने एक बदलते इतिहास को भी देखा। इस इतिहास में शुरू में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की भी एक स्थापना की और उससे पहले मोहन स्वरूप कैप्टन और राज बिहारी बोस ने भी इसके अंदर काम किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने
1: जो महिला
2: काफी इसके अंदर उनका भी नाम रहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसमें काफी ऊंचाइयां प्रदान की। सही मानों में देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले 1944 में कस्तूरबा को राष्ट्रीय माता और उसी साल कुछ महीनों में गांधी जी को राष्ट्रपिता का ये रेडियो स्टेशन से उन्होंने सबसे पहले कहा था। और देश की आजादी के बाद भी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो उद्बोधन दिया उसको भी रेडियो स्टेशन से ही प्रसारित किया गया था। और इसका कितना बड़ा विश्वसनीयता रहती थी कि जब देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे में जिसमें मेरा परिवार भी था, शरणार्थी या विस्थापित लोगों का था, उनको कई अखबारों, कई समाचारों पर यकीन नहीं आता था, आता था तो केवल मात्र रेडियो के ऊपर ही आता था
1: जी जी।
2: मुझे बताया जाता था क्योंकि देश की आजादी के बिल्कुल कुछ समय पश्चात ही मेरा जन्म, तो घर के अंदर सारी चर्चाएं यही हुआ करती थी और उस समय एक रेडियो लगा दिया जाता था। गांधी जी कभी इसके बहुत पक्ष में नहीं थे आकाशवाणी के, लेकिन उन्होंने मिलना था कुरुक्षेत्र के अंदर जहां 2 लाख शरणार्थी थे, तो उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, दिवाली के दिन ने अपनी

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है परिचर्चा, शीर्षक है प्रसारण के बदलते आयाम। प्रतिभागी हैं डॉक्टर राज बहादुर राज, अरुण डंग,

0: मिल पाएंगे। तो गांधी जी ने रेडियो स्टेशन दिल्ली में प्रवेश किया, आज भी उनका वहाँ चित्र लगा हुआ, और जिस तारीख को किया ये 1947 नवंबर का दिन था, उसको लोक प्रसारण दिवस आज भी हम लोग मनाते हैं। और उन्होंने 2 लाख लोगों से संपर्क करने का भी जो माध्यम चुना वो आकाशवाणी थी,
1: रेडियो ही था।
0: तो आकाशवाणी का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन, और आज भी बदलते स्वरूप के साथ में इसने भी अपना स्वरूप बदल लिया। कहां एक बक्सा था, कहां फिर हमारा पोर्टेबल ट्रांजिस्टर आ गया, बैटरी के साथ में आ गया, और आज तो आपके नेटवर्क से होता हुआ आपके मोबाइल के अंदर भी है और जन जन के पास में है।
1: ठीक बात। अखला साहब, आपने पारंपरिक रेडियो और आधुनिक जो डिजिटल स्वरूप है उसका, उसको बड़े निकटता से देखा है। आपकी नजर में डिजिटल क्रांति ने प्रसारण की दुनिया को किस तरह से बदला है? सूचना की अधिकता आप महसूस करते हैं और विश्वसनीयता जो है वो महत्वपूर्ण है आज के दौर में?
2: देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है आज के दौर में ज्यादा महत्वपूर्णता है इसकी, क्योंकि जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, तमाम तरीके की सूचनाएं, और इस वक्त अपने आप की वो जो एक सब्सक्रिप्शन और अपने व्यूज की होड़ है, जो डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, उसके माध्यम में ऐसी कोई भी सनसनीखेज वारदात को परोस देना, तो ऐसे में आज मैं भी कमर्शियल काफी रेडियोज में रहा हूं, लेकिन आज भी चूंकि प्रोडक्ट आकाशवाणी से हूं मैं, तो इस ऑथेंटिसिटी को मैं यही कहूंगा कि पहली प्रमाणिकता तो आज भी हमें रेडियो पर और सरकारी विभाग से प्रदत्त जानकारी पर ही जाती है।
1: बिल्कुल ठीक। सोशल मीडिया पर सूचना की जो गति होती है वो बड़ी तेज होती है
2: जी।
1: ऐसे में लोक प्रसारण की विश्वसनीयता, उसको आप किस तौर पे आज महसूस करते हैं? क्योंकि अब आप डिजिटल युग में अगर देखें तो कोई भी सूचना सबों में लाइव उसको फीड मिलती है
2: जी।
1: लेकिन हमारा जो लोक प्रसारण है वो कहीं ना कहीं उसकी जांच परख करके तब खबरों को जनमानस तक पहुंचाता है। तो वो सूचना की महत्वपूर्णता को आप ज्यादा वजन देते हैं या तीव्र गति को?
2: देखिए, मैं ये भी कहूंगा कि वर्तमान में हो सकता है कि हमारा जो पारंपरिक और सरकारी तंत्र से जो प्रसारण होता है उस तक लोग शायद अपने मोबाइल्स में अपनी गाड़ी में ना रखते हों, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि यदि वो उपलब्ध होगा तो वो पहले वो उसे सुनेंगे। उसका रीजन ये है कि आज भी जब कोई खबर आती है तो वो कम से कम 10-15 चैनल पर जाते हैं कि यहां क्या कहा जा रहा है, वहां क्या कहा जा रहा है, इस यूट्यूब चैनल पर क्या है, तब जाके वो छान पाते हैं। तो इस छनन से ही पता लगता है कि विश्वसनीयता की चाहत उनको भी है। तो कहीं ना कहीं जो अब हमारे एरा के लोग हैं वो आज भी किसी सरकारी चैनल पर जाने का प्रयास करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अगर मैं रेडियो नहीं सुन सकूं तो उन शख्स से पता कर लूं जो इन रेडियो को सुनते हैं।
1: डॉक्टर महेश जी, आने वाले सालों में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो और डिजिटल मीडिया की जो भूमिका है उसको आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पे महसूस करते हैं या एक दूसरे को कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे?
3: मैं इन दोनों को एक पूरक के रूप में देखता हूं, क्योंकि जिस तरीके से एफएम रेडियो ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो दूर दूर तक अपने नौकरी और उसके लिए जाते हैं, तो गाड़ी में अक्सर देखा गया है कि एफएम रेडियो ही चलता हुआ दिखाई देता है। और जहां तक डिजिटलाइजेशन की बात है तो इसने रेडियो की रीच को और बढ़ाने का काम किया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो तकनीकी कारणों से कभी कभी प्रसारण कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है तो डिजिटलाइजेशन के जरिए वो प्रसारण वहां तक पहुंचता है। तो इस लिहाज से देखें तो परस्पर निर्भरता भी है। और जहां तक बात रेडियो की है कि रेडियो अपना स्वरूप तो बदल सकता है पर रेडियो का अस्तित्व सदैव के लिए बना रहेगा, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज ये कि जो सोशल मीडिया का आज जमाना है, सोशल मीडिया ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे पहले हम लोग जब वार्ता करते थे तो उस वार्ता की सूचना सिर्फ अखबारों में छपती थी, अब लोग सोशल मीडिया पर भी उसको डालते हैं और मुझे लगता है कि उससे जो लिसनर्स की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा आकाशवाणी के भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और उसके अपने ऑफिशियल पेज और अपने ऑफिशियल चैनल्स हैं, उन पर भी वो सुरक्षित रहता है। तो जो लोग उस वक्त नहीं सुन पाते हैं वो बाद में सुन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशवाणी या रेडियो का जो अपना महत्व है उसे कमतर करके हम नहीं आंक सकते, बल्कि डिजिटलाइजेशन के बाद ये और एनरिच ही हो रहा है
1: जी जी।
3: तो इसलिए इसका अस्तित्व बना रहेगा।
1: राज साहब
2: जी,
1: भारत की सांस्कृतिक विविधता दुनिया भर में उसकी मिसाल नहीं है। लोक प्रसारण ने भारतीय संस्कृति को, भारत की लोक कलाओं को, भारत की लोक भाषाओं को और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके संरक्षण में जो अपनी भूमिका निभाई है, आज के वैश्विक

0: रण के दौर में भी अगर देखें तो सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने में आकाशवाणी की भूमिका और दूरदर्शन की भूमिका, इन दोनों लोक प्रसारकों की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण पाते हैं और उसके योगदान को आप किस तरह से लेते हैं?
1: निश्चित रूप से श्रव्य और दृश्य, ये दो, यानी सुनना और देखना
0: जी,
1: ये दोनों ही माध्यम इतने सशक्त हैं कि जो लोक जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। जैसा कि इतिहास बताया है, प्रसारण का इतना लंबा इतिहास है, तो जैसे जैसे देश काल वातावरण के अनुसार परिवेश बदलता है, उस परिवेश के अनुरूप ही भाषा, व्याकरण, व्यवहार, आचार संहिता, ये सब कुछ बदलती चली जाती है। बहुत कुछ रेडियो ने अपने माध्यम से जो प्रसारण का बहुत प्रयास किया कि स्वरूप को बदला जाए, वो बदलता गया भी है। लेकिन वर्तमान में जो, चूंकि एक साहित्य का विद्यार्थी हूं मैं, इसलिए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज भाषा के बीच में अंग्रेजी और हिंदी, इसके बीच की एक ऐसी भाषा पैदा हो गई है जो हमारे विचारों का संप्रेषण जो होना चाहिए उस संप्रेषण में कहीं ना कहीं बाधा पैदा करती है। आकाशवाणी के लिए थोड़ा सा प्रयास यही करना है कि जो भी परसंवाद, कविता पाठ या अन्य जो भी माध्यम से हम श्रवण करा रहे हैं समाज को, उसमें कितनी भाषा की शुद्धता और विषयानुकूल भाषा का, ये बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि संप्रेषणता उसी से होती है जब हम जो हृदय से निकली हुई बात है वो बात सीधे सीधे जाकर के प्रभाव करती है। आज एक और चुनौती है, एक और युवा पीढ़ी को हमें देखना है, उस युवा पीढ़ी तक आज के जो विचार हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से जा रहे हैं, तो आकाशवाणी रेडियो स्टेशन के माध्यम से हम उन युवा पीढ़ियों को भी आकर्षित करना चाहते हैं और उनके अनुरूप हम इस प्रकार के कुछ कार्यक्रमों को, जिनसे उनकी संस्कृति, संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी है उससे वो परिचित हों, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको उनके अनुरूप जो भाषा का गठन कर रहे हैं। और एक और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक संस्कार है, वो ग्रामीण अंचल, दूर दराज वनवासी वहां भी हैं, क्योंकि भारत तो विविधता में एकता लिए हुए है और विविध रंग हैं सांस्कृतिक हमारे, तो हमको सबको समेट करके लेना है। इसलिए हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा उनके लिए जो भाषा का प्रयोग है वो सहज सुबोध, सहज सरलता, बोधगम्य रूप होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखते हुए हमको ये प्रयास आकाशवाणी के द्वारा हो भी रहे हैं और आगे भी होने चाहिए कि हम भाषा की शुद्धता
0: बनाए रखें। डंग साहब, कविता हो, कहानी हो, नाटक हो या लोक भाषाएं हो, जिस प्रकार रेडियो ने इन सबको घर घर में पहुंचाया है, क्या आज भी आप उसकी उसी सांस्कृतिक भूमिका को देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, और उससे भी आगे बढ़कर देखता हूं। शुरू में मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो जो था वो अपने आप में पूर्ण नहीं था, इसके पीछे जो कल्पना थी वो ज्ञान की विविधता को आयाम देने की थी, मनोरंजन नहीं था
0: जी।
2: काफी समय तक फिल्मी संगीत को अलग रखा गया, जबकि वो हमारे जीवन का एक
0: अहम
2: हिस्सा।
0: ठीक बात।
2: और जो शुरू में भी जो कि बहुत घाटे में गई, और आज भी कई स्टेशन ऐसे जो खोलते हैं, आर्थिक दृष्टि से वो ऐसे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर जो सोच पैदा हुई कि ऑल इंडिया रेडियो के सुनने वाले कम होते गए, और पास में ही एक छोटा सा द्वीप जो भारत के सामने बहुत ही कम संख्या का था, श्रीलंका, रेडियो सलोन ने सारा का सारा शो चुरा लिया, सब उसको देखने लगे, क्योंकि मनोरंजन का अभाव था और ज्ञान की विविधता थी, कृषि का था, महिलाओं की शिक्षा का था, मजदूरों को सशक्तिकरण की बातें थी, और भी इसका बड़ा भारी महती योगदान था, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ और भी रुचिकर चीजें चाहिए। इसके लिए बाद में विविध भारती की स्थापना की गई और उसने आके इसे पूर्ण किया,
0: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन
2: जी। और आज बहुत इसे मनोरंजन का साधन मानने लग गए, क्योंकि सुनने वाले इसमें ज्यादा, जैसा अभी आपने बताया कि एफएम रेडियो ने एक बिल्कुल ही एक नई दिशा दे दी, क्योंकि उसमें स्पष्टता बहुत है, सुनने में सुलभता बहुत है, और खड़खड़ की आवाज जो शुरू में मैंने बचपन में रेडियो में सुनी अब वो नहीं है। इंटरनेट
0: की उसमें बड़ी भूमिका रही,
2: बहुत बड़ी भूमिका रही, और इसने स्वीकार किया, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, इसने इसे स्वीकार किया, अपने रूप को भी बदल लिया, अब वो डब्बे से निकल के आके आपके कंप्यूटर, इंटरनेट

0: नेट पे आ गया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आज मैं कार में भी जाता हूँ, रेडियो में एफएम सुनता चला जाता हूँ, उसके बाद में रेडियो क्या कर रहा है उसमें चर्चाएं भी हैं, परिचर्चाएं भी हैं, कविताएं भी हैं, इसमें है, इतने प्रोग्राम
1: मिलते हैं,
0: हम होते हैं कि आपको अपने रुचि के अनुसार करते चले जा रहे हैं। और मैं अस्पताल के अंदर भी देखता हूँ, सैनिकों के अंदर भी मैं देखता था जो कि अस्पताल में जाके मिलता था, तो वो भी और कुछ नहीं अपने साथी के रूप में जब उन्हें मिलने वाले लोग आते थे तो मिलने वाले लोगों के साथ में उन्हें कोई अपना साथी उनके जाने के बाद लगता था, तो ऑल इंडिया रेडियो ही लगता था और उससे वो मनोरंजन करते थे अपने आप को।
1: ठीक, दिलीप रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो रंगमंच से संबद्ध हैं। दिलीप जी, रेडियो जी, नाटक, रंगमंच, इन सब का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है
2: जी,
1: आपके विचार में रेडियो ने भारतीय रंग कर्म को किस तरह से समृद्ध किया है?
2: देखिए, थोड़ी सी एक विधा अगर रंगमंच की और हम आकाशवाणी की देखें तो थोड़ा सा फर्क है
1: जी।
2: मगर वो एक फर्क एक चुनौती के साथ प्रस्तुत होता था, क्योंकि वहां एक नाटक में काम करने वाले कलाकार दिखाई नहीं देते थे, तो आवाज से ही वो अभिनय पैदा करना पड़ता था कि आदमी को लगे, सुनने वाले श्रोता को, कि वो लाइव हमारे सामने एक अभिनय मंचित हो रहा है। एक बहुत लंबी परंपरा हम देखते हैं नाटकों की श्रृंखला में, तो उसमें एक पुराना बहुत महत्वपूर्ण नाम मुझे याद आता है, चिरंजीत जी का। वो एक लेखक भी थे, अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे, और उनका एक नाट्य संग्रह रेडियो पर जो प्रसारण उनके नाटकों का हुआ वो भी प्रकाशित हो चुका है। तो वहां से इस परंपरा को एक पॉपुलर कहें, लोगों की वो आकर्षित करने के लिए ढोल की पोल नाम से एक सीरीज उन्होंने आकाशवाणी पर शुरू की थी और वो लगातार फैलती गई, और उसके बाद हमारे पास के जिले मथुरा में भी आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ, वहां से भी नाटकों का प्रसारण जारी हुआ, और उसके बाद फिर आगरा में, तो मैं वहां का नाटक का एक कलाकार था मथुरा में, और उसके बाद आगरा आने के बाद भी मैं निरंतर नाटकों से जुड़ा रहा। बहुत से धारावाहिक की एक श्रृंखला लगातार हम आकाशवाणी की ही ये परंपरा थी, और एक स्टोरी टेलिंग के लगातार एक सिनेमा के गीतों के माध्यम से एक कहानी प्रस्तुत, गीतों भरी एक कहानी प्रस्तुत की जाती थी जो इतनी रोचक होती थी कि सब कुछ छोड़ के हम लोग अपना कान रेडियो के स्पीकर पर लगा लिया करते थे और खाना पीना सब भूल जाया करते थे। वो इतनी मनोरंजक होती थी। और यहाँ मैं एक बात का जरूर स्मरण करना चाहता हूँ, बारंबार मेरे ध्यान में, जब 26 जनवरी की परेड निकला करती थी तो वो देखने का हमको कभी सौभाग्य नहीं मिलता था उस दौर में, तो जसदेव सिंह जो आंखों देखा प्रसारण सुनाते थे तो कहीं भी हम लोगों को यह महसूस नहीं होता था कि वो झांकी, यहाँ झांकी जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे मतलब बहुत दिनों तक हम सिर्फ उनकी आवाज के दीवाने थे, हमें नहीं मालूम था कि वो सरदार हैं, कौन है। बाद में उनके चित्र देखे तो पता चला कि वो इतने महान हैं। या आज हम मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली के हैं उसमें शम्मी नारंग की आवाज सुनते हैं, इतना ठहरा, इतना बेस, मतलब जो उसमें यात्रीगण यात्रा करते हैं हर स्टेशन के आने से पहले शम्मी नारंग की आवाज बर बस हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। और यह मैं एक बात और बता दूं, आकाशवाणी के स्तर की अगर हम बात करें या दूरदर्शन के स्तर की, तो शम्मी नारंग का जो सिलेक्शन हुआ था वो 1,00,000 लोगों की जो टेस्ट दिया गया था उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई थी। तो माने जो एक स्तर की जो गहराई थी, एक जो पकड़ थी, एक परिपक्वता थी, वो हम उस दौर के नाटकों में देखते हैं। यहाँ एक मिसेज राजपूत हुआ करती थी,
1: ऋतु
2: राजपूत, नाट्य निर्देशक, उनके निर्देशन में मैंने भी कई नाटकों में काम किया, और बहुत ही गुणी कलाकार थी। और हमारे एक आगरा इप्टा के साथ ही जो आगरा केंद्र पे भी रहे थे, विनोद शर्मा, या उससे पहले हम पुराने दौर की बात करें तो डॉक्टर अचला नागर, आकाशवाणी का ही, हाँ आकाशवाणी के
0: नाटकों में दिलीप भाई हवा महल का भी का।
2: जी हवा महल भी
1: जी।
2: और वो फिर
1: उसने जो है लोगों को जितना अपने साथ जोड़ा है
2: बिल्कुल, बिल्कुल
1: और शायद आज भी उसने
2: आज भी जोड़े
1: हुए
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल।
1: अखलाक जी मैं आपको यहाँ बीच में लाना चाहूंगा, आज के पॉडकास्ट

0: और जो स्टोरी टेलिंग की बात की, ऑडियो स्टोरी टेलिंग, रेडियो नाटक नए स्वरूप में क्या इनके माध्यम से फिर से लोकप्रिय हो सकते हैं?
1: इतना बेहतर लोकप्रिय हो सकते हैं, मतलब मेरा तो कहना है कि इससे ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं जो हम वर्तमान में जो देखते हैं स्थितियां। मैं अगर यहां से प्रसारित होने वाली किसी कहानी की बात करूं, रेडियो ने एक जमाने से, हम इसी जहां स्टेशन पे हम बैठे हैं यहीं की बात थी कि उसमें जो इफेक्ट्स चलते थे पीछे, तो जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे उस जमाने में, घोड़ा चलने की आवाज थी या वगैरह वगैरह, आज उसके लिए फॉली एक कोर्स होता है, वो किया जाता है। तो रेडियो अब से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, तब भी इन चीजों के साथ काम कर रहा था। और अभी एक वर्तमान में मैं किसी प्राइवेट चैनल को सुन रहा था, आज भी वो उन इफेक्ट्स का आज इस्तेमाल कर रहे हैं जो रेडियो उस जमाने में करता था। ये इफेक्ट्स का इस्तेमाल अगर मैं कहूं ऑडियो में, तो आकाशवाणी से और रेडियो से और प्रसारण जो हमारा है भारतीय सरकारी प्रसारण, इसमें होता। तो अगर आज हमने स्टोरी अपना ली और वो विधाएं और वो मेहनत जो यहां होती है, जो बाहर नहीं देखी जाती, तलफ्फुज की बात कहें, मैं आज देखता हूं ना जा जा खा खा, ये आकाशवाणी से निकला हुआ ब्रीडी समझती है इस तलफ्फुज को, तो जितनी खूबसूरत ये पैदा कर सकता है स्टोरी तमाम चीजों के साथ, तमाम डायमेंशंस के साथ, उतना मैं समझता हूँ कमर्शियल भी नहीं कर पाएगा आज।
0: आवाज के जरिए आप लोगों तक उन संवेदनाओं को पहुंचाते हैं, तो उसका एक अपना स्तर होता है
1: जी।
0: और रंगमंच की बात हम कर रहे थे दिलीप जी से
2: जी,
0: आज का जो युवा कलाकार है उसको लोक प्रसारण के मंचों से जोड़ने के लिए आप किन प्रयासों को समझते हैं कि वो ज्यादा कारगर होंगे? कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनको आज किया जा सकता है, जहां नए जो युवा कलाकार हैं वो लोक मंचों से जुड़े?
2: देखिए, जहां तक हम बात करें, जैन जी शब्द इन बच्चों के लिए बोला जा रहा है आजकल, उन बच्चों में बहुत आकर्षण है निश्चित रूप से, मगर वो दरअसल आकर्षण एक दूसरी दिशा की तरफ हम देखने को पाते हैं, और इतना समर्पण और इतना सब्र दरअसल उनमें नहीं है। रंगमंच या नाट्य प्रस्तुति, चाहे वो आकाशवाणी पर हो या रंगमंच पर, उसमें बड़ी पेशेंस की जरूरत है और बड़े अभ्यास की जरूरत है और निरंतरता की आवश्यकता है। उनका जो एक लक्ष्य मैं देखता हूँ या पाता हूँ, वो चाहते हैं कि अब दूरदर्शन के प्रति भी उतना आकर्षण उनका नहीं रहा, वो सिर्फ फिल्मों की तरफ,
0: उसमें भटकाव ज्यादा है, उसमें जल्दीबाजी ज्यादा है,
2: तो वो एक उसको एक माध्यम के रूप में, एक सीढ़ी के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अंदर डूबना कतई नहीं चाहते, एक शॉर्टकट की तलाश के लिए है। मगर कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनको आज रंगमंच के प्रति लगाव भी है और एक समर्पण का भाव भी है, और कुछ ऐसे युवा भी हैं हमारे साथ भी जो काम करते हैं, जो फिल्मों की तरफ उतने ज्यादा आज भी आकर्षित नहीं है।
0: राज बहादुर जी
1: जी,
0: नई पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में लोक प्रसारण की भूमिका क्या हो सकती?
3: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यदि इस पर आगे बढ़कर के कार्य किया जाए, और हो भी रहा है। लोक प्रसारण में लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति से ही नई पीढ़ी में संस्कारों का संप्रेषण हो सकता है, और वो आकाशवाणी कर सकती है यदि उनके वो चयनित जो विधाएं हैं, कार्यक्रम हैं, गतिविधियां हैं, उनको लाया जाए। उदाहरण के तौर पर जो हमारे लोक गीत हुआ करते थे, उन लोक गीत के अंदर हमारी लोक परंपराएं, लोक संस्कृति, आचार विचार, ये सब निहित हुआ करते थे, लेकिन वो अब धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आकाशवाणी का इसमें बहुत बड़ी पहल हो सकती है, क्योंकि गांव देहात में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि वहां तो लोग आज भी आकाशवाणी के उन सभी कार्यक्रमों को जो लोक विधाओं से संबंधित हैं बड़ी रुचि से सुनते हैं, लेकिन इनको आज की नई पीढ़ी, जो आज की जनरेशन है, उनमें कैसे रुचि जागृत की जा सके, इसके लिए आकाशवाणी बहुत बड़ा एक माध्यम बन सकता है।
0: महेश जी, पत्रकारिता का मूल आधार होता है ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता। आजकल के दौर में फेक न्यूज या सूचना का अतिरेक जो है, लोक प्रसारण को अगर देखें तो आज भी निष्पक्ष, प्रमाणिक और जिम्मेदार पत्रकारिता का आधार जो है वो कहीं न कहीं लोक प्रसारण को माना जाता है। आप क्या कहेंगे?
4: मैं इसमें एक सवाल उठाता हूं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो से समाचारों का प्रसारण हुआ करता था, तो उसको हमने लोकलाइज क्यों नहीं किया? अगर हम उसी तरीके से समाचारों को अगर आगरा स्टेशन से, मथुरा स्टेशन से प्रसारित करने लगे, तो मुझे लगता है कि अफवाहों पर काफी

0: हद तक विराम लग सकता है, क्योंकि एक अखबार को छपने में करीब 24 घंटे का अंतराल होता है, लेकिन आकाशवाणी उस सूचना को आधिकारिक तौर पर और विश्वसनीयता के साथ त्वरित जो है प्रसारित कर सकती है। और जो अफवाहें जिस तरीके से फैलाई जाती हैं, जिनसे कई बार दंगे भी हुए हैं, कई बार इस तरह की स्थितियां हुई हैं कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। अगर हर स्टेशन लोकल न्यूज भी अगर प्रसारित करने लगे मनोरंजन और अन्य सूचनाओं के साथ साथ, तो मैं समझता हूँ शायद जनसंचार का एक बहुत ही सॉलिड साधन हमारे लिए खड़ा होगा। हालांकि उसमें मानव संसाधन कुछ लगाना पड़ेगा, मगर वो जो जनहानि होती है अफवाहों से या जो दुर्घटनाओं से और दंगों से, उसे बचाया जा सकता है। और आकाशवाणी हो या कोई अन्य रेडियो हो, वो एक जिम्मेदार माध्यम तो होता ही है, क्योंकि वहां जो भी प्रसारित किया जाता है उसकी पुष्टि करके ही उसको प्रसारित किया जाता है, और बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो इसलिए वहां से ऐसी कोई भी गलती या कोई भी लापरवाही नहीं होगी।
1: डिजिटल दौर में अखलाक जी, भविष्य की पत्रकारिता में सत्यापन, नैतिकता या जनहित, इन सब चीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है?
2: डिजिटलाइजेशन में वर्तमान में सरकार के जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो अगर कुछ लाते हैं तो लाते होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ भय से ग्रसित होकर आदमी बचेगा फेक न्यूज फैलाने से, इससे काम नहीं चलेगा। नैतिक जिम्मेदारियों के हिसाब से एक सोच, एक फिलॉसफी, एक दर्शन कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये इंसान होने की हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा दर्शन बच्चों में पैदा करना या ऐसा माहौल पैदा करना, ये किसी सरकारी संस्था या किसी ऐसे ही संस्थानों से निर्धारित हो सकता है इतने बड़े स्तर पर। लोकल स्तर पर छोटी छोटी संस्थाएं इस बात की ऑथेंटिसिटी को प्रमाणित करने के लिए काम करती हैं। भाई साहब बैठे हैं थिएटर से, इनके थिएटर से भी जब कोई नाटक होता है तो हम उसको ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर फैलाना और इतने संसाधनों के साथ जाना, ये यहीं से पॉसिबल हो सकता है और कहीं से पॉसिबल नहीं हो सकता।
1: आज का जमाना डंग सर एआई का है, डिजिटल मीडिया हो, पॉडकास्ट हो या ऑन डिमांड कंटेंट आजकल मौजूद है। क्या लोक प्रसारण इन तकनीकों को अपनाते हुए अपनी मूल पहचान या विश्वसनीयता को बनाए रख सकता है?
3: देखिए, अभी एक शब्द प्रयोग में लाया गया था, जेन जी। ये वो तबका है जो पैदा ही स्मार्टफोन लेके हुआ, उसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। आज नई युवा पीढ़ी को अंडर असेस करना ही गलत है, वो हमसे कहीं ज्यादा ज्ञान युक्त हो चुके हैं और दुनिया को खूब समझ रहे हैं। इसके साथ साथ वो नई टेक्निक को भी स्वागत करने के लिए दो कदम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तब भी पुरानी चीजों के लिए दख्यानुसी हो सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी से मुझे बड़ी उम्मीद है, आशावान है। वो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर भटकी नहीं है, किसी और टेक्निक के सहारे वो आगे बढ़ रही है। ये बिल्कुल सही है कि प्रसार भारती, आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो या रेडियो की उसमें इनका एक अलग तरह का योगदान है। उसको भी वो स्मार्टफोन के अंदर इस रूप में देख रहे हैं कि शब्द जो है वो बिल्कुल सही तरीके से उनके कान पे पहुंचाने का ये सशक्त माध्यम है।
1: लेकिन आज का युवा तो पारंपरिक रेडियो कम सुनता है,
3: नहीं
1: वो ऑडियो कंटेंट पहले से कहीं अधिक सुनता है,
3: उसमें अपने मतलब की बात निकाल लेता है वो वो उसकी समझ अपनी है।
1: अखलाक जी, लोक प्रसारण को युवाओं तक एक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए क्या नई चीजें की जा सकती?
2: मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं एफएम में हूँ तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब एफएम में तीन गानों के बाद रेडियो जॉकी बोलता है तो उस शब्द का नाम कहा जाता है लिंक। तो जो एक ऐसा लगता है ना, अगर मैं बोलूं बहुत ही बाअदब बोलूं, थोड़ा गैप महसूस करता हूं, और जब मैं आपके साथ बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से घरेलू बात करता हूं तो मैं कनेक्ट करता हूं। तो वो एक अंदाज बदले, मैं डिग्निटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो ना बदले, थोड़ी सी औपचारिकता कम हो जाए, तहजीब कम ना हो, औपचारिकता कम हो जाए, मेरा मानना है।
1: चलिए, तो आज की परिचर्चा का मूल अगर हम देखें तो ये है कि लोक प्रसारण केवल समाचारों का माध्यम भर नहीं है, बल्कि जो सामाजिक चेतना है, संस्कृति है, संस्कृति की अभिव्यक्ति है, या लोकतांत्रिक जो हमारे मूल्य हैं और सबसे ऊपर जनविश्वास, ये सब आधार हैं उसके। तकनीकें बदलती रहती हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन जो विश्वसनीयता है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व तो है, सांस्कृतिक जो संवेदनशीलता है, ये जो मूल्य हैं, ये लोक प्रसारण की पहचान हैं और आगे भी बने रहेंगे। श्रीमान अरुण डंग साहब, दिलीप रघुवंशी साहब, डॉक्टर राजबहादुर राज साहब, डॉक्टर महेश जी और अखलाक हुसैन साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ स्टूडियो आकर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, प्रसारण के बदलते आयाम। प्रतिभागी थे डॉक्टर राज बहादुर राज, अरुण डंग, दिलीप रघुवंशी, अखलाक हुसैन, डॉक्टर महेश ठाकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अनेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन के 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है।

0: है क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम है। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोड़ावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोड़ावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोड़ावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोड़ावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोद उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोद उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
3: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर।
4: हाँ,
3: और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम

0: मौसम के फूल देखे?
1: वाह,
0: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर है। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
2: हाँ ये तो है।
3: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
0: मित्र कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
2: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
0: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
2: हैं? वो कैसे?
0: अरे भाई मैं समझाता, आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
2: हाँ कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
0: वो कैसे?
2: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
0: भाई वाह।
3: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
2: ये तो है। चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
4: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी।
2: हाँ
4: चलो पहुंचे तो सही।
2: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: हैं?
2: हाँ क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
4: मैं क्योटो देखूंगा।
2: और मैं ओसाका।
4: क्यों नहीं, चलो
2: चलो।
3: तो साथियों हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
0: अरे अरे अरे अरे ध्यान से।
2: चलो
0: संभल कर।
2: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
4: बचे।
3: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
0: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
2: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
4: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
2: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ चलो।
3: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आप

0: आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
1: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: खुशियाँ अपनाएं खुशियाँ, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
1: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगी?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ, क्यों भाई नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया।

0: आया है।
1: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और कौन सी माँ है जो हमारी हैं?
0: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
1: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
0: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओ बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें, हाँ ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए जनाब, आप आइए। जनाब आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ ठीक है,
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है

0: के कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: अभी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पिएंगे क्या आप?
0: नहीं,
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
3: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रही थी प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम सुनाते हैं और आप सुनते हैं नई तराने।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का तराना अभी आपने सुना के स्वर में, संगीत प्रीतम का दिया हुआ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना, सुखविंदर सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में, शब्द अशना महबूब की, संगीत सना का दिया हुआ, और फिल्म का नाम है कॉन्ट्रैक्ट।

और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना के स्वर में, शब्दशना सईद कादरी की संगीत प्रीतम का दिया हुआ, और फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: फिल्मी तरानों का सिलसिला श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

समीर का लिखा हुआ तराना अभी आपने सुना अलका याग्निक के स्वर में। इस तराने को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम दिल का रिश्ता। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना सुनिधि चौहान और ऋतु पाठक की आवाजों में। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम और फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले।

और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम तराना सुजैन के सुर में। फिल्म का नाम है आवारापन, शब्द रचना सईद कादरी, आसिफ अली बेग की, संगीत प्रीतम का।

आवारापन इस फिल्म की तराने के साथ ही नए तरानों का सिलसिला यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का, इंतजार कुछ पलों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
1: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
3: I know that पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि

0: ऐसा नहीं है और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: इससे कबल वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने पेपरली के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को कौम के फैसला को नावाज करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान में नौजवानों के मफादात सबसे अहम हैं और कानून उनके मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ करने वालों को तेजी से और सख्त सजा देगा। दरी असना मरकजी हुकूमत ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि मजाकरात के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक अपने रोजमर्रा के मामूलात पर अमल करें और जल्द अज जल्द अपना मामूल का वजन बहाल करें। एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आज़म ने सोनम वांगचुक की मुसलसल अच्छी सेहत के लिए खुदा से दुआ की। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वुजरा जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना 22 रोजा अनशन खत्म किया। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए रियासत के कई अजला में तैयारियां तेजी से मुकम्मल की जा रही। हापुड़ में यात्रा के बाहिफाजत तकमील को यकीनी बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिस एहलकार एक्टिव रहेंगे और कांवड़ के रास्ते, बड़े चौराहों और भीड़ वाले हसास मकाम पर मुसलसल गश्त करते रहेंगे। वाराणसी में शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों को मुतवक्के भीड़ के पेश नजर कैंट रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी, सफाई, मुसाफिर की सहूलियात और भीड़ के इंतजाम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। भदोही के जिला मजिस्ट्रेट कुमार ने बताया कि इंतजामिया ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली कावड़ यात्रा के महफूज तकमील को यकीन बनाने के लिए ड्यूटी लगा दी है। कांवड़ रूट लालगंज नगर टोल प्लाजा पर वाकई ढाबों, रेस्टोरेंट, रिफ्रेशमेंट शॉप्स पर खाने पीने की अशिया के मियार हिफ्जानियत का मुआयना करते हुए खाना और मशरूबात सिर्फ मुकर्रर कीमत पर फरोख्त करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुनक़िदा जनता दर्शन के दौरान तकरीबन 150 लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन को उनके मसाइल पर मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत और मसाइल को फौरी हल करें। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुनसिफाना और बरवक्त होना चाहिए। वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान को जराइम और जमीनों पर कब्जे से मुतालिक शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। जिला इंचार्ज उत्तर प्रदेश के वजीर ज़रात सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या जिला अस्पताल और श्री राम अस्पताल का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने सफाई, इलाज, मुआवजे के इंतजाम और मरीजों से बातचीत करते हुए सेहत की खिदमात का जायजा लिया। मुआयने के बाद वजीर ने योगी हुकूमत की सेहत खिदमात की तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत रियासत में बुजुर्गों और बीमारों के बेहतर और मुफ्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई हसासियत के साथ काम कर रही है। बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों की सतह आब बढ़ रही है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और बदायूं में गंगा भी खतरे के निशान पर पहुंच गई। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी और मशरकी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1:16 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं, स्नेह दिल अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं शिवांगी दुबे और आप सुन रहे हैं हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार। आइए श्रोता बहनों, अब बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। समय के साथ ना हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है बहनों। पहले जब बैंक का कोई भी काम करने के लिए हम लंबी कतारों में खड़े होते थे, आजकल वो सारे काम झटपट हो जाते हैं। पैसे जमा करने हों, निकालने हों या किसी अपने तक भेजने हों, हर काम में समय और मेहनत दोनों लगती थी। लेकिन आज तकनीक ने ये सब हमारी उंगलियों तक पहुंचा दिया है। वो मोबाइल फोन के एक स्पर्श से बैंकिंग के अधिकांश काम कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई सुविधाओं के साथ डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी साथ आए हैं। तो आइए आज करते हैं चर्चा डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा पर। बहनों, मोबाइल फोन केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि हमारी जेब में रखा एक छोटा सा बैंक बन चुका है। पैसे भेजने हो, बिजली का बिल जमा करना हो, ऑनलाइन खरीदारी करनी हो या बच्चों की फीस भरनी हो, लगभग हर काम अब कुछ ही मिनटों में हो जाता है। डिजिटल बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान और तेज बनाया है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुविधा के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। जिस तरह हम अपने घर के दरवाजे को ताला लगाकर सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह डिजिटल दुनिया में भी अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना उतना ही आवश्यक है। आजकल साइबर अपराधी नई नई तरकीबों से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी कोई CBI ऑफिसर बनकर, कभी KYC अपडेट कराने का बहाना बनाते हैं, तो कभी किसी आकर्षक ऑफर का लालच देकर लिंक भेजते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक करता है या अपनी गोपनीय जानकारी साझा करता है, उसकी मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में ठगों के हाथ लग जाती है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता और सतर्कता। बहनों, इसलिए हमेशा याद रखें, बैंक कभी भी फोन या संदेश के माध्यम से आपका OTP, ATM पिन, CVV या पासवर्ड नहीं मांगते। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, केवल विश्वसनीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलें और बैंक से जुड़े संदेशों पर सतर्क निगाह रखें। यदि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी का संदेह हो तो बिना देर किए बैंक और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। और याद रहे बहनों, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए तो घबराने के बजाय तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साथ ही ऑनलाइन शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती है। याद रखिए, साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और समय रहते शिकायत दर्ज कराएं। आपकी तत्परता, आपकी सतर्कता आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकती है। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपकी बड़ी पूंजी की सुरक्षा कर सकती है। तो ये तो थी आज की चर्चा डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा पर। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।

0: बहनों, अब समय हो चला है साहित्य की मधुर दुनिया में प्रवेश करने का। बहनों, शब्द जब भावनाओं का स्पर्श पाते हैं तो कविता बन जाते हैं, और जब वही कविता किसी संवेदनशील स्वर में सुनाई जाए तो मन को गहराई तक छू जाती है। तो आइए सुनते हैं आभा मेहरा के स्वर में प्रस्तुत यह सुंदर काव्य पाठ।
1: आशा में ही जीवन की गति निहित है। जीवन की हर शय में उत्पत्ति है, सृजन है, विकास है। यदि उन्नति अपने चरम बिंदु पर आरूढ़ है तो सिर्फ और सिर्फ दो अक्षर के छोटे से शब्द आशा से। प्रस्तुत है आशा पर कविता सृजन का छोटा सा प्रयास। मेरी कविता का शीर्षक है आशा।

के सोपान प्रस्तुत है आशा भरी प्रकृति पर कुछ पंक्तियां। प्रतिकूल दशा से जीवन रक्षा हेतु पंछी हजारों मील हैं उड़ते, साइबेरिया से उड़ भारत वे आते, पल भर को नहीं दम है भरते। कछुए अपनी प्रजाति की निरंतरता हेतु सोच नन्हे जीवन को निरखें, सोच नन्हे जीवन को निरखें। चल ऑस्ट्रेलिया से अंडमान पहुंचते, उनके नहीं कदम हैं थकते। धरा को हरा भरा रंगीन बनाने को, प्रकृति से प्राप्त वरदान को पूरा कर पाऊं। नन्हा बीज सो जाता गहराई में, सोच नए वृक्षों और पुष्पों को जन्म दे पाऊं। नन्हा बीज सो जाता गहराई में, सोच नए वृक्षों और पुष्पों को जन्म दे पाऊं। नव सृजन की आस में देख मेघ घनघोर, पंख फैला नृत्य करके मोरनी को रिझाता मोर। नव सृजन की आस में मोरनी को रिझाता मोर। धरती अंबर से मिलने को मेघों की पाती लिखती है, हरश हरश और बरस बरस धरा पर अंबर प्रेम लुटाता है। हरश हरश और बरस बरस धरा पर अंबर प्रेम लुटाता है। शीतलता की चाह लिए, चंदा से मिलन की आस लिए, अनवरत सूर्य देव के घोड़े दौड़े, युगों युगों से मिलन की आस लिए। अनवरत सूर्य देव के घोड़े दौड़े, युगों युगों से मिलन की आस लिए। धरा बनी जग जीव बने, आशा का संचार हुआ, तपती धरती जलती धरती जलाना उसको पाई थी। बदली ऋतुएं बदले मौसम पर आस सदा मुस्काई थी। धरा बनी जग जीव बने, आशा का संचार हुआ, तपती धरती जलती धरती जलाना उसको पाई थी। बदली ऋतुएं बदले मौसम पर आस सदा मुस्काई थी। प्रस्तुत है मानव जीवन में आशा की संभावनाएं। स्वप्न सजा राहगीर चलता, थकन बिना निरंतर, मंजिल उसे बुलाए उसे लुभाए, आ मेरे चुंबन से हो आह्लादित। मंजिल उसे बुलाए उसे लुभाए, आ मेरे चुंबन से हो आह्लादित। सौ सौ सपने संजो, सुकुमारी ससुराल की देहरी चढ़ती है, प्यार समर्पण सृजन के दीप जलाए नैनों में चलती है। कामना लिए हृदय में सुनू नन्हे कदमों की रुंझुन पदचाप, नौ महीने तक कष्ट सहती बिना शिकायत माँ चुपचाप। कामना लिए हृदय में सुनू नन्हे कदमों की रुंझुन पदचाप, नौ महीने तक कष्ट सहती बिना शिकायत माँ चुपचाप। किसान की आंखों में आशा हरी फसल सी पलती है, किसान की आंखों में आशा हरी फसल सी लहलाती है। सतत लगन कठोर परिश्रम उस काया को मले पवन सा सहलाती है। सतत लगन कठोर परिश्रम उस काया को मले पवन सा सहलाती है। संकल्प लिए हृदय में न किसी को मरना और कष्ट सहना होगा। संकल्प लिए हृदय में न किसी को मरना और कष्ट सहना होगा। माझी ने जीवन अर्पण कर शिला का सीना चीरा होगा। माझी ने जीवन अर्पण कर शिला का सीना चीरा होगा। चुनौती को गले लगा इसरो ने कदम बढ़ाए चांद और मंगल तक। साइकिल से शुरू कर सफर अपना ना रुका मंगल यान तक। साइकिल से शुरू कर सफर अपना ना रुका मंगल यान तक। जब अपूर्ण शरीर पा नियति से हार न माने दिव्यांग युवा, पैरा ओलंपिक में इतिहास रचा चुनौतियों को बताई धता। पैरा ओलंपिक में इतिहास रचा चुनौतियों को बताई धता। धन लिप्सा में जकड़ मन को तन को कारागार बनाया, धन लिप्सा में जकड़ मन को तन को कारागार बनाया। मानवता को भूल मानव ने प्रपंच को हथियार बनाया। फकीरी की आशा ने
निर्बंध मान

मानव को फकीर बनाया, फकीरी की आशा ने निर्बंध मानव को फकीर बनाया। युद्धग्रस्त देशों में इस उम्मीद में होता होगा रोज सवेरा, दूर क्षितिज पर लहराएगा शांति ध्वज मेरा। मिसाइल ड्रोन मुक्त हो, आकाश जीवन पटरी पर आए। मिसाइल ड्रोन मुक्त हो, आकाश जीवन पटरी पर आए। मुरझाए चेहरे जीवंत हो उठें और अधर मुस्काएं। मुरझाए चेहरे जीवंत हो उठें और अधर मुस्काएं। इन देशों में जो बालक है मात पिता से बिछड़े, खाली थाली ले हाथ में, कहीं

0: खाली थाली ले हाथ में, कहीं खेमों में करते होंगे उस भोजन की आस, जिस भोजन में माँ के प्रेम का रहता था एहसास। संस्कारों और अनुशासन में बंध सबल आशा पलती है, संघर्षों के पार सफलता के सोपान कदम दर कदम चढ़ती है। जब जब प्राकृतिक आपदाएं घेरे जीवन को जाती हैं, उठते सौ सौ हाथ ले विश्वास, भर आशा मन में है जीने का अधिकार सभी को, मानव से मानव का प्रेम ही स्वर्ग बनाए धरा को। भर आशा मन में है जीने का अधिकार सभी को, मानव से मानव का प्रेम ही स्वर्ग बनाए धरा को। आशा की अनगिनत रश्मियाँ धरा का ताना बाना बुनती हैं, आशा की अनगिनत रश्मियाँ धरा का ताना बाना बुनती हैं, ले रोशनी का उजास हर जीवन रोशन करती हैं, देती है विश्वास सदा ही। ये प्रलय आती और जाती है, परंतु सृजन को रोक कभी नहीं पाती है। आशा की अनगिनत रश्मियाँ धरा का ताना बाना बुनती हैं, ले रोशनी का उजास हर जीवन रोशन करती हैं, देती है विश्वास सदा ही। ये प्रलय आती और जाती है, परंतु सृजन को कभी रोक नहीं पाती है।
1: बहनों, प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि आशा, ऊर्जा और नवजीवन का सबसे सुंदर संदेश भी है। तो अभी आपने सुना आशा के सोपान आशा मेहरा की स्वर में। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद

0: ते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरिता जी, जो कि एक गृहिणी होने के साथ साथ अपना छोटा सा व्यवसाय भी अपने घर से चला रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि एक आम भारतीय महिला के लिए आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद शिवांगी।
0: मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए बस यही है कि आपके लिए आत्मनिर्भरता का सबसे सरल और सच्चे मायने क्या है?
1: देखिए, मेरे लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसे कमाना नहीं
0: जी,
1: बल्कि अपने फैसले खुद लेने की आजादी है, खुद पर भरोसा रखना है
0: जी।
1: जब एक महिला अपने छोटे छोटे काम भी आत्मविश्वास से करने लगती है
0: जी,
1: जैसे घर का मैनेजमेंट, बच्चों की पढ़ाई या अपने लिए समय निकालना, तो वहीं से आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो जाती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: पैसे कमाना उसका एक हिस्सा है
0: जी,
1: पर असली बात है अपनी पहचान का एहसास।
0: बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं पैसे कमाना तो बहुत जरूरी है ही, पर अपनी असली पहचान होना भी बहुत जरूरी है। आपने अपनी आत्मनिर्भरता की शुरुआत कैसे की? कोई छोटा सा अगर आपका कोई अनुभव हो जो दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर सके तो वो भी साझा करें।
1: बिल्कुल, मेरे पास बड़ा सेटअप नहीं था
0: जी,
1: बस घर पर बैठे बैठे मैंने पापड़ और अचार बनाना शुरू किया
0: जी।
1: शुरुआत में तो केवल पड़ोस की महिलाएं लेती थी, पर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। सबसे खास बात यह थी कि जब पहली बार मैंने अपने पैसों से अपने बेटे के लिए कुछ खरीदा
0: जी,
1: उसे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ा सोचने से पहले अपने छोटे सपनों को जगह दीजिए, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं।
0: वाह, क्या खूब बात कही आपने कि बड़ा सोचने से पहले अपने छोटे छोटे सपनों को जगह दीजिए, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। अच्छा, उन महिलाओं के लिए आपका संदेश क्या होगा जो काम शुरू करना चाहती हैं पर कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रही?
1: मैं यही कहना चाहूंगी
0: जी,
1: अपने आप को कम मत आंकिए। हमें घर की हर छोटी बड़ी चीज चलाने का इतना अनुभव होता है
0: जी,
1: कि चाहे खाना बनाना हो, सिलाई हो, बच्चों की देखभाल हो या सोशल मीडिया चलाना, हर चीज में हमारे पास स्किल है, बस पहला कदम बढ़ाइए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो देखा बहनों कि सरिता जी ने एक छोटा कदम बढ़ाया और आज वो आत्मनिर्भर महिला है और ना जाने कितनी ही महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी। तो बस आप भी एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए।

तो श्रोता बहनों, अब समय है हमारे कार्यक्रम के उस विशेष सेगमेंट का जो हमें अपने भीतर झांकने और अपनी असली ताकत को पहचानने का अवसर देता है, और ये है मेरी पहचान, जहां बात होगी सकारात्मक सोच की शक्ति की। बहनों, जीवन में हम सभी कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि जब लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, छोटी सी असफलता भी बड़ी लगने लगती है और मन में निराशा घर करने लगती है। लेकिन सच तो ये है कि परिस्थितियां हमें नहीं हराती, बल्कि उन्हें देखने का हमारा नज़रिया हमें कमज़ोर या मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जो हमें हर मुश्किल में उम्मीद की किरण दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि अगर आज कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वैसा ही होगा। हर नया दिन एक नया अवसर लेके आता है। घर की जिम्मेदारियां निभाने वाली महिलाओं से लेकर अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे युवाओं तक, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी काम का दबाव, कभी परिवार की चिंता, तो कभी अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद। ऐसे समय में यदि मन में विश्वास बना रहे बहनों कि मैं कोशिश करूंगी, मैं सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी, तो आधी लड़ाई हम वहीं जीत लेते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं से आंखें मूंद लेना नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजने का साहस रखना है। ये हमें शिकायत करने के बजाय प्रयास करना सिखाती है, हार मानने के बजाय फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है, और हर अनुभव से कुछ नया सीखने का संदेश भी देती है। याद रखें, हमारी पहचान केवल हमारे नाम, काम या उपलब्धियों से नहीं बनती, बल्कि हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण से बनती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखता है, वही दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का प्रकाश फैलाता है। तो आइए आज स्वयं से एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करेंगे, अपनी कमियों की बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देंगे, और हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे। तो ये तो थी आज मेरी पहचान में बात सकारात्मक सोच की शक्ति की। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अब समय है बहनों महिलाओं के पसंदीदा सेगमेंट फैशन ब्यूटी का, जहां अब हम बात करने जा रहे हैं हेयर ऑयलिंग से बालों की देखभाल की। बहनों, घने लंबे और चमकदार बाल हर किसी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता प्रदूषण, तनाव और असंतुलित खान पान के कारण बालों का झड़ना, रूखापन और बेजान होना एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में सिर्फ महंगे शैम्पू या हेयर सीरम ही नहीं, बल्कि सही तरीके से की गई हेयर ऑयलिंग भी बालों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सवाल ये है कि बालों के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? यदि आपके बाल रूखे और बेजान है बहनों, तो नारियल का तेल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये बालों को गहराई से पोषण देता है और रूखापन कम करता है और उन्हें मुलायम बनाए रखता है। अगर आपके बाल झड़ गए हैं या उनकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, तो बादाम का तेल या भृंगराज का तेल लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इनमें मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूती देने में मदद करते हैं। जिन लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, उनके लिए आंवले का तेल उपयोगी हो सकता है। वहीं अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल बालों को घना दिखाने, घना बनाने और नए बालों की वृद्धि में सहायक माना जाता है। हालांकि ये बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए इसे नारियल या बादाम के तेल में मिलाकर लगाना बेहतर होता है। यदि सिर की त्वचा में रूसी या खुजली की समस्या रहती है, तो नीम का तेल या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें भी किसी सामान्य हेयर ऑयल में मिलाकर लगाई जा सकती हैं। अब अगर हेयर ऑयलिंग करते समय तेल को हल्का गुनगुना कर लें और उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे पूरे सिर की 5 से 10 मिनट तक मालिश करें, तो इससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है। तेल लगाने से 2 से 3 घंटे बाद रात भर लगाकर अगली सुबह किसी हल्के शैम्पू से बाल धो लेना बस इतना ही पर्याप्त होता है। पर हाँ बहनों, साथ ही याद रखें कि केवल तेल लगाने से ही बाल स्वस्थ नहीं बनते। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद भी बालों की सेहत के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हेयर ऑयलिंग। तो अपने बालों की जरूरत को समझिए, सही तेल चुनिए और नियमित देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये स्वस्थ बाल आपकी सुंदरता ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। तो ये तो थी बात आज फैशन ब्यूटी में हेयर ऑयलिंग से बालों की देखभाल की। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बहनों, अब बारी है रेसिपी टाइम की और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक हेल्दी स्मूदी की रेसिपी। और इस स्मूदी को अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए जो जो आपको चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और यकीन माने, ये बहुत ही टेस्टी और गर्मियों में राहत देने वाली ठंडी ठंडी ओट्स बनाना ओट्स स्मूदी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको

चाहिए 40 ग्राम ओट्स, 250 मिलीलीटर दूध, एक केला, दो नग खजूर, 10 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, और वो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी। अब स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में ओट्स, खजूर और ड्राई फ्रूट्स डालें। अब इसमें दूध मिलाकर 2 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। जब वो अच्छे से भीग जाए तब हम उसे मिक्सर जार में डालेंगे, उसमें फिर केला डालेंगे और ऊपर से ओट्स दूध का मिश्रण डालेंगे। फिर सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक कि ये स्मूद ना हो जाए, और बस तैयार है झटपट बनने वाली बनाना ओट्स स्मूदी। बस ग्लास में थोड़ी सी बर्फ डालकर इसे तुरंत परोसें और इंजॉय करें। तो बहनों, ये तो थी आज की रेसिपी, और उम्मीद करती हूँ कि इस गर्मियों में आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगी और ये आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। भाई मैंने तो इसे ट्राई किया है और मेरी तो ये फेवरेट बन चुकी है, और मैं आशा करती हूँ कि जब आप इसे बनाएंगी तो ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो श्रोता बहनों, आज के घर संसार में हमने डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। मेरी पहचान में हमने सकारात्मक सोच की शक्ति को समझा। फैशन ब्यूटी में हमने बालों की सही देखभाल और उपयुक्त हेयर ऑयल के बारे में जाना। आशा के सोपान में आशा मेहरा के स्वर में भावपूर्ण कविता का आनंद लिया। रेसिपी टाइम में हमने नए स्वाद को चखा और कुछ सीखा। और कुछ तुम कहो कुछ हम में हमने आत्मनिर्भर महिला के आत्मविश्वास, साहस और स्वाभिमान की प्रेरक बातों को साझा किया। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा होगा, आनंदमयी रहा होगा और उपयोगी रहा होगा। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं हूँ आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे, आपको करती हूँ नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद गजलें। गायक कलाकार हैं अंजलि नारायण।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें, का कलाकार थी अंजलि नारायण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2 बजने को है हमारा अगला अन्न प्रसारण, दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का, इंतजार कुछ पलों का।

0: milestone in India's evolving taxation system. The occasion commemorates the establishment and growth of the Income Tax Department while highlighting the country's journey towards a transparent, technology-driven and taxpayer-friendly tax administration. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra for the day. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. Similar weather conditions will continue over northeast India during the next 2 days. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, West Bengal, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahi and Telangana till tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of very light rain accompanied by strong surface winds for the day. Prime Minister Narendra Modi today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी।

0: कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरह समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा विपक्ष नीट

0: परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी मां मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership with a

0: combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

0: राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज़्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी FM गुरु

आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं पंडित CR व्यास का काया राग मिश्र कौशिया में ठुमरी गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का गाया राग मिश्र कौशिया में ठुमरी गायन। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफान खान का राग तिलक कामूत में ठुमरी गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफान खान से राग मिश्र तिलक कामुत में ठुमरी गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में इस गीत को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने और फिल्म का नाम था 12 o'clock। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद और फिल्म का नाम है संघर्ष।

संघर्ष फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द जितना थी शकील बदायूं की धुन बनाई थी नौशाद ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहम्मद रफी और सुरैया की आवाजों में, बोल कमर जलालाबादी के। संगीत हुसैन लाल भगतराम का और फिल्म का नाम है सनम।

सनम फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुरैया की आवाज़ों में। इस गीत के बोल लिखे थे कमर जलालाबादी ने, धुन बनाई थी हुसन लाल भगत राम ने और इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। अंजुमन के आरंभ में आइए सुनते हैं मकाला। उर्दू अदब में बढ़ता तंजो मजाज। मकाला निगार हैं अब्दुल बसर।
1: जब से दुनिया कायम हुई है, परेशानियों से छुटकारा कोई नहीं पा सका, ख्वाह वो बादशाह हो या फकीर, गरीब हो या अमीर। कोई सल्तनत के इश्क में रोता रहा तो कोई दाल रोटी के गम में। ये सब कुछ अजल से चला आ रहा है और अब तक चलता रहेगा। ऐसे में इंसान अगर अपने लिए हंसी और खुशी के चंद लम्हे भी ना निकाल सके तो क्या। उर्दू अदब में तंज व मजाह को अलग अलग वाजे किया है। तंज एक तरह की तनकीद है, एक किस्म का अमल जर्राही है। तंज फर्द व समाज की ना हमवारियों, खामियों, कमियों और लाकानूनियत पर हमला आवर होता है। वो अपने और पराये को खातिर में नहीं लाता। तंज एक्सरे मशीन की तरह काम करता है। वो अंदरून में छुपी बीमारियों को आया करता है। वो मखसूस जख्म ही नहीं लगाता बल्कि उसके इलाज का भी बंदोबस्त करता है। वो मीज़ान हयात का काम अंजाम देता है और तथहीर के फरीजे तक रिसाई हासिल करता है। बात बात में इलाज गम दिल का मौजिब होता है। वो तामीरी मकसद लिए होता है मगर इसकी इब्तिदा तकरीब से होती है। इसकी नज़र आलमगीर होती है। सारे जहां का दर्द इसमें समाया हुआ होता है। इस तरह वो यूनिवर्सल सटायर की हैसियत इख्तियार कर लेता है। उर्दू अदब में तंज व मिजाह का रवाज फारसी के ज़ेर असर हुआ। उर्दू शायरी में वाज, मुहतसिब और जाहिद के मामलात का तस्करा, महबूब के जोर व जफा और जुल्म व सितम के सिलसिले में शोरा की मोशगाफियां, कसायद में जाती हालात के बयानात, हुजूयात और शहर आशोबों में माशरे व उनके अहद के हालात की खराबियों, ना हमवारियों के इजहार और शोरा के दरमियान में मासराना चश्मकों में एक दूसरे की कमजोरियों को निशाना बनाने के सिलसिले में तंजुमिजा के नमूने नजर आते हैं। इनके अलावा दास्तानों और मसनवियात में भी ऐसे जज्व मिलते हैं जिन्हें उर्दू तंजुमिजा के इब्तदाई नकूश करार दिया जा सकता है। उर्दू अदब में तंजुमिजा की तारीख व तरतीब हमारी समाजी और सियासी जिंदगी के अक्कास है। हमारे मिजा निगारों के लिए लब व लहजा और फन में इन हालात की पूरी अक्कासी होती है। मसलन उर्दू के अव्वलीन मिजा निगारों के सफ में सौदा, मसहफी, इंशा, रंगीन, चिरकीन, जाफर जटली वगैरह का शुमार है। इन सब के तंजुमिजा में इब्तिजाल, फौश निगारी, तंग नजरी, मसखरापन, फकड़पन, इस्तेहजा, निजामत और इंतहाई रकाकत पाई जाती है। सौदा उर्दू अदब में तंजुमिजाह के इमाम माने जाते हैं। इनकी हुजूमियाँ बेहतरीन तंज की बुनियाद पर पूरी नहीं उतरती, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी ने बेहतरीन तंज की तशरीह कुछ यूं की है। वो जाती इनाद व तासुब से पाक और जहन व फिक्र के बेलौस, ब्राहिमी या शगुफ्तगी का नतीजा हो। सौदा का शहर आशोब इनकी बेपनाह सलाहियतों का आयना है। गालिब ने तंज़ो मज़ा को फ़रोग नज़्म नसर दोनों सिंफ में दिया। गालिब के मिजाह फ़लसफियाना था। तफक्कुर व ताक्कुल इनकी फितरी सलाहियतें थीं, मगर इनकी शख्सियत का एक ख़ास अंसर शोखी व ज़राफ़त है। गालिब

कि यही शोखी इनके कलाम का हिस्सा भी बनी है। इन्होंने आम डगर से हटकर चलने नए पैराए इजहार की तलाश में इनके मजामीन व मौजूआत जो संजीदा पैराए में बयान हो सकते थे जरीफाना टच देकर अपनी जिद्दत का सबूत दिया। गालिब अपने जरीफाना अशार में भी जिंदगी के तमाम पहलुओं और गोशों को नजरअंदाज नहीं करते, जैसे क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबां है। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने जरा पैर मेरे दाब तो दे। गालिब के अशार में पहली बार जदीद तंज मिजाह के नकूश उभर कर सामने आते हैं। गालिब के फौरन बाद उर्दू अदब में तंज मिजाह का एक अहम बाब शुरू होता है, वो अवध पंच का दौर है जो कि 1870 ईस्वी में शुरू हुआ। इसने तंज मिजाह को उर्दू अदब में एक अहम मुकाम व मरतबा अता किया और आलमी अदब के बारे में मकाम तक पहुँचा दिया। अवध पंच के अदीबों के यहाँ जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबसरा मिलता है। इनके लब व लहजे में तलखी, जहरनाकी और तंज के नश्तर मिलते हैं। कुछ खुशगवार शोखियाँ, उचटती हुई जरबें, हरीफाना चश्मक और खासा सियासी शऊर मिलता है। बाकायदा तौर पर उर्दू अदब में तंज मिजाह का आगाज अवध पंच के इजरा से होता है। उर्दू अदब की तारीख का सरसरी तौर पर जायजा लेने से ये पता चलता है कि अवध पंच से पहले का तंजिया व मजाहिया अदब फारसी से मुतासिर था, बल्कि कुछ चीजें तो फारसी की हू बहू नकल थी, लेकिन अवध पंच ने पुरानी रविश से हटकर नई रविश की दाग बैल डाली और पहली बार उर्दू अदब को मगरबी तंज मिजाह का शऊर बख्शा। इसने तंज मिजाह के नए नए हरबे और नई नई सिफत दरियाफ्त करके दाखिले नज्म नसर किए और तंज मिजाह अदब में वसत पैदा की। उर्दू नसर में तंज मिजाह का जो खला था उसको पुर किया और आज नसर में तंज मिजाह की जो फरावानी नजर आती है वो अवध पंच का ही तुफैल है। अवध पंच के तंज मजाह निगारों में चंद नाम ऐसे भी हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे। एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन, रतननाथ सरसार, पंडित त्रिभुवन नाथ हिज्र, मिर्जा मच्छू बेग सितम जरीफ, नवाब सैयद मोहम्मद आजाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्क, अहमद अली शौक और अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी के नाम खसूसियत से काबिले जिक्र हैं। रतननाथ सरसार कुदरती एक मुसव्विर का कलम, शायर का दिमाग, अदीब का मुशाहिदा, हसास दिल और लाओबाली तबीयत लेकर आए थे। तंज मिजाह इनके नस नस में रचा बसा था। वो अपने अहद के जराफत के बेहतरीन नुमाइंदा थे। उन्होंने नवाबीन लखनऊ और उसकी सोसाइटी की तस्वीरें अपने कलम से तंज मजाहिया अंदाज में हूबहू खींचकर अदब में बुलंद मर्तबा हासिल कर लिया था। पंडित रतननाथ सरसार के हम असरों में अगर कोई शख्स उनका हम पाया है तो वो बिलाशुबा एडिटर अवध पंच खुद मुंशी सज्जाद हुसैन है। वो फितरतन बेबाक थे। सज्जाद हुसैन का शुमार सफ अव्वल के तंज मजाह निगारों में होता है। इनका जितना भी अदबी सरमाया है वो सब नसर का है। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने सियासी मसाइल को तंज मजाह का मौजू बनाया और बहुत हद तक कामयाब भी रहे। इन तमाम उदबा के अलावा भी बहुत से अदीबों ने नज्म नसर में तंज मजाह का अंदाज इख्तियार किया, लेकिन इन तमाम अदीबों में तंज मजाह में सबसे ज्यादा नुमाया मुकाम अकबर इलाहाबादी को हासिल है। उनकी शायरी की इब्तिदा संजीदा कलाम से होती है, लेकिन अवध पंच से वाबस्ता हो जाने के बाद ही अकबर ने अपनी शायरी का चोला बदल डाला और तंज मजाह का लिबास पहनकर इस्लाह कौम का बेड़ा उठा लिया। यूं तो अकबर ने सियासी, समाजी, मुल्की, मजहबी, गद्र शख्सी जिंदगी के हर पहलू और हर गोशे को हदफ तंज मजाह बनाया, लेकिन इनके तंज मजाह का असल निशाना मगरबियत है। अकबर मशरिक के दिलदादा थे और मगरब से सख्त नफरत और बेजार थे। अकबर अगर तंज के बादशाह हैं तो मजा के शहंशाह भी। इनके ये अशार मुलाहिज़ा फरमाएं, मगरबी जोक भी है, वजा की पाबंदी भी, ऊंट पर बैठकर थिएटर को चले हैं हजरत, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अकबर इलाहाबादी के तदब्बों में अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में तंज मजा का पहलू इख्तियार किया और कामयाब भी रहे। इकबाल का तंज दरअसल इनके फलसफे हयात व खुदी के दरमियान का हायल होने वाली रुकावटों को दूर करने का फरीजा अंजाम देता है। इकबाल का तंज सादा व संजीदा होने के बावजूद बलीग भी है। वो भी सूफी व मुल्ला पर चोट करते हैं तो कभी सामाजिक कमजोरियों, समाज के भोंडे रवैयों और कौमी बेइतदालियों को निशाना तंज बनाते हैं। इकबाल जिंदगी के नशेब व फराज का मुशाहिदा करके कारी के दिल में वो जज्बा बेदार करते हैं जो उसको बुलंद मकाम पर फायज करता है। वो अजमत इंसान के कायल थे, खुदा से शिकवा करते हुए तंज से काम लिया है। इसी कोकब की ताबानी से है तेरा जहां रोशन, जवाले आदम खाकी जिया तेरा है ये।

0: मेरा बागे बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। 1936 ईस्वी में उर्दू अदब की पहली बाजाफ्ता तहरीक तरक्की पसंद तहरीक के नाम से शुरू हुई। इस कलमबरदारों में जोश मलियाबादी अपने लहजे की इनफरादियत, घन गरज और आवाम दोस्ती की बदौलत बहुत जल्द तरक्की पसंद शोरा के सालार ए आजम करार पाए। जोश की वो नज़में जिनका ताल्लुक आज़ादी व इनकलाब से है, तंज के गहरे शऊर की गम्माज है। इन्हीं नज़मों की बदौलत उन्हें शोराए तंज मज़ाह की महफिल में जगह दिलाती है। इन नज़मों में जोश ने अंग्रेजी हुकूमत और इसके जुल्म व सितम पर तंज के नश्तर चलाए हैं। हिंदुस्तानी अवाम जो गुलामी की आदि हो गई थी उनको जगाने की कोशिश की, इन पर भी तंज किए हैं। इनके कुछ अशार देखिए। पैंट में हाथ और मुंह में सिगार, शाने हिलते हुए दमे गुफ्तार, ताके दिल में चिरागे अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, जिस्म हिंदी में जान अंग्रेजी, मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी। तरक्की पसंद तहरीक में जोश के अलावा प्रेमचंद ने अपने नावलों और अफसानों के जरिए अदब को जिंदगी के सांचों में ढाला और एक समाजी तंज मिजाह को उर्दू अदब में पेश किया। इनके बाद नियाज फतेहपुरी, सज्जाद हैदर एलदरम, अली अब्बास हुसैनी अहमियत के हामिल हैं। इनके अलावा अहमद नदीम कासमी, मुमताज मुफ्ती, उपेंद्र नाथ, अश्क कन्हैयालाल कपूर, सादत हसन मंटो, इसमत चुगताई वगैरह वगैरह भी अहमियत के हामिल हैं। इन तमाम हजरात के बाद उर्दू अदब में तंज मिजाह को लाफानी कर देने वाले मुसन्नफीन का दौर आता है, जिसमें पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुल्ला रमूजी, अजीम बेग चुगताई, फरहत उल्ला बेग और शौकत थानवी का नाम उर्दू अदब में अहमियत का हामिल है। इन तमाम हजरात ने तंज मिजाह को बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचाया। इन उदबा ने बहुत सी किताबें तख्लीक की जो उर्दू अदब की गिरा माया सरमाया है और तंज मिजाह के मैदान में अहमियत की हामिल व संग मील की हैसियत रखती है।
1: अभी आप सुन रही थी मकाला उर्दू अदब में बढ़ता तंजो मजाज, मकाला निकार थे अब्दुल बसर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन में आइए अब सुनते हैं कलाम शायर में जनाब बाबर इलियास का कलाम।
2: मतलब पेशी खिदमत है, शोखिये तहरीर का कुछ तो असर होना ही था, शोखिये तहरीर का कुछ तो असर होना ही था, एक दिन रुस्वा तुझे दस्ते हुनर होना ही था, एक दिन रुस्वा तुझे दस्ते हुनर होना ही था, और कर लिया दीवारों दर को हमने खुद ही मुनहदिम, कर लिया

लेकिन सफर दरपेश था, कोई मंजिल भी न थी। लेकिन सफर दरपेश था, यानी इन कदमों को सरफे रह गुजर होना ही था, यानी इन कदमों को सरफे रह गुजर होना ही था। और उस कमा का रुख मेरी जानिब न था, वरना मुझे उस कमा का रुख मेरी जानिब न था, वरना मुझे जंग लड़ने के लिए सीना सिपर होना ही था, जंग लड़ने के लिए सीना सिपर होना ही था। और ये दूसरी गज़ल का मतलब मुलाहज़ा करें कि फजूल शौकते पिंदारे खुद सरी भी न जाए, फजूल शौकते पिंदारे खुद सरी भी न जाए, झुको पर इतना के शाने कदावरी भी न जाए, झुको पर इतना के शाने कदावरी भी न जाए।

हर बार एक भंवर ने कहा, सफीरे आपसे हर बार एक भंवर ने कहा, कहीं तलाशे गुहर में शनावरी भी न जाए, कहीं तलाशे गुहर में शनावरी भी न जाए। और खजान रसीदा शजर की आरजू है अजब,

भी न जाए। और ये गजल का मतला मुलाजा करें कि तुझ पे किस तरह कोई राज़े नेहा खोला जाए, तुझ पे किस तरह

हाँ डोला जाए, रात की रात बसेरा है सहर होने तक, रात की रात बसेरा है सहर होने तक, क्या खबर मस्त मलंगों का कहाँ टोला जाए, क्या खबर मस्त मलंगों का कहाँ टोला जाए। और मुनकशिफ हम भी जरा खुद पे हुआ चाहते हैं,

नहीं, जहर कहाँ घोला जाए, कोई दरिया ही नहीं, जहर कहाँ घोला जाए। शेर और मुराद कर लें कि यहाँ क्या एतबारे जानो दिल है ना, यहाँ क्या एतबारे जानो दिल है ना, ये दुनिया

रुसवाई, अगर अपनों से मिलने में है रुसवाई, तो फिर हमसे न मिल गैरों से मिल है ना। और ये झरना तुंद रफ्तारी से बहता क्यों, ये झरना तुंद रफ्तारी से बहता क्यों, खिरामे नाज से तेरे खजिल है ना। तेरा कूचा ही, ये शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा कर लें, तेरा कूचा ही राहे मग़फ़िरत ठहरा, तेरा कूचा

तबीयत पर ये जबरे मुस्तकिल है ना, तबीयत पर ये जबरे मुस्तकिल है ना। मतला गजल को और हाजिर करता हूं कि चरागे राह गुजर ताबना खोते हुए, चरागे राह गुजर ताबना खोते हुए, वो देख दामने शब चाक चाक होते हुए, वो देख

कीमत नहीं, लेकिन अजब खुश फहम है बिकने को बाजारों में आते हैं, अजब खुश फहम है बिकने को बाजारों में आते हैं, और गुलामी की तेरी आदत तेरी नस्लों में आएगी, गुलामी की तेरी आदत तेरी नस्लों में आएगी, जुखम होते हैं बुनियादों में आसारों में आते हैं, जुखम होते हैं बुनियादों में आसारों में आते हैं, और हुनर है आहिनी जिस्मों के अंदर जख्म बो देना।

0: उतर कर खुद ही जो गारों में आते हैं, बुलंदी से उतर कर खुद ही जो गारों में आते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: कलामी शायर के तहत अभी आप सुन रहे थे जनाब बाबर इलियास का कलाम। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन में आइए अब सुनते हैं अफसाना नेकी का सिला। अफसाना निगार हैं सादिया राशिद।
2: मुमिना ने स्कूल से वापसी पर जब घर में कदम रखा तो सामने सहन में तख्त पर अम्मी जान बैठी नजर आईं, जो और दिनों से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थीं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट खिली हुई थी। मोमिना ने सोचा जरूर कोई खास बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मोमिना सलाम करते हुए अंदर आ गई और बुरके के बटन खोलने लगी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, खुश रहो। अम्मी जान मजीद खुश होकर उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी। क्या बात है, मोमिना ने पूछा। नसीम ने कहलवाया है कि लड़के वाले आ रहे हैं शाम को बाजी को देखने। हाँ, बस अल्लाह करे रिश्ता तय हो जाए, मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद है। अल्लाह बेहतर करे। मोमिना ने अपने दिल में खुशी महसूस की, कितना अच्छा हो जाए कि

जी का रिश्ता कहीं तय हो जाए और वो अपने घर खुश आबाद रहें, तो अम्मी जान को भी कितनी बेफिक्री हो जाए। लेकिन फिर भी हम दोनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी तो बाकी रहेगी, बस अल्लाह ताला ही उन जिम्मेदारियों को पूरा करवाएगा। कोई तैयारी करनी है अम्मी जान? घर को थोड़ा साफ सुथरा करना है और कुछ नाश्ते वगैरह का सामान आ जाएगा, और क्या तैयारी करना है, अम्मी ने कहा और उठकर अंदर चली गई। बाजी किचन में बैठी कुछ काम कर रही थी। कौन आ रहा है बाजी, कौन आ रहा है? मोमिना ने उन्हें छेड़ा तो वो मुस्कुराहट ना छुपा सकी। चल हट यहाँ से, मुझे क्या पता कौन आ रहा है, अल्लाह करे वो बहुत अच्छे से हों, अगर अच्छे हों जब ही ये शादी हो वरना ना हो, मोमिना ने मोहब्बत से कहा। कहती तो ठीक है तू, बाजी के सामने चेहरे पर बड़ा नूर फैला हुआ था। मोमिना सोचने लगी, बाजी ने 8वीं क्लास के बाद से तालीम का सिलसिला खत्म कर दिया था, उन्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यहां तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंची थी। घर के कामकाज में उनका बड़ा दिल लगता था, शक्ल सूरत भी वाजिबी थी, इसलिए अम्मी जान को उनकी बड़ी फिक्र रहती, और अम्मी बल्कि सभी लोग चाहते थे कि उनका रिश्ता जल्द से जल्द तय हो जाए और वो अपने घर की हो जाएं। इसके बरक्स मोमिना के दिल में इल्म हासिल करने की लगन थी। वो ग्रेजुएशन करने के बाद एक स्कूल में मुलाजमत करने लगी थी ताकि घर के खराब हालात को थोड़ा सा संवार सके। उसके वालिद की तनख्वाह नहायत ही कलील थी और 7 बहन भाई और अभी सभी छोटे थे। दोनों बड़े भाई तो अलग ही मिजाज के थे, बस हर वक्त अब्बा जान से झगड़ते, अम्मी से बुरा भला सुनते और सारा दिन आवारा गर्दी करते फिरते थे। मोमिना का दिल चाहता था कि वो अपने सीधे साधे और खामोश तबा अब्बा जान का सहारा बन जाए, उनका हाथ बटाए, और यूं वो मुलाजमत के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई भी कर रही थी। उसने सोच रखा था कि वो बहुत अरसे तक अपनी जात के बारे में कुछ न सोचेगी, बल्कि बाजी की शादी होगी, फिर भाइयों की शादी होगी, फिर छोटी बहन शमसा की शादी करूंगी, फिर कहीं कोई ऐसा सिलसिला हो तो मुनासिब भी है। मगर हुआ यूं कि लड़के वालों ने उसी शाम कह दिया कि हमें तो मोमिना पसंद आई है, अगर आप लोग उसका रिश्ता कर दें तो ईद के चांद में शादी हो जाए। भाई वो तो सुहाना के बाद है, पहले हमें उसकी बड़ी बहन की शादी करनी है, अम्मी जान ने जवाब दिया। अब तो जमाना बहुत बदल गया है, छोटी हो या बड़ी इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो दोनों ही लड़कियों की शादी करनी है, बस आप हाँ कर दें। अभी तो वो पढ़ रही है, देखें। अच्छा मैं अब्बा जान से बात करूंगी, अम्मी ने उन्हें टाला। और ये बात सुनकर मोमिना को उन औरतों पर गुस्सा आ गया। वाह ये भी कोई बात है, मेरे तो इतने लंबे चौड़े प्रोग्राम है, मैं और भला शादी करूं। सुहाना का चेहरा उतर गया, अम्मी जान भी उदास हो गई। अब्बा जान ने हिम्मत बंधाई, कोई बात नहीं तुम उन्हें मना कर देना, ये रिश्ते नाते तो सब तकदीर से होते हैं, नहीं था ये सुहाना के मुकद्दर में, और कहीं तय हो जाएगी बात, फिक्र ना करो। मगर फिक्र तो सभी की जान को लग गई थी, क्योंकि अब बार बार ये होता कि रिश्ते आते और बड़ी बहन के बजाय मझली बहन मोमिना को पसंद कर जाते। ये बात तयशुदा थी कि पहले सुहाना की शादी का नंबर था, भला पहले मोमिना किस तरह ब्याह दी जाती, जबकि मोमिना मुलाजमत के जरिए थोड़ा बहुत सहारा भी दे रही थी और वो खुद शादी के जिक्र से कोसों दूर भागती थी। इस सूरत हाल का जिक्र अम्मी जान ने अपनी 2-4 करीबी सहेलियों और पड़ोसनों से भी किया तो उनमें से कुछ ने मशवरा दिया कि अब जो भी रिश्ता आए तो मोमिना को सामने ना करना बल्कि सुहाना को ही दिखाना। कुछ ने यह भी कहा कि जिसका मुकद्दर खुल रहा है तुम उसी के हाथ पीले कर दो, तुम्हें तो जल्द या देर दोनों ही लड़कियों को रुख्सत करना है। नहीं पहले सुहाना की शादी हो उसके बाद ही मोमिना को रुख्सत करूंगी, और फिर ये कि मोमिना शक्ल सूरत में अच्छी है उसे भला रिश्तों की कोई कमी होगी, अम्मी जान ने फखरिया कहा। मोमिना नाक नक्शे में सुहाना से कहीं बेहतर थी और रंगत भी साफ थी। पड़ोसन खाला हाजरा ने कहा, एक बात कह देती हूँ, बहन रिश्ते भी मुकद्दर से ही आते हैं, उनका भी एक वक्त होता है जब लड़की की उम्र पक्की हो जाती है तो कोई नहीं पूछता, मेरी मानो तो जिसके इतने रिश्ते आ रहे हैं उस पर जुल्म ना करो, किसी अच्छी जगह देख कर बात पक्की कर दो, ऐसा ना हो कमाई और पढ़ाई के चक्कर में उम्र इतनी हो जाए कि बाद में अच्छे रिश्तों के भी तरसो। उनकी बात सुनकर अम्मी जान की पेशानी पर बल पड़ गए। अरे हटो भी, छोटी का कर दूं और बड़ी घर में बैठी रह जाए ये मुझे मंजूर नहीं, बाद में हर कोई कहेगा कि बड़ी बेटी का रिश्ता क्यों ना हुआ, क्या ऐप था जो ये बैठी रह गई, बाद में उसे कोई नहीं पूछेगा, फिर मैं क्या करूंगी, कहां जबरदस्ती धक्का दूंगी उसे। मैंने तो अपने दिल की सच्ची बात कह दी तुमसे, आगे तुम्हारी मर्जी, खाला हाजरा ने कहा। काफी दिन गुजर गए, कहीं से कोई पयाम ना आया। फिर सुना कि अब्बा जान के साथ काम करने वाले मंसूर चाचा ने अपने बेटे के लिए बात की है और वो 2-4 रोज में उनके घर आएंगे। घर में फिर एक बार खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी जान ने पहले ही मोमिना से कह दिया था कि वो अपनी किसी सहेली के घर चली जाए, वो भी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी वजह से बाजी के रिश्ते में रुकावट पैदा हो जाती।

सकती है, इसलिए उसका सामना ना जाना ही बेहतर है। वो सामने ना गई मगर फिर भी उनका वहां रिश्ता तय ना हुआ। घर में एक अजीब सी उदासी छा गई। इन्हीं दिनों अचानक बड़े भाई ने भी किसी लड़की से शादी कर ली और एक दिन दुल्हन को घर ले आए। अम्मी जान का गुस्से से बुरा हाल हो गया। अब्बा जान को भी बहुत नागवार हुआ। इतनी जल्दी थी तुम्हें अपना घर बसाने की, अम्मी जान ने कहा। कुछ दिन तक घर का माहौल बहुत गर्म रहा, लेकिन फिर वक्त के साथ सबने बहू को कबूल कर लिया। सुम्बुला ने भी अपने हुस्न अखलाक से सबके दिलों में जगह बना ली और कुछ दिन बाद बाजी की शादी का मरहला भी तय पा गया। वो भी अपने घर रुखसत हो गई। सबने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी तनख्वाह से घर की हालत काफी सुधर गई थी। इन्हीं बीच उसके कई पयाम आए। अम्मी ने उससे जिक्र किया मगर उसके इनकार पर वो मुतमईन हो गई। महीने की तनख्वाह का काफी हिस्सा वो अम्मी को ही देती थी।

0: हो गईं। महीने की तनख्वाह का काफी हिस्सा वो अम्मी को ही देती थी। उसके बाद भी छोटे भाई बहन की किताब कापियों की जिम्मेदारी, अब्बा जान की दवा वगैरह, और जहां जरूरत पड़ती मोमिना आगे बढ़कर जो कुछ उसके पास होता पेश कर देती। वक्त गुजरता जा रहा था, अब दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी थी और वो लोग अलग घर में रहते थे। इधर अब्बा जान भी रिटायर हो गए थे, घर की सारी ही जिम्मेदारी मोमिना के कंधों पर आ गई थी। छोटी बहन की शादी भी हो गई, अक्सर बाजी और शमसा आती रहती थीं। मोमिना अक्सर शमसा को देखकर सोचती, इसका मुकद्दर कितना अच्छा है, कितने आराम और सुकून से रह रही है, न नौकरी की मुसीबत पाली और न दफ्तरों में उम्र गवाई। उसने घर पर एक नजर डाली, कोने में रखा डबल डोर फ्रिज, कलर टीवी, टेप रिकॉर्डर, सोफे, अलमारियां, सारा घर भरा हुआ था सामान से, सब आबाद था। एक उसका ही दिल बस वीरान रह गया था। अम्मी जान आराम से तख्त पर बैठी पान खा रही थीं। भाई के बच्चे अलीम और कलीम सहन में बैठे खेल रहे थे और वो बिस्तर पलटी सोच रही थी कि ये माहौल किस कदर यकसा है, गैर तब्दील शुदा। इस तरह मेरे लिए क्या सारी जिंदगी यही एक साकित माहौल रहेगा? हकीकत यह है कि अब जिंदगी इस तरह से बेजार हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ। यहाँ कोई नयापन नहीं, तब्दीली आई है तो मेरे वजूद में। क्या बालों में जा बजा बाल सफेद नजर आने लगे हैं, चेहरा भी थका हुआ उदास दिखाई देता है। शगुफ्तगी और ताजगी जैसे गायब हो गई है, या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ?
1: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन में अभी आप सुन रहे थे अफसाना नेकी का सिला। अफसाना निगार थी सादिया राशिद। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। इसके साथ ही हमारी ये दूसरी सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी सांध्यकालीन सभा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के

0: दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का।

अब एक नजर आज की सभा के शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आप सुनेगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें चर्चा रहेगी चरेवेती पर। नई पहल में सुनिएगा समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। वार्ता रहेगी प्रसन्न रहना है संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी। वार्ताकार होंगी मेघा राघव। शाम 6:00 ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। इसमें चर्चा रहेगी बरसात में पशुओं की देखभाल। वार्ता में सुनिएगा बरसात में आवश्यक शस्य क्रियाएं। वार्ताकार होंगे फैज बख्श सैयद। साथ ही आपको सुनवाया जाएगा लोकगीत और आप मंडी भाव और मौसम की जानकारी भी इस कार्यक्रम में ले पाएंगे।

मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा में सुनिएगा बेटियों की बढ़ती भूमिका। कानूनी वार्ता में हम आपको सुनवाएंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। वार्ताकार होंगे विनोद कुमार गोयल। साथी होगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर, आज की पाती सेहत टिप्स और मनोरंजन कराया जाएगा फिल्म संगीत से।

विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेगा भेंट वार्ता, पानी की हर बूंद है कीमती। वार्ताकार होंगे वार्ताकार दिवाकर तिवारी से श्री कृष्ण की बातचीत आप इसमें सुन पाएंगे।

मेरी माटी मेरा देश इस कंप्लीट कार्यक्रम को आप सुनेगा शाम 7:31 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे आप सुनेगा संसद समीक्षा। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मों से कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल कव्वाली। चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30।

रात्रि 9:23 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम में आप सुनिएगा करंट अफेयर्स। रात 10 बजे से हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनिएगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रदेश दर्शन। और रात 10:30 पर आकाशवाणी आगरा केंद्र से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथी का राग सुरमल्हार और राग यमन में शहनाई वादन। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत आपने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाजें थी लता मंगेशकर और साथी की। गीत लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना हमने ली है फिल्म गोपी से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथी की। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत से संवारा है कल्याण जियानंद जी ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना हमने ली है फिल्म सुहाग से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथी की। आनंद बख्शी के लिखी इस रचना को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना आपने सुनी फिल्म सुहाग से। आवाजें थी मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथी की। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या भी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। और अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में, जहां हम रोज़ कई सारी इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं और नई नई बातों पर मनोरंजन के थ्रू ध्यान भी देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट मल्लिका। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। वैसे तो मौसम चल रहा है बारिश का, वो मौसम जो हर किसी व्यक्ति को खुश कर देता है। मुझे तो पर्सनली मानसून बहुत पसंद है और बारिश को आता देख मुझे तो बहुत खुशी होती है। आपको भी तो होती होगी ना? चिलमिलाती गर्मी में ठंडी ठंडी बारिश की बूंदों का तो मज़ा ही अलग है, और फिर उसके साथ हो चाय और पकौड़े, फिर तो क्या ही कहना। मगर इस साल बारिश हमें बहुत कम देखने को मिल रही है। कारण की बात करें तो कारण है अलनीनो। अब अलनीनो क्या है, आइए पहले यही जानते हैं प्रीति से, जो एक टीचर हैं और भूगोल की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवानी में। पहला सवाल आपसे जो है वो ये है कि अलनीनो के बारे में आप क्या जानती हैं? अलनीनो होता क्या है?
1: अलनीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक और जटिल मौसम संबंधी घटना है, जिसमें मध्य और जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का जो तापमान होता है वो सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। इसके प्रभाव से वैश्विक हवाएं और जो समुद्री धाराएं हैं उनका चक्र पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे दुनिया के एक हिस्से में भयंकर सूखा और दूसरे में बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है।
0: अच्छा, अगर ये बात करें कि ये काम कैसे करता है तो क्या आप मुझे बताएंगे?
1: बेसिकली ट्रेड विंड्स पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जिससे गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जमा होता है, लेकिन एलिनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या अपनी दिशा ही बदल लेती हैं। इसके कारण प्रशांत महासागर का गर्म पानी पेरू और दक्षिण अमेरिका के तटों की ओर वापस आ जाता है, जिससे समुद्र का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है।
0: अच्छा, भारत में इसकी स्थिति की बात करें तो वो क्या है?
1: देखिए, भारत के संदर्भ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके समुद्र के गर्म होने से हवा के दबाव में भारी बदलाव आता है, जिससे कि एलनीनो के कारण भारत की ओर नमी लाने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। भारत में बारिश जो है कम होने और सूखे का खतरा भी बढ़ जाता है,
2: जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी सूखे की स्थिति बन जाती है। जैसा कि आप देख ही रही हैं कि इस साल हमें भारत पर इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इस साल और वर्षों की अपेक्षा हमें जो मानसून है वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा है।
0: दोस्तों, आप सुन रहे थे अलनीनो के बारे में। उम्मीद करती हूँ अलनीनो के बारे में आप जान गए होंगे। इन्हीं क्लाइमेट चेंज सिचुएशंस को देखते हुए हमें ज़रूरत होती है वाटर हार्वेस्टिंग की, या मैं कहूँ कि एक एक बूंद अनमोल है, जो कि आज हमारा सेगमेंट भी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पानी एक वो चीज़ है जिसके बिना जीवन का सोचना भी असंभव है, क्योंकि हम अभी भी चाहे किसी ग्रह या चंद्रमा की बात क्यों ना हो, सबसे पहले पानी की खोज की शुरुआत होती है, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती पानी के बगैर। इसीलिए सरकार द्वारा भी समय समय पर पानी बचाने की कई स्कीम्स बनाई गई हैं और इम्प्लीमेंट भी की गई हैं। ऐसी कई जगह हैं जहां बरसात के पानी को भी लोग स्टोर करके यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छा ज़रिया भी है पानी बचाने का। हमें समझना होगा बूंद बूंद का अनमोल, क्योंकि पानी है अनमोल। हमें याद भी रखना होगा कि पानी पैदा नहीं किया जा सकता, मगर हम बचा ज़रूर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप तक मैं अपनी बात पहुँचाने में सक्षम रही हूँ। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे एक गीत। आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि सॉन्ग एंजॉय करने के बाद हम फिर किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम यवानी में। उम्मीद करती हूँ सॉन्ग आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों, हमने बात की सॉन्ग सुनने से पहले बूंद बूंद किस तरह अनमोल है। अभी आगे बढ़ते हुए समय है आज के सवाल का। दोस्तों, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का समापन हुआ है। मेरा सवाल उसी से मिलता जुलता है कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ और इसका मैस्कट क्या था। आप सवाल का जवाब ढूंढें, मगर उससे पहले हम नई पहल सेगमेंट में बात कर लेते हैं समग्र शिशु व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। तो आपको बताना चाहूंगी कि यह एक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक कंटिन्यूस और व्यापक देखभाल करना है। ये स्कीम मेनली बच्चों के पोषण, विकास और प्रारंभिक मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ये योजना पहले से चल रही 2 योजनाओं, घर पर नवजात शिशु की देखभाल और छोटे बच्चों की घर पर देखभाल को एक साथ जोड़ता है। साथ ही इसके तहत अति जोखिम यानी कि एट रिस्क वाले बच्चों, जैसे कम वजन या समय से पहले जन्मे बच्चों की पहचान कर स्वास्थ्य कर्मियों, आशा और ANM द्वारा फॉलोअप और विशेष देखभाल को एक साथ जोड़ता है। साथ ही प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी इस प्रोग्राम का मेन पार्ट है। साथ ही माता-पिता को बच्चों में स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल, टीवी कम करने, संवाद करने, कहानी सुनाने और खेलों के माध्यम से उनके विकास यानी कि रेस्पॉन्सिव पेरेंटिंग के लिए जागरूक बनाना है। हर बच्चे के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जननी पोर्टल और यूविन पर रिकॉर्ड भी की जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे आज की वार्ता, जिसका विषय है प्रसन्न रहना है संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी। वार्ताकार हैं मेघा राघव।
1: प्रसन्न रहना है संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी। प्रसन्न रहना यानी खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। खुशी मानव का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। आज के तकनीकी युग में खुशी के महत्व को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से युवा अपना जीवन जी रहे हैं, जिस तरह का उनका खान पान है, उससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है, जिसकी तरफ वह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रसन्नता यानी खुशी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। आज के युवा जो हमारे देश का भविष्य भी है, आज उनके लाइफस्टाइल और पहले की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है, जिस वजह से आज हमें तरह तरह की अनेक अनेक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। जैसे कि आज के समय में छोटी सी उम्र में ही युवाओं का डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाना, युवावस्था में इस प्रकार की मानसिक बीमारी की वजह को देखें तो हम पाएंगे हमारा असंतुलित खानपान, रात को देरी तक जागना, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना आदि। आजकल के युवा घर के खाने के बजाय बाहर का चटपटा और मसालेदार फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कई सारी स्टडीज और रिसर्च द्वारा हमें ज्ञात है कि फास्ट फूड सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, जबकि आजकल का युवा इसे समझने में देर कर रहा है। जानबूझकर स्वाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उसकी सेहत के साथ क्यों ना खिलवाड़ हो रहा हो, जो कि हो भी रहा है। डॉक्टर्स और विशेषज्ञ इसके लिए मना करते हैं, फिर भी आज का युवा नहीं मान रहा है। आजकल के युवाओं का लेट नाइट रूटीन होने और सुबह देरी से उठने की वजह से वे दिन भर थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। वो हमेशा किसी ना किसी चिंता से घिरे ही रहते हैं। इस वजह से वे अपने किसी भी काम, चाहे जॉब हो या फिर कॉलेज, वे पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। तो चलिए अब हम ऐसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो, कुछ वो चीजें जिन्हें आज का युवक कहीं ना कहीं अपनी भागदौड़

0: जिंदगी में भूलता जा रहा है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उस हद तक खिलवाड़ कर रहा है कि अंत में एक डॉक्टर की ही जरूरत शेष बचती है। प्रसन्नता यानी खुशी से सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं, जिससे अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हम दूसरों के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। आजकल का युवा अपने घर परिवार से दूर कहीं किसी कोने में सोशल मीडिया पर वक्त व्यतीत करना ज्यादा पसंद करता है, जिससे उनको मानसिक बीमारियों से भी जूझना पड़ जाता है और अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठते हैं। प्रसन्नता हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन पहलू है, जो न केवल हमारे मानसिक बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी भी है। प्रसन्न रहने से वैसे तो बहुत से फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे हम तनाव से दूर रह सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य में प्रसन्न रहने के फायदे कुछ ये है कि जैसे कि हृदय की अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें खतरा कम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और साथ ही रक्तचाप भी संतुलित में रहता है। प्रसन्न रहने से हम लोगों के साथ और अपनी निजी जिंदगी में अपने रिश्ते मजबूत रख पाने में काफी हद तक सफल रहते हैं। प्रसन्न रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी है। हम अपने जीवन में कुछ ऐसी आसान सी चीजें अपना सकते हैं जिनसे हम प्रसन्नता का अनुभव करें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं। सकारात्मक विचारों को हमेशा अपने दिमाग में आने दें और नकारात्मक विचारों को न केवल खुद से दूर रखें बल्कि नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। हमेशा दूसरों की मदद करें, जिससे आपको खुद में खुशी महसूस होगी। अपने जीवन में एक स्वस्थ जीवन शैली को भी अपनाएं, जैसे कि समय पर खाना खाना, नियमित रूप से कसरत करना, रात को पूरी तरह से नींद लेना आदि। संभव हो तो योग को भी अपनी दैनिक दिनचर्या में स्थान दे। साथ ही आपको जिन कार्यों में रुचि हो उन कार्यों को जरूर करें, वो सारी चीजें जो आपको खुशी देती हैं। लेकिन आजकल युवा इन सब चीजों से काफी दूर भागते नजर आ रहे हैं। योग के जरिए अपने शरीर को फिट बनाने और योग कर निरोग होने के बजाय हैवी डाइट ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिसका आगे चलकर कहीं ना कहीं शरीर पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में बिना सोचे समझे शामिल होने से उनके स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ रहा है, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य है तो हमारे जीवन में प्रसन्नता है और जीवन में खुशियां हैं तो सब कुछ है।
1: दोस्तों, हम सुन रहे थे आज की वार्ता, जिसका विषय था प्रसन्न रहना है संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी। वार्ताकार थी मेघा राघव। उम्मीद करती हूँ वार्ता के थ्रू आपको कई सारी जानकारी मिली होगी और हमने जाना कि खुश रहना हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। फिलहाल तो बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम बात कर लेते हैं हाल ही में लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म ड्यूनिक्स की। बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया ये एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से संगठनों को टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, डिजिटल एसेट इकोसिस्टम और मल्टी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बनाने और उन्हें बड़े स्तर पर फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हाइपर लेज़र फैब्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसके उद्देश्य की बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करता है। NPCI की बात करें तो ये UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों में अग्रणी रूप से जाना जाता है। ये वही UPI है जिसे आज हम कुछ ही सेकेंड्स में ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। वहीं ड्यूनिक्स की बात करें तो ये परमिशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें केवल प्रमाणित और ज्ञात प्रतिभागी ही हैं जो सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। ये प्लेटफॉर्म एसेट्स यानी कि आपकी परिसंपत्ति को डिजिटल टोकेन में बदलने की सुविधा देता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि ये सभी लेन देन का रिकॉर्ड एक विकेंद्रीकृत बही खाते में दर्ज करता है, जिससे डेटा में हेराफेरी की संभावना लगभग ख़त्म हो जाती है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आपको बताना चाहूँगी कि ड्यूनिक्स ओपन सोर्स नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उन्नत ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर व्यवसायों और सरकारों

को भरोसेमंद डिजिटल संपत्ति तैनात करने और डेटा को संप्रभु रखते हुए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का पता लगाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्यूनिक्स प्लेटफॉर्म की। फिलहाल तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे एक गीत, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सॉन्ग आपने एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं चरेवेती चरेवेती की। अरे, ये क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका मतलब है चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। ये एक संस्कृत वाक्यांश है जो ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया वैदिक मंत्र है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी रुकना या थमना नहीं सिखाता है। वैसे तो समय है ही ऐसा कि समय के अनुसार हमें कई चीज़ें सिखाता है। बचपन से बचपन तक के सफ़र में इंसान कई सारी चीज़ें सीख जाता है और ख़ासकर समझता है कि व्यक्ति को हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि थमा हुआ पानी का भी मूल्य उतना नहीं जितना बहती हुई नदी का होता है। इंसान को कर्महीन होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो उठकर कार्य करता है वो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस को लेता है। चरेवेती चरेवेती ये संस्कृत वाक्यांश हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें अपने मार्ग पर अडिग रहकर

चलते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रगति ही जीवन का मंत्र है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगी आज के सवाल का जवाब। तो मेरा सवाल था कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किन देशों ने की, तो मैं आपको बता दूं कि ये तीन कंट्रियों ने मिलकर आयोजित किया, USA, मैक्सिको एंड कनाडा। इसके तीन मैस्कट्स की बात करें तो मैपल, द मूज एंड जायो थे। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे एक गीत।

दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सॉन्ग आपने एंजॉय किया होगा। फिलहाल तो घड़ी की सुइयां चल रही हैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर। उम्मीद करती हूँ आज मेरे द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहूँगी, अपना और अपनों का ध्यान रखें। कार्यक्रम युवानी सुन रहे थे आप अपनी दोस्त मल्लिका के साथ। नमस्कार।

हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस स्टूडियो की खड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं और अब समय है ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण लोक का।

राम राम किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम ग्राम विलोक और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार। किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है, चारों ओर हरियाली छाई है, मौसम बड़ा ही सुहाना है, लेकिन जितनी खुशी इस बरसात के मौसम में हमें होती है उतनी ही आफत हमारे पशुओं के लिए खड़ी हो जाती है। कीचड़, नमी, मक्खी, मच्छर और न जाने कितनी बीमारियां पांव पसारने लगती हैं। तो इस मानसून के सीजन में हमें अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की सही देखभाल की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि बरसात आते ही हमारे पशुपालक भाइयों की चिंता बढ़ जाती है। कोई कहता है कि भैया भैंस को दस्त हो गए हैं, तो कोई थनेला या खुरपका मुंहपका रोग से परेशान रहता है। साथियों, बरसात के मौसम में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण नमी, दूषित चारा और गंदगी है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रख लें तो हमारे पशु बरसात के दिनों में बीमार नहीं होंगे। वो बातें क्या हैं, आइए जानते हैं। साथियों, पहला काम हमें जो करना है वो ये है, सूखा और साफ बाड़ा। पशुओं के लिए बैठने की जगह पर पानी या कीचड़ जमा ना होने दें। फर्श पर चूने का सूखा पाउडर छिड़कें जो नमी को सूखेगा और कीटाणुओं को वो मारेगा। अगर फर्श कच्चा है तो वहाँ सूखी मिट्टी, लकड़ी का बुरादा या सूखी पराली आप बिछा सकते हैं। बाड़े में हवा आने के आने का जो रास्ता है वो होना चाहिए ताकि सीलन ना बने, लेकिन ध्यान रहे सीधे तेज बरसात की पोछारें पशुओं पर न पड़ें। पशुओं के लिए चारे का सही संतुलन इन दिनों में बहुत ज़रूरी होता है। बरसात में उगने वाले हरे चारे में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये हम सबको पता है। केवल हरा चारा खिलाने से पशुओं को दस्त हो सकते हैं, इसके लिए ध्यान रहे कि हरे चारे के साथ सूखा भूसा मिलाकर दें। साथ इन दिनों पशुओं के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था जरूर करें। पोखरों या गड्ढे में जमा गंदा पानी पशुओं को भूलकर भी न पिलाएं, इससे पेट के कीड़े और गलघोंटू जैसी बीमारियां फैलती हैं। पशुओं को हमेशा साफ ताज़ा पानी पिलाएं। और साथ पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो है पशुओं का टीकाकरण, आप ज़रूर कराएं। बरसात शुरू होने से पहले ही गलघोंटू, HS, लंगड़ा बुखार BQ और खुरपका मुंहपका के लिए FMD के टीके लगवाने चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रहे टीका लगवाने से पहले कृमिनाशक, पेट के कीड़े मारने की जो दवा होती है वो 7 से 15 दिन पहले आप अपने पशुओं को दें। और हाँ, एक बात का ध्यान और आपको रखना है, हमेशा स्वस्थ पशु को ही टीका लगवाएं। किसान भाइयों बहनों, बरसात के मौसम में एक और समस्या हमारे पशुओं को आती है। इस मौसम में मक्खी, मच्छर, किल्ली पशुओं का खून चूसते हैं, जिससे वे दूध देना कम कर देते हैं और बीमारियों का खतरा अलग। तो साथियों, इसके लिए आसान, सस्ता, टिकाऊ और घरेलू उपाय है, जिसे हमारे ज़्यादातर किसान और पशुपालक भाई बहन करते भी हैं। शाम के समय अपने बाड़े में नीम की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करें और उनका धुआं करें, इससे मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। या फिर एक काम और आप कर सकते हैं, 100 मिलीलीटर नीम के तेल में 10 ग्राम कपूर मिलाकर उसका घोल बना लें और इसे पशु के शरीर के कानों शरीर पर और कानों के पीछे लगाएं। मक्खी मच्छर किल्ली पशु के पास भी नहीं फटकेंगे। तो किसान और पशुपालक भाई और बहनों, आज आपके साथ की गई इन सब बातों का निचोड़ ये है कि सूखा बाड़ा, संतुलित चारा, साफ पानी और समय पर टीका, अगर हम चार बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पशु तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारियों का खर्चा बचेगा और हमारी जो दूध की बाल्टी है वो हमेशा भरी रहेगी। दोस्तों, बरसात के सीजन में अपने पशुधन की सेहत की बात तो हमने आपसे कर ली, आइए अब आपका मनोरंजन कराते हैं और सुनते हैं ये लोकगीत और जानते हैं इनकी परेशानी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: किसान साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामीलोक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं अपनी कर्म भूमि यानी खेती किसानी की। दोस्तों, इन दिनों हमारे लिए खेती किसानी में करने के लिए बहुत से काम होते हैं। साथियों, बरसात में आवश्यक शस्त्र क्रियाएं कौन कौन सी हैं जो हमें करनी होती हैं, इस जरूरी जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ हैं फैज बख्श सैयद।
2: बरसात का मौसम खेती किसानी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस मौसम में प्राप्त वर्षा जल का आप समुचित उपयोग एवं संचयन करें। खेतों से बह जाने वाला वर्षा जल अपने साथ न केवल उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाता है, बल्कि यह पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भी बहा ले जाता है। अतः खेतों की अच्छी तरह मेड़बंदी करके तथा वानस्पतिक आच्छादन द्वारा वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन करें। खेत का पानी खेत में तथा गांव का पानी गांव में रहना चाहिए। जुलाई माह के अंत तक किसान भाई धान की रोपाई का कार्य पूर्ण कर लिया होगा। धान की रोपाई के बाद एक सप्ताह तक खेत में 2-3 इंच पानी भरा रहना चाहिए। इसी समय खरपतवारों के नियंत्रण हेतु ब्यूटाक्लोर 50 cc रसायन की 3-4 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर अथवा

दवा के 5% ग्रेनुल्स की 30 से 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। रोपाई के 6 से 8 दिन के अंदर पानी भरे खेत में 10 किलोग्राम नील हरित शैवाल प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। इससे फसल को 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर प्राप्त होगी। नील हरित शैवाल के प्रयोग के बाद 15-20 दिन तक खेत में 3 से 4 इंच पानी भरा रहना चाहिए। धान की फसल की खैरा रोग से सुरक्षा हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2.5 किलोग्राम चूना अथवा 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बाजरा खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी बुवाई आप अगस्त के मध्य तक कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह तैयार एवं खरपतवारों से मुक्त खेत होना चाहिए। इसकी संकर तथा संकुल प्रजातियों के प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। बुवाई 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाई कतारों में करें। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद निकाई गुड़ाई करके कमज़ोर पौधों को घने पौधों के बीच से निकालकर पौधों का आपसी फासला 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें। खाली जगह में उखाड़े गए पौधों को रोपित कर दें। 25 से 30 दिन की फसल में संकर प्रजातियों हेतु 100 किलोग्राम तथा संकुल प्रजातियों हेतु 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। खरीफ में बोई गई मक्का की फसल इस समय लगभग 40 से 50 दिन की हो रही होगी, जिसमें 80 किलोग्राम संकर प्रजातियों हेतु तथा 50 किलोग्राम संकुल प्रजातियों हेतु यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टर की दर से करें। फसल में सिल्क तथा वाली निकलते समय भूमि के अंदर नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अतः इन अवस्थाओं पर यदि वर्षा न हो तो सिंचाई का प्रबंधन करें। तना छेदन से फसल की सुरक्षा हेतु कार्बोफ्लोरान 3% दानेदार रसायन की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। खरीफ में बोई गई उर्द एवं मूंग की फसलों में निकाई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालती रहें। खरीफ में ही बोई जाने वाली तिल की फसल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। सामान्यतः इसकी खेती वर्षा आधारित होती है। इसकी 20 से 30 दिन की फसल में निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों का निष्कासन करती रहें। घने पौधों को निकालकर पौधों का आपसी फासला 10 से 12 सेंटीमीटर कर दें। यह फसल जल भराव के प्रति अति संवेदनशील है, अतः अधिक वर्षा जल को खेत से बाहर निकालने का प्रबंधन करें। पुष्पावस्था पर अगर वर्षा न हो तथा भूमि में नमी की कमी दिखाई पड़े तो एक सिंचाई अवश्य करें। गन्ने की फसल अगस्त माह में लगभग 2 मीटर की होगी, जिसको गिरने से बचाने हेतु बंधाई करें। यदि हरी खाद हेतु बोई गई सनई तथा ढेंचा की 35 से 40 दिन की फसल की जुताई करें। इन फसलों को मिट्टी में मिलाने पर भूमि में 60 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर एवं पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ भूमि में प्राप्त होता है। इसी मौसम के अगस्त माह में आप शिमला मिर्च, टमाटर एवं गोभी की मध्यम वर्गीय किस्मों के बीजों की बुवाई नर्सरी में कर सकते हैं, लेकिन पात गोभी की नर्सरी आप अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में ही डालें। बैंगन, मिर्च, अगेती फूलगोभी एवं खरी प्याज की तैयार पौध की रुपाई आप करें। फूलगोभी एवं प्याज के लिए 200 से 250 कुंटल सड़ी गोबर की खाद अथवा 80 किलोग्राम नादेव कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दें तथा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास तत्व अंतिम जुताई के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें। खेत में खड़ी बैंगन, मिर्च एवं भिंडी की फसलों में निकाई गुड़ाई, फसल सुरक्षा एवं जल निकास का प्रबंधन करें। फलों की समय पर तुड़ाई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए मचान या किसी सहारे का प्रबंधन करें।

0: ऐसा करने से अच्छी पैदावार के साथ साथ गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त होंगे। आंवला, अमरूद, बेर, बेल एवं नींबू के नए बाग लगाने का अभी समय है, अतः विश्वसनीय स्रोत से पौधे प्राप्त कर इनका रोपण करें।
1: तो किसान साथियों, अभी हमने फैज बख्श सैयद से जाना बरसात के दिनों में खेती किसानी में होने वाली शस्य क्रियाओं के बारे में। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी या बताई गई बातें आपके काम आएंगी और आपको फायदा होगा। किसान साथियों, खेती किसानी की बात चल रही है तो चलिए लगे हाथ बाजरा की नई उन्नत किस्मों के बारे में जान लेते हैं, जिनमें RHP 273 जिसे थ्री वे हाइब्रिड कहते हैं, HHP 311, सुपर 82, 89 प्रमुख हैं जो कम पानी और सूखे में बंपर पैदा देती हैं।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामीलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब जान लेते हैं मौसम के हाल और बात करते हैं आज के तापमान की। तो आज का न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस। कल के तापमान की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से भारी बरसात भी हो सकती है। और दोस्तों, मौसम के हाल जानने के बाद आइए आनंद लेते हैं एक और प्यारे से लोकगीत का।

मजदूर मंडल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो सखी छवि गर्ग का स्नेह भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। कैसे हैं साथियों आप लोग? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मौसम भी सुहावना है और आप लोग भी ठंडी ठंडी फुहारों का मजा ले रहे होंगे। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। तो मित्रों बताइए, भारत के लिए भारोत्तोलन में यानी कि वेटलिफ्टिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम है? आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए, हम आपको इसका सही जवाब इसी कार्यक्रम में आगे देंगे, इसलिए हमारे कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास से जुड़ा है, और वो है समाज और देश में बेटियों की बढ़ती हुई भूमिका। दोस्तों, कभी एक समय ऐसा था जब बेटियों को केवल घर की चार दीवारी तक सीमित समझा जाता था। उनकी शिक्षा, करियर और उनके सपनों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयां छू रही हैं। इतना ही नहीं मित्रों, बेटियां किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बेटों से आगे बढ़कर सफलता हासिल कर रही हैं। साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी और सफल उद्यमी के रूप में देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। और हाँ साथियों, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेल जगत में भी भारतीय बेटियों को पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हुए देखा जा सकता है। मुक्केबाजी हो या फिर कुश्ती, बैडमिंटन हो या क्रिकेट, या फिर एथलेटिक्स जैसे कई खेल जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर बेटियों ने खुद को साबित किया है। दोस्तों, आज की बेटी केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं निभाती बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है, वही अपने माता पिता का सहारा भी बेटियां बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां अपने गांव और समाज के लिए प्रेरणा बनकर समाज को नई दिशा दे रही हैं। साथियों, हमारे श्रमिक परिवारों की बेटियां भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपने साकार कर रही हैं। दोस्तों, इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और छात्रवृत्ति योजनाएं, सरकार द्वारा चलाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों का भी बहुत बड़ा योगदान है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहल ने भी बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, लेकिन फिर भी केवल सरकारी योजनाएं काफी नहीं, इसके साथ हमारे परिवार, समाज और हम सभी की जिम्मेदारी है कि बेटियों को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें। साथियों, हमें ये समझना होगा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सही पोषण और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी आज़ादी मिले, तभी हमारा समाज वास्तव में विकसित और समृद्ध बन सकेगा। याद रखिए मित्रों, जब एक बेटी शिक्षित होती है ना, तो केवल वो अपना ही भविष्य नहीं संवारती बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित और जागरूक बनाती है। इसलिए हम सभी को ये सोचना और समझना है कि बेटा और बेटी में भेदभाव ना करें, दोनों को समान अवसर और आगे बढ़ने का पूरा अधिकार दें, क्योंकि एक सशक्त बेटी ही सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त भारत की नींव है। और हाँ, अब अपनी चर्चा को थोड़ा सा विश्राम देते हुए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, अब समय है आपसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो सही जवाब है मीराबाई चानू। जी हाँ, 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था और भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली वो प्रथम महिला बनी। साथियों, आज के ज्ञान सागर में भी हम खेल से जुड़ी ही एक जानकारी लेकर आए हैं और वो है राष्ट्रमंडल खेल, या जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। ये दुनिया के प्रमुख मल्टी स्पोर्ट्स आयोजनों में से एक है। इसमें राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और हाँ, इन खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। दोस्तों, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा में आयोजित हुआ था। शुरुआत में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, जिसे बाद में बदलकर कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। इन खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, जूडो, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, नेटबॉल जैसे कई खेल शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस जैसे खेलों में कई पदक जीते हैं। इस वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 30 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित हो रहे हैं, जिसमें 74 राष्ट्रमंडल संघों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और दोस्तों, चर्चा आगे जारी रहेगी। मिलते हैं हम क्षणिक अंतराल के बाद।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: दोस्तों हमारे श्रमिक भाई कितनी कठिन परिस्थितियों में इतनी कठोर मेहनत करते हैं जिसके लिए उन्हें उचित मजदूरी मिलना बेहद जरूरी है। इसी विषय पर आइए सुनते हैं कानूनी वार्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। वार्ताकार हैं विनोद कुमार गोयल।
2: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है। इसमें उपयुक्त अंतरालों व अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करने का प्रावधान है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा 15 मार्च 1948 से लागू किया गया। इस अधिनियम के पास हो जाने के बाद कोई भी नियोजक अवैधानिक रूप से व मनमाने ढंग से कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएगा। कर्मकारों को अपने परिश्रम का समुचित पारिश्रमिक दिया जाना कई दृष्टियों से श्रेष्ठ है। इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार नियोजक बिना किसी कटौती के अधिसूचित नियोजन में अपने अधीन प्रत्येक कर्मकार की न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी नहीं दे सकता है। फंड आदि की कटौती भी मजदूरी से नहीं की जा सकती है। अगर कोई श्रमिक किसी निर्धारित दिन या निर्धारित घंटों से अधिक कार्य करता है तो नियोजक उस समय नियमों के अनुसार ऊंची दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरी की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार प्रतिकर की अदायगी देने से पहले आयुक्त को दुर्घटनाग्रस्त कर्मकार की मजदूरी का सही आंकलन किया जाएगा। सितंबर 2016 को मजदूर संघों की हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने अकुशल व गैर कृषि मजदूरों की न्यूनतम दर 246 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन या 9,100 रुपया प्रतिमा

कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया गया, जिसमें मजदूरों की 3 श्रेणियों में बांटा गया, जीने के लिए मजदूरी, उचित मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी। जीवन जीने की मजदूरी का अर्थ है जिसमें मजदूर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ स्वास्थ्य व बुढ़ापे के लिए भी सुरक्षा प्राप्त कर सकें। भारतीय मजदूर संघ के ए.के. पद्मनाथ का कहना है कि अगर सरकार अनुबंधित श्रमिकों का सचमुच में हित चाहती है तो उसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने व नियमित अनुबंधित श्रमिकों के वेतन में समानता लानी होगी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2017 को मजदूरी संहिता विधेयक 2017 पेश किया गया, जिसमें केंद्र को सार्वभौम न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार दिया गया है और इसमें असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ मजदूरों को लाभ होने की संभावना है। लोकसभा में श्रम मंत्री ने इस विधेयक के माध्यम से 4 कानूनों, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिलाकर उसे सरल व सुव्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव किया है। इस बिल का खास प्रावधान यह है कि किसी मजदूर को कम वेतन दिया गया है तो उसके नियोक्ता पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। 5 साल के दौरान अगर वह फिर ऐसा करता है तो उस पर 1,00,000 का जुर्माना या 3 माह की कैद या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नए कानून में यह भी प्रावधान है कि दिहाड़ी मजदूरों को शिफ्ट समाप्त होने पर साप्ताहिक श्रमिकों को कार्य दिवस समाप्ति के बाद दूसरे दिन ही वेतन का भुगतान करना होगा। मासिक आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों को अगले माह की 7 तारीख तक वेतन देना होगा। श्रमिकों को हटाने या उनको बर्खास्त करने या उनके इस्तीफा देने पगार 2 कार्य दिवस के भीतर देनी होगी। इसके अलावा नियोक्ता के लिए भी नए बिल में यह राहत दी गई है कि वह श्रमिक की मजदूरी तभी काट सकता है जब वह ड्यूटी से गैर हाजिर रहा हो या उसकी वजह से उसका कोई नुकसान हुआ हो। घर व अन्य सहूलियतें देने की एवज में भी वह उक्त रकम उसके वेतन से कम कर सकते हैं। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी की दरें अकुशल मजदूरों को 14,378 रुपये प्रतिमाह, अर्धकुशल मजदूर को 15,912 रुपये तथा कुशल मजदूर को 16,858 रुपये प्रतिमाह निर्धारित था, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा अकुशल मजदूर को प्रतिमाह 13,896 रुपये, अर्धकुशल मजदूर को 15,296 रुपये प्रतिमाह तथा कुशल मजदूर को 16,858 रुपये प्रतिमाह मजदूरी तय की गई है। इसी प्रकार कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा दिनांक 28/3/2018 के शासनादेश द्वारा कालीन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए मजदूरों की मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार अकुशल मजदूर को दिनांक 1/4/18 से प्राप्त मजदूरी की दर 7,110 रुपये प्रतिमाह व दैनिक मजदूरी 273 रुपये तथा अर्धकुशल मजदूर को 7,900 रुपये प्रतिमाह व 303 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी तथा कुशल मजदूरों को 8,532 रुपये 60 पैसे तथा दैनिक मजदूरी 328 रुपये 18 पैसे तय की गई है। अगर नियोजक के यहाँ मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसा श्रमिक जो कम से कम 12 माह पूर्व से कार्यरत है तो ऐसा श्रमिक प्रतिकर पाने का अधिकारी है तथा वह अपनी मजदूरी का 1/12 भाग प्रतिकर के रूप में पाने का अधिकारी होगा। इस अधिनियम को सही ढंग से पालन कराने हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कभी भी स्थापन व मजदूरों से संबंधित कागजात, रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता की धारा 28 के अनुसार लोक सेवक माना गया है। उनकी विधिक कार्यवाहियों में अवरोध उत्पन्न करने वाले या मानहान करने वालों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रावधान है। किसी भी कर्मकार से नियत समय से अधिक समय तक काम लेना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई कर्मकार कंपनी या नियोजक को गलत ढंग से या ईर्ष्यावश परेशान या उत्पीड़ित करता है तो नियोजक के आवेदन पर कर्मकारों को अक्षम्य रूप से 50 रुपये का अर्थदंड दिया जाएगा। दंड आर्थिक या शारीरिक अथवा दोनों प्रकार का दिया जा सकता है। आर्थिक दंड 500 रुपये का तथा कारावासी दंड अधिकतम 6 मास का दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी

0: इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 500 रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। प्रतिकर के निपटारे के लिए सरकार द्वारा आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें दीवानी से अनुभव प्राप्त अधिकारी या स्टाइपेंड मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है, जो मजदूरों से संबंधित न्यूनतम मजदूरी के दावों का निस्तारण करते हैं, जिनके अधिकार दीवानी के न्यायाधीशों के समान होते हैं तथा वह उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। ऐसे न्यायाधीशों के आदेशों के विरुद्ध निगरानी सीधे उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत हो सकेगी। न्यूनतम मजदूरी भुगतान का दावा देय राशि की तिथि से 6 माह के अंदर किया जा सकेगा, जिसका निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाएगा। अगर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई है तो शेष राशि तथा अंतर का 10 गुना तक दंड व क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के पारित होने के बाद मजदूरों व कर्मकारों को काफी राहत मिली है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कानूनी वार्ता, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। वार्ताकार थे विनोद कुमार गोयल। अब चलते हैं अगले सेगमेंट सेहत टिप्स की ओर। दोस्तों, आजकल बारिश के मौसम की वजह से वायरल बुखार की समस्या बढ़ गई है, तो ऐसे में सेहतमंद रहने के लिए उबला हुआ पानी पिए, बाहर का खुला हुआ खाना जो ठेले पर मिलता है खाना बिल्कुल छोड़ दें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। साथ ही हमेशा ताज़ा, गर्म और हल्का भोजन करें। कटे हुए फल, चाट और बाहर मिलने वाले पेय पदार्थ ना लें। अपनी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए अदरक, तुलसी और नींबू का प्रयोग करें। दोस्तों, बीमारी और संक्रमण से बचने के लिए घर के आसपास या छत पर पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं। और बारिश में भीगना भले ही कितना अच्छा लगता हो, लेकिन भीगने से बचें। हाथों को अच्छा से साफ करें और त्वचा को संक्रमण से बचाने के लिए ढीले और सूती कपड़े पहनें। तो दोस्तों, सेहत टिप्स में आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो इजाजत दीजिए अपनी रेडियो साथी छवि गर्ग को। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल रेलखंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना

0: for the final of the men's S1300-meter freestyle para-swimming event. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है विविधा कार्यक्रम का। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता, पानी की हर बूंद कीमती है। वार्ताकार दिवाकर तिवारी से बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण।
2: श्रोताओं नमस्कार। हमारे जीवन यापन के लिए कुछ ये बहुत जरूरी होती हैं, जैसे हवा, और उतना ही जरूरी है पानी। अगर हवा और पानी ये दो जरूरी चीजें न हो तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। और आज दुर्भाग्य से कहें या परिस्थितिवश, या परिस्थितियां हमने स्वयं पैदा की हैं, हवा और पानी दोनों पर संकट है। जी हाँ, न तो साफ हवा है और न ही पर्याप्त पानी है। उसके बाद प्रश्न आता है साफ पानी का। इसी विषय पर बात करने के लिए इस पूरे पानी बचाओ अभियान में बड़े शिद्दत से जुड़े हैं इंजीनियर दिवाकर तिवारी जी। आज तिवारी जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार तिवारी जी।
3: नमस्कार सर।
2: पानी की एक एक बूंद बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। किस तरह से हम पानी बचाने के लिए कुछ सोचें और उसके लिए कुछ उपक्रम करें?
3: मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है और अब तक हम देखते आए हैं कि जल ही जीवन बोला गया है।
2: जी,
3: केवल मानव नहीं, हम जीव जंतुओं की बात करें, हम प्रकृति की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, सबके लिए जल आवश्यक है। और जल के संरक्षण के लिए चूंकि मानव को ही पृथ्वी का दायित्व दिया गया है कि उसको ही संभालना है और वही बिगाड़ने वाला है। अगर स्वरूप को बिगाड़ने की भी बात करें तो ये कहते हुए मुझे कहीं भी कोई झिझक नहीं है कि अगर हम इंजीनियर्स की बात करें या साइंटिस्ट की बात करें, जितने भी विकसित लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि हम बहुत विकसित हैं, हमारा मानसिक स्तर बहुत अच्छा है, उन्होंने ही इस स्थिति को बिगाड़ने में भी भूमिका निभाई है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: जितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी नई आ रही हैं, चाहे वो आप टेक्सटाइल मशीनरी ले लें जिनमें आप कपड़ों की रंगाई करते हैं, उसके बाद पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो आप जीन्स बनाने की प्रक्रिया को देख लें उसमें पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, लेदर की सफाई देख लें उसमें पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, ये सारी चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं लेकिन जीवन से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जल की हर बूंद कीमती है, और चूंकि जो पीने का पानी है आप उसको कुओं से, बावड़ी से, नल से निकालकर बोतल में ले आए हैं, तो वो बोतल मानव तो खरीद सकता है लेकिन पशु नहीं खरीद सकता।
2: बिल्कुल।
3: हमारी चिड़िया नहीं खरीद सकती,
2: हमारे
3: पेड़ पौधे नहीं खरीद सकते। सरकार एक कस्टोडियन की भूमिका में है लेकिन जल, जल पे अधिकार जितना मानव का है उतना जीव जंतु का है, उतना ही पेड़ पौधों का है, उतना ही हमारे पक्षियों का है।
2: बिल्कुल।
3: तो हमें इसको संरक्षित कहीं ना कहीं करना होगा।
2: जैसे आपने बात की कि पानी की बोतल इंसान तो खरीद सकता है बाकी खरीद नहीं सकते, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो पहले पानी हर एक की पहुंच में हुआ करता था, जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था हुआ करती थी, लोग नदियों से पानी पीते थे, तालाबों से पानी पीते थे, और न केवल इंसान, सबके लिए, सिंचाई के लिए हो, पशुओं के लिए हो, और ये जो बड़े संसाधन हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, ये दूषित हो गए हैं। इस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी?
3: सर, मैं आपसे एक बात यहाँ रखना चाहूंगा
2: जी,
3: कि दूषित पानी नहीं हुआ है, दूषित मानसिकता हुई है। दूषित मानसिकता कैसे हुई है कि जब हम बोतल उठा रहे हैं, आपसे अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो जिस व्यक्ति के हाथ में बिस्लेरी की बोतल होती थी उसके लिए हमारा सम्मान बढ़ जाता। मानसिक स्तर यहाँ तक दूषित हो चुका है कि जो बिस्लेरी की बोतल पकड़ के पानी पी रहा है हम उसको अधिक सम्मान दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बिस्लेरी का पानी पी रहा है। और आते आते जल का इतना प्रदूषित हो गया है जल कि मजबूरी भी हो गई लोगों की कि भाई आरओ वाटर लगाना पड़ा, आरओ से वाटर पी रहे हैं। लेकिन हमको ये सोचना होगा कि जब दूध के भाव में पानी बिकने लगेगा तो हमारा जो गरीब तबका है वो बेचारा कहाँ से पानी लेके आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर आके खड़े हुए हैं। अब हम छोटे छोटे ऑफिसेज में जाते हैं, वहां भी हमको एक छोटी बोतल सब करने लग गए हैं लोग। जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसका ढक्कन रिसाइकल नहीं हो सकता, और आप समुद्री कचरा देखेंगे तो समुद्री कचरा इतना बड़ा खड़ा हो गया है उस प्लास्टिक ढक्कन का कि जो हमारी मछलियां हैं उनके जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसमें भी बाधा आ रही है और वो उनके पेट में जमा हो रहा है।
2: जी, इसमें देखें ये जो समस्याएं आई ये इसलिए आई क्योंकि जो पानी के जो सामान्य स्रोत हुआ

0: करते थे, उनका पानी या तो कम हो गया या पीने लायक नहीं बचा। जैसे पानी का स्तर कम होता गया, हमने उनको रिचार्ज नहीं किया।
1: जी
0: तालाब से पानी पीते थे, तालाब पानी गंदा हमने किया, और आज हम इन तमाम विसंगतियों को झेल रहे हैं। अब एक प्रश्न आता है, मैंने पहले इशारा किया, तो जो नदियां हैं, तालाब है, जो प्रदूषित हो रहे हैं, इनको हम कैसे ठीक करें? और दूसरा, जो अमृत तुल्य पानी में बारिश में मिलता है, उसको कैसे संजोएं? इस पर आप क्या कहेंगे?
1: हमारी जो नदियाँ दूषित हुई हैं उसके लिए भी जो हमारा शहरी कचरा है वो जिम्मेदार है। हमारा सीवर नदियों में गिर रहा है। हम यमुना की ही बात करें तो दिल्ली का पूरा कचरा यहाँ तक आगरा तक आता है, फिर आगरा का भी कचरा एड ऑन होता है। पीछे भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक मिशन चलाया जिसके जरिए सभी जगह एसटीपी प्लांट लगे हैं और पानी को फिल्टर करने की कोशिश हो रही है। बारिश का पानी वहां तालाब तक पहुंचे इसके लिए हमको कहीं ना कहीं गांव के चारों तरफ ट्रेंच बनानी होंगी। ट्रेंच बना के दो दो ढाई ढाई फीट हम उसमें खंदी बना के पानी को प्रिजर्व करें। पानी जो बरसात का है, जो खेत का पानी है, वो खेत में रुके। आजकल हमारी मेड़ें भी बहुत छोटी हो गई हैं।
0: जी
1: पहले हमारी मेड़ें बड़ी हुआ करती थी, गहरी हुआ करती थी, तो पानी उसमें बारिश के बाद कोई फसल भी नहीं बोई जाती थी लंबे समय तक, तो 2-3 महीने पानी उसमें प्रिजर्व रहता था और खेतों को अच्छी रिचार्जिंग मिल जाती थी। तो ऐसा हम सभी भी कर सकते हैं अगर चाहें।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वाटर रिचार्जिंग के लिए जो बारिश का पानी हम पृथ्वी के नीचे दे सकें, उस पर कुछ हजार रुपए खर्च नहीं करते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी जो है, आदमी का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चीजों को सोचता है। उसके लिए आज भी पानी एक फ्री में मिलती हुई चीज है जिसकी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम गंगा मिशन की बात करें, गंगा का पानी आगरा में पानी पीने के लिए आया है, ना कि कपड़े धोने के लिए, ना कि गाड़ी धोने के लिए, ना कि अपने अन्य कामों के लिए। अगर आप उस मिशन की बात करें उसमें क्लियर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये गंगा जल पीने का पानी है और पीने के लिए आगरा को दिया जा रहा है या जहां कहीं भी दिया
0: जी
1: जा रहा है। अब ये जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की बन जाती है कि जब हम उस पानी को दें तो इसके साथ में स्पष्ट भी करें कि ये पानी पीने के लिए है। और मुझे लगता है कि पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे नहीं बचा पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको एक बड़े नियम बनाने पड़ेंगे। इसी में एक मॉडल है, मैंने छत्तीसगढ़ सरकार का सुना, जैसे सोलर, उन्होंने अपने पूरा छत्तीसगढ़ सोलर स्टेट के नाम से आज की डेट में जाना जा रहा है,
0: जी
1: तो उन्होंने सिंपल सिस्टम कर दिया कि आप आधार कार्ड लेके आइए, राशन कार्ड लेके आइएगा और सरकार को सब्सिडी देना है, सब कुछ सरकार करेगी। आपके यहाँ प्लांट लग जाएगा, आपका जो बनता है किस्त वो आपको देना है, वो आप जमा करिएगा, सरकार को देना है वो सरकार को करेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ऐसी सब्सिडी जो है उसके लिए हम ही को संघर्ष करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नॉकिंग करना जरूरी है।
0: जी
1: ये
0: हाँ
1: सेल्फ नहीं आएगा, हमारे सिलेबस में है, हमारे अखबार बराबर छाप रहे हैं, हमारे रेडियोज बराबर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी नॉकिंग की आवश्यकता
0: जी
1: है।
0: हाँ और हमें लगता है इंजीनियर दिवाकर तिवारी जी की हर बूंद कीमती है, ये संदेश आपके साथ जो बातचीत हुई अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकें, तो शायद हमारा उद्देश्य सफल होगा
1: जी
0: और हम इस कार्य में सफल अपने आप को मान पाएंगे। आप आए, इतनी विस्तार से बातें हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सादा धन्यवाद।
2: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था पानी की हर बूंद कीमती है। वार्ताकार दिवाकर तिवारी से बातचीत कर रहे थे श्री कृष्ण। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था,

0: स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं।
3: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
4: युवा हमारा देश का भविष्य, और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट, और प्रधानमंत्री हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है। और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की, और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराया, लाखों परीक्षार्थियों को मांगे। और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए, वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि उसका कानून बनावे नया, ताकि आगे से पेपर लीक ना हो।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत

0: हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वो परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भव्य रसायन योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
1: भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और 5 ईयर्स रहेंगे। टोटल फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल आउटले 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे, चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सेलेक्शन होगा।
0: नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से लगभग 7,740 घरों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में कल कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। शामली में प्रदेश के अधिकारियों और हरियाणा प्रशासन के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन, सीसीटीवी निगरानी और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर चर्चा की गई। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
2: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर आम जन हो या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। जनपद स्तर पर भी एक बैठक की गई थी, जिसके मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी।

केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण, कहा बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। समय है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, तो सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सावन का महीना चल रहा है, भारत का वो महीना जो हर किसी को पसंद आता है। भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण और भादो मास में मुख्य रूप से होती है और इसी में शुरुआत होती है सावन के महीने की। जून माह से शुरू होने वाली वर्षा ऋतु हमें अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से भी राहत दिलाती है। यह मौसम हम सभी भारतीयों के लिए विशेषकर बहुत खास हो जाता है। अब मन में ये सवाल आता है कि बारिश आती कैसे है? हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से कम वायुदाब वाले इलाके की ओर चलती हैं। गर्मी के दिनों में भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप पठार भीषण गर्मी से तपते हैं। यहाँ निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र बन जाता है, इसके उलट दक्षिण में हिंद महासागर ठंडा रहता है। ऐसी भीषण गर्मी के कारण ही महासागर से नमी लेकर हवाएं भारत के दक्षिणी तट से देश में प्रवेश करती हैं। 1 जून के करीब केरल तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मानसून सक्रिय हो जाता है और हमारे देश में वर्षा ऋतु के अमूमन 3 या 4 महीने जो माने जाते हैं। दक्षिण में ज़्यादा दिनों तक पानी बरसता है, यानी वहाँ वर्षा ऋतु ज़्यादा लंबी होती है, जबकि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं तो वर्षा के दिन कम होते चले जाते हैं। अब बात आती है कि वर्षा का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो वर्षा का मानव जीवन में बेहद ही महत्व है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है और सूखे हुए कुएं, तालाबों, नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा भी जाता है, जल ही जीवन है। इस मौसम में छोटे छोटे जीव जंतु जो गर्मी के मारे जमीन के नीचे छिप जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसमें मेंढक की टर्र टर्र की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आकाश में प्राय बादल छाए रहते हैं। वर्षा ऋतु का आनंद लेने के लिए लोग पिकनिक मनाते हैं। गांव में सावन के झूलों पर युवतियां झूलती हैं। वर्षा ऋतु में ही रक्षाबंधन, तीज आदि त्योहार भी आते हैं। तो हुआ ना ये महीना कितना खास।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं सावन की, मानसून की, बारिश की, और अब बात करने वाले हैं हम आपके साथ किसान की। मानव जीवन में जल का अत्यंत महत्व है, इसलिए

अच्छी वर्षा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और हरा भरा बना रहे। हमें वर्षा के जल को भी संचित करके रखना चाहिए ताकि हमें कभी सूखे का सामना न करना पड़े। किसान मानसून का मुख्य रूप से इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि भारतीय कृषि काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है। मानसून के बिना धान, कपास और मक्का जैसी खरीफ फसलों की बुआई असंभव है। समय पर बारिश होने से पानी की भारी बचत होती है और फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है, जिससे किसानों की आजीविका चलती है। मानसून पर किसानों की निर्भरता के प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो भारत के एक बड़े हिस्से में आज भी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पक्के साधन यानी कि नहरें या नलकूप उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में खेती के लिए बारिश ही एकमात्र विकल्प बचता है। खरीफ फसलों की बुआई की अगर हम बात करें तो जून से सितंबर के बीच का समय खरीफ फसलों में धान, सोयाबीन, मक्का आदि जिसमें होते हैं, जिन्हें उगाने और पनपने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर पर्याप्त बारिश होती है तो किसानों को मोटर पंप और डीजल का इस्तेमाल करके जमीन से पानी नहीं निकालना पड़ता, जिससे उनकी लागत भी बचती है। अच्छी मानसून बारिश से भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर जो होता है का स्तर बढ़ता है और तालाब और कुएं भर जाते हैं, जो आने वाले समय में रबी की फसलों के लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो फिर हमारे किसान बारिश का क्यों ना करें इंतजार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं बारिश की, मानसून की, किसान की, और अब बात करेंगे फिर से सावन की और सावन में शिव की भक्ति की। भारत में सावन श्रावण, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पांचवा महीना भी होता है, जो मुख्य रूप से मानसून की फुहारों और भगवान शिव की भक्ति से भी जुड़ा है। इस पवित्र मास में भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, शिव मंदिरों में जल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं और कांवड़ यात्राएं निकालते हैं। सावन के महीने में कुछ खास ही देखने को मिलता है भारत में। अगर सांस्कृतिक पहलू से बात की जाए तो शिव आराधना सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले

विष शिवजी ने इसी महीने में अपने कंठ में धारण किया था। सावन महीने के हर सोमवार को विशेष महत्व दिया जाता है। भक्त महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे दिन का उपवास व्रत रखते हैं। कांवड़िए सावन में यात्राओं में शिव भक्ति में चले चलते चले जाते हैं और पैदल चलकर गंगा जल लेकर आते हैं और उसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। बारिश का यह मौसम चारों ओर हरियाली लाता है। इस दौरान भारत में हरियाली तीज, नागपंचमी जैसे प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं और इसी समय दो त्यौहार और हैं जो बड़े खास हो जाते हैं, वो है भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। तो हमने इस वक्त मानसून की बात कर ली, बारिश की बात कर ली, शिव आराधना की बात कर ली, तो फिर शिव को और थोड़ा सा प्रसन्न कर लेते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपसे बात की बारिश की, मानसून की, सावन की, किसान की और शिव भक्ति की भी। तो आप सभी सावन के इस मौसम का भरपूर आनंद लीजिए, शिव की भक्ति कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, लेकिन जल को संचय करना भी सीखिए और पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने से हमारा आज कल और आने वाला कल बेहतर होगा और हमारा जो भविष्य है वो सुंदर और बेहतर नज़र आएगा। तो आज के इस कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के

बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देशभर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8

से 10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5 से 6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी NBS योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य

0: के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है फिल्मों से कव्वालियों के कार्यक्रम महफिले कव्वाली का।

कार्यक्रम की पहली कव्वाली आप सुन रहे हैं फिल्म मुगले आजम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथी की, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत नौशाद का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्मों से कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली कव्वाली आपने सुनी लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथी की आवाज में। फिल्म का नाम था मुगले आजम।

निखिल बदायनी की रचना को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। कार्यक्रम की अगली कव्वाली हमने ली है फिल्म अमर अकबर अंथानी से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

कार्यक्रम की आखिरी कव्वाली हमने ली है फिल्म आरजू से। आवाजें हैं आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथी की। हसरत जयपुरी की रचना को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

आरजू फिल्म की इस कव्वाली के साथ ही महफिल कव्वाली अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संगीत का कारवां अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि अब समय हो चला है चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म अजनबी से। गीत को गाया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा था आरटी वर्मन ने। अब सुनते हैं घर फिल्म में किशोर कुमार लता मंगेशकर को, शब्द रचना गुलजार की है, संगीत रचना आरटी वर्मन की।

कार्यक्रम के आखिरी गीत को आपने सुना फिल्म मेरे जीवन साथी से। आवाजें थी किशोर कुमार की। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा था आरटी वर्मन ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय

0: मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में

0: ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं।

0: कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting

0: स्कीम पर 3030 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस स्कीम पर 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल की मुद्दत के लिए अमल किया जाएगा। जनाब वैष्णो ने बताया कि मरकज हर पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया कराएगा। ये 1000 करोड़ रुपए मुतालिका रियासती सरकार की जानिब से 500 करोड़ रुपए की कम अज कम रकम लगाए जाने की सूरत में मुहैया कराए जाएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामलों पर आज लगातार 5वें दिन शोरगुल के बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आज लगातार 5वें दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के बाद रखना पड़ा। इसके साथ ही इजलास का पहला हफ्ता अपने अख्ताम को पहुंचा और कोई खास काम इस दौरान नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। शोरगुल के दौरान दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज कौमी ताजीम की तोहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज करगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से आयद मुख्तलिफ शराइत की वजह से बहस नहीं हो सकी। सदर नशीं और हुकूमत की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन अराकीन दोनों ऐवानों में शोरगुल करते रहे। रकमानंदाजी का यह सिलसिला जारी रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वुजरा की मरकजी काबीना से रवनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डिब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर ममलिकत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारिस्त में रोमानिया के वजीर आजम इली बोलोजान से मुलाकात की और भारत रोमानिया शराकतदारी में पेशरफ के मामले में समर आवर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और तजारत सरमायाकारी साफ तवानाई कनेक्टिविटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी मफादात के शुबों में शराकतदारी को बढ़ाने के सिलसिले में भी बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म की तौसीख की। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितिन प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत एक खुले महफूज काबिले भरोसा और जिम्मेदार इंटरनेट को सभी इस्तेमाल कुनिंदगान बिलखसूस बच्चों के लिए यकीनी बनाने के तहीं पुरअज़्म है। राज्यसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि अब जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल और डिजिटल रसाई तेज रफ्तारी के साथ वसत इख्तियार कर रही है, ऐसे में नामुनासिब कंटेंट और दीगर ऑनलाइन खतरात तक बच्चों की रसाई का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नुकसानदेह असरात से बच्चों और नाबालिगों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस तरह की इत्तलाआत को आम होने की रोकथाम के सिलसिले में कई इकदामात किए हैं। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझ कर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसां रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आज़ादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे। شدید بارش نے گجرات کے مختلف علاقوں

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: राख के ढेर में जलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, जल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है पर आग तुम

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना अजय देवगन पूर्णिमा की आवाज में। फिल्म का नाम था दिल जले। जावेद अख्तर की रचना को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म बाजीगर से। नवाब आरजू की रचना को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में अभी आपने सुना एसपी बालासुब्रमण्यम को। देव कोहली की रचना को संगीतबद्ध किया था राम लक्ष्मण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के से। आवाज है आशा भोसले की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना संजीव दर्शन की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म कृष्णा कॉटेज से। गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने, गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

कृष्णा कॉटेज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

अब समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथी का शहनाई वादन। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं राग सुरमल्हार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथी का शहनाई वादन। अभी आप सुन रहे थे राग सुरमलहार। आप सुनते हैं राग यमन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथी का राग यमन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर

0: उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
1: Okay. Spokesperson of CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has